तो तुम पर उसकी क्या जिम्मेदारी है? और जो खुद तुम्हारे पास दौड़ा आता है और डर रहा होता है, उससे तुम बेरुखी बरतते हो? हरगिज नहीं, ये तो एक नसीहत है, जिसका जी चाहे इसे कबूल करे। ये ऐसे सहीफों में दर्ज है जो मुकर्रम हैं, बुलंद मर्तबा हैं, पाकीजा हैं, मुअज्जज और नेक कातिबों के हाथों में रहते हैं। लानत हो इंसान पर, कैसा सख्त मुनकिरे हक है ये! किस चीज से अल्लाह ने इसे पैदा किया है? नुतफे की एक बूंद से अल्लाह ने इसे पैदा किया, फिर इसकी तकदीर मुकर्रर की, फिर इसके लिए जिंदगी की राह आसान की, फिर इसे मौत दी और कब्र में पहुंचाया, फिर जब चाहे वो इसे दोबारा उठा खड़ा कर दे। हरगिज नहीं, इसने वो फर्ज अदा नहीं किया जिसका अल्लाह ने इसे हुक्म दिया था। फिर जरा इंसान अपनी खुराक को देखे, हमने खूब पानी ढूंढाया, फिर जमीन को अजीब तरह फाड़ा, फिर उसके अंदर उगाए गल्ले और अंगूर और तरकारियां और जैतून और खजूरें और घने बाग और तरह तरह के फल और चारे तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए सामान जीस्त के तौर पर। आखिरकार जब वो कान बहरे कर देने वाली आवाज बुलंद होगी, उस रोज आदमी अपने भाई और अपनी माँ और अपने बाप और अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। इनमें से हर शख्स पर उस दिन ऐसा वक्त आ पड़ेगा कि उसे अपने सिवा किसी का होश ना होगा। कुछ चेहरे उस रोज दमक रहे होंगे, हशाश बशाश और खुश और खुर्रम होंगे, और कुछ चेहरों पर उस रोज खाक उड़ रही होगी और कलौनस छाई हुई होगी। यही काफिरों फाजिर लोग होंगे।

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل و

0: इससे भी ज्यादा कीमती बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ऐ शद्दाद, जब तुम देखो कि लोग सोना और चांदी जमा कर रहे हैं तो तुम इन कलिमात को जमा कर लो और ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका थबात फिल अम्र, ए अल्लाह, मैं तुझसे दीन पर उमूर पर साबित कदमी का तालिब हूँ, तलबगार हूँ, वल अज़ीम तआला रुश्द, सीधी राह पर चलने का मजबूत इरादा, व मुजीबात रहमतिक, व आमाल जो तेरी रहमत के मुस्तहिक बना दे, व अज़ाइम मग़फ़िरतिक, व तौफीक जो तेरी मग़फ़िरत का ज़रिया बने, व शुक्र निअमतिक, तेरी नेमतों पर शुक्र का तलबगार हूँ का सवाल करता हूँ, व हुस्न इबादत, एक बेहतरीन इबादत, क़ल्बन सलीमा पाकीज़ा दिल, व लिसानन सादिका सच्ची ज़बान, व असअलुक मिन खैर मा तअलम, और वो सारी भलाइयाँ जो तू जानता है वो भी मैं तुझसे मांगता हूँ, व अऊज़ु बिका मिन शर्र मा तअलम, और हर उस चीज़ के शर से मैं पनाह मांगता हूँ जो तू जानता है, व अस्तग़फिरुक लिमा तअलम, मैं तुझसे गुनाहों की माफ़ी इस्तग़फ़ार करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ जिन्हें तू जानता है, इन्नका अंतअल्लामुल ग़ुयूब, बेशक तू गैब का सबसे बड़ा जानने वाला है। आमीन कराम, ये दुआ दरअसल एक मोमिन की मुकम्मल ज़िंदगी का नक्शा है। इसमें कई सारे पहलू एक ही दुआ में आ गए, ईमान, अमल, अखलाक, मुस्तकबिल, हिफाजत और आखिरत। तो ये दुआ दरअसल एक मुकम्मल इस्लामी ज़िंदगी का खाका है। अब इस दुआ को ख़जाना कहा गया, क्यों? क्योंकि सोना चांदी सिर्फ दुनिया संवारता है, ये दुआ दुनिया कब्र और आखिरत तीनों को संवारती है। ये दुआ ईमान को महफूज रखती है, दिल को साफ करती है, आमाल को संवारती है। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनकी दुआएं तो कबूल करता है, हमें खाली हाथ न लौटाना मेरे मौला। ए अल्लाह, तो हम सब की मगफरत फरमा, दिलों को साफ कर दे, आमाल को सवार दे और हमारा आखिरी अंजाम जन्नत लिख दे, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह सामिन इकराम, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीगर सहाबा इकराम को भी इस तरह के मुख्तलिफ कलिमात बताए हैं और उनसे ये तलब किया है कि वो अल्लाह से इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह से सवाल करे और बकसरत इन दुआओं को दोहराए। इनमें से एक हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए सलमान, रसूलुल्लाह चाहते हैं कि तुम्हें चंद ऐसे कलिमात अता करें, इन्हें हदी में दें, जिनके ज़रिए तुम अल्लाह से सवाल करो, तसअलुहुन्ना रहमान व तरग़बू इलैहि फ़ीहिन्ना, और इसी से तुम जो है ना रग़बत रखो अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला की तरफ जो रग़बत और शौक़ इन्हीं दुआओं के ज़रिए तुम रखोगे और ज़ाहिर करोगे, वह तदउ बिहन फ़िल लैल व नहार, रात दिन इन्हीं के ज़रिए दुआ करते रहोगे। अब वो दुआ क्या है, अब आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिहतन फ़ी ईमान, मज़ीद हमें सवाल है ऐसा ईमान का जो अच्छे अखलाक में ज़ाहिर हो, ऐसे कामयाबी का जो दायमी फलाह बन जाए, और हमें तेरी रहमत का सवाल है, तेरी तरफ साफियत और मफ़रत का सवाल है, और हम तो तेरी रज़ा ही तलब करते हैं। तो इस तरह जो है ना सामिन कराम, इस दुआ के पहले हिस्से में आप देखेंगे कि सहतन फ़ी ईमान, यानी ऐसा ईमान जो शक से महफूज हो, निफाक से पाक हो, फितनों में न डगमगाए। तो ईमान की सेहत ये काफ़ी एक अहम पॉइंट है। इसके बाद है ईमान फ़ी हुस्न खुलुक, यानी अखलाक, हुस्न अखलाक में भी ईमान का सवाल है, यानी ईमान सिर्फ दिल में नहीं, ईमान ये झलकता है अखलाक, बर्ताव, नरम दिल और अदल में भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हों। फिर दुआ की अगली लाइन है, नजाहुन यत्बाहु फलाह, यानी रिज़्क, शोहरत, तरक्की सब मिले मगर वो हमें अल्लाह से करीब करे, दूर न कर दे। तो यहाँ इस दुआ में भी आप देखेंगे कि चारों अल्फाज में अल्लाह की नेमतों का तज़किरा है, रहमत का तज़किरा है, आफियत, मगफ़िरत, रिज़वान, تو دعا میں بھی ایک خاص پیٹرن کا لحاظ آپ دیکھ رہے ہیں رکھا گیا ہے. جس طرح دعا میں بھی بندہ بڑی دلچسپی لیتا ہے دعا کرتے ہوئے بھی, اور جب اس طرح جو ہے نا قوافی سب کچھ بہت ہی عمدہ ہوتے ہیں. بس یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے ہمیں ہم اللہ سے ایمان, اخلاق, فلاح, رحمت, حفاظت, معافی اور اس کی رضا بھی مانگتے ہیں. یہ وہ دعا ہے جو اگر قبول ہو جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال, آمین یا رب العالمین.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: दोस्तों, एक सब्ज वादी में एक प्यारा सा नन्हा मेमना रहता था। मेमना यानी बेबी लैम, जिसका नाम गोलू था। गोलू अपनी माँ के साथ एक खूबसूरत सी जगह पे रहा करता था, जहाँ हर तरफ हरियाली, फूल और झीलों का मंजर नजर आता था। गुल्लू के साथ एक मसला था। गुल्लू नहायत ही शरारती था और अपनी अम्मी की बातें सुनने में हमेशा लापरवाही करता था। जब भी उसकी अम्मी उसे कहती, गोलू ज्यादा दूर मत जाना, जंगल में खतरनाक जानवर हो सकते हैं, गोलू जवाब देता, मेरी प्यारी अम्मी, मैं बड़ा बहादुर बच्चा हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये गोलू की लापरवाही थी कि वो अम्मी की बातों को सरसरी सा ले लिया करता था। एक दिन गोलू और उसकी अम्मी घास चरने जंगल की तरफ गए। अम्मी ने उसे कहा, बेटा मेरे करीब रहना, ये जगह वैसे तो महफूज है, लेकिन अगर तुम कहीं दूर निकल गए ना तो खतरा हो सकता है। गोलू ने हामी में सर हिला दिया, लेकिन गोलू साहब कहाँ अपनी शरारतों से बाज आने वाले थे। वो फिर से अपनी शरारतों में मसरूफ हो गया और तितलियों के पीछे भागने लगा। गोलू भागते भागते छोटी झाड़ियों में घुसने लगा और भागते भागते झील के किनारे चला गया। उसकी अम्मी ने उसे बार बार बुलाया, गोलू ना करो बेटा, वापस आ जाओ, चलो वापस आ जाओ, लेकिन गोलू ने तो अम्मी की बात को नजरअंदाज कर दिया और जंगल के गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। जंगल के गहरे हिस्से के करीब एक चालाक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था चलाको। चलाको हमेशा शिकार की तलाश में रहती थी और उसे कमजोर और अकेले जानवरों को धोखा देके काबू में करने का फन आता था। जब चलाको की नजर नन्हे गोलू पर पड़ी और उसे ये दिखा कि गोलू अकेले ही जंगल में घूमता दिखाई दे रहा है, तो उसके मुंह में तो पानी आ गया। चलाको ने सोचा, ये मेमना तो मेरा बेहतरीन शिकार होगा, लेकिन मुझे इसे बड़ी समझदारी से धोखे से काबू करना होगा। लोमड़ी ने गोलू को करीब जाकर दोस्ताना लहजे में कहा, अरे नन्हे मेमने, तुम कितने खूबसूरत हो, क्या तुम मेरे साथ एक शानदार जगह चलना चाहते हो? वहाँ बहुत मजेदार मजेदार घास है, ताजा ताजा घास खाके तुम्हें बहुत मजा आएगा, क्या कहते हो, चलोगे मेरे साथ? गोलू को लोमड़ी की बातें सुनकर बड़ा तजस्सुस हुआ और उसने सोचा, अरे वाह, मुझे मेरी अम्मी ने तो कभी इस जगह के बारे में नहीं बताया। वो लोमड़ी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, वो चालाक लोमड़ी गोलू को एक वीरान जगह पे ले गई, जहाँ घास कम थी और दरख्त भी ज्यादा नहीं थे। गोलू ने इधर उधर देखा और कहा, हैं, ये तो वो जगह नहीं।

0: ही लग रही जिसका आपने मुझसे जिक्र किया था। चालाक लोमड़ी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, यही वो जगह है बेटा, लेकिन पहले मुझे तुम्हें अपने खाने के लिए तैयार करना होगा। ये सुनकर गोलू खौफजदा हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसे अपनी अम्मी की बात ना मानने की गलती का शदीद एहसास हुआ। दूसरी तरफ गोलू की अम्मी उसे तलाश कर रही थी। जब उसे गोलू का कहीं पता ना चला तो वो जंगल के घने हिस्से के करीब पहुंच गई। वहां उसने गोलू की आवाज सुनी जो मदद के लिए पुकार रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो अम्मी, बचाए मुझे अम्मी। गोलू की अम्मी जल्दी से उसकी आवाज की तरफ भागी और देखा कि चालाक लोमड़ी गोलू को काबू करने की कोशिश कर रही थी। उसकी अम्मी ने जब लोमड़ी को देखा तो हिम्मत जमा करते हुए जोर से अपने सींगों से मारना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने भी खूब मुकाबला किया। गोलू की माँ को देख कर उसने पूरी कोशिश की कि वो उसकी माँ को भगा दे, लेकिन गोलू की माँ ने अपनी ताकत और बहादुरी से उस लोमड़ी को आखिर डरा ही दिया। उसने लोमड़ी को भगाने के लिए जोर जोर से आवाजें निकाली और अपने सींगों से लोमड़ी को धक्का देने लगी। लोमड़ी को समझ आ गया था कि गोलू की माँ के सामने वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए लोमड़ी दुम दबा के भाग गई। अब था गोलू के सबक का वक्त। गोलू अपनी अम्मी के गले लग गया और आंसू बहाते हुए कहने लगा,
1: अम्मी जान मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी बात नहीं सुनी और अपनी लापरवाही की वजह से मुश्किल में फंस गया। आपने मेरी जान बचा ली अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, और अब मुझे एहसास हुआ कि आप हमेशा मेरे लिए सही सोचती हैं।
0: गोलू की अम्मी ने उसे बहुत सारा प्यार किया। बेटा ये बात समझने की है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। हम जो कहते हैं वो तुम्हारी हिफाजत के लिए होता है। हमेशा हमारी बात माना करो ताकि तुम इस किस्म की किसी मुसीबत में ना फंसो। और उस दिन गोलू को ये बात समझ आ गई। उस दिन के बाद गोलू बिल्कुल बदल गया। वो अपनी अम्मी की हर बात मानने लगा और कभी भी लापरवाही नहीं करता था। अब गोलू की अम्मी भी बहुत खुश थी कि गोलू ने अपनी गलती से सबक सीख लिया है। गोलू के घर के आसपास रहने वाले दूसरे जानवर भी गोलू की कहानी सुनकर बहुत खुश हुए और सब बच्चों को ये बात समझाने लगे कि बेटा माँ बाप की बात मानना कितना जरूरी होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा अपने अम्मी अब्बू की बात माननी चाहिए क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। इनकी बातें हमें महफूज और खुश रखने के लिए होती हैं। ये बात याद रखें कि माँ बाप का कहना मानना ही जिंदगी की कामयाबी का राज है।

0: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन एफएम 107.7। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अकेडमी ने पुलिस ऑफ टुमारो प्रोग्राम के सातवें एडिशन समर 2026 के तहत तीसरे और चौथे ग्रुप की ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया है। इस प्रोग्राम से मजमूई तौर पर 400 तलबा ने कामयाबी के साथ तरबियत मुकम्मल की। इस तकरीब में वज़ारत दाखिला के असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी बराए फनी व तखस्सुसी उमूर मेजर जनरल रुकन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अस्वेदी, पुलिस अकेडमी के सदर मेजर जनरल अब्दुर्रहमान माजिद असलैती, पुलिस अकेडमी के नायब सदर और कॉलेज ऑफ पुलिस के डायरेक्टर कर्नल डॉक्टर फहद सईद असबेई, वज़ारत दाखिला के मुतअद्दिद सीनियर अफसरान और तलबा के वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब के दौरान तलबा ने मुख्तलिफ अमली और नुमाइशी डेमोंस्ट्रेशंस पेश किए, जिनमें वो महारतें नुमाया तौर पर नजर आईं जो उन्होंने तरबियती प्रोग्राम के दौरान हासिल कें। वज़ारत दाखिला के मुताबिक पुलिस ऑफ टुमारो प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल में कौमी शनाख्त को मजबूत बनाना, वतन से मोहब्बत और वफादारी के जज्बात को फरोग देना, क़यादत की सलाहियतों को निखारना और मुआशरे के लिए जिम्मेदारी के एहसास को बेदार करना है। इसी मकसद के तहत तलबा को मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और तरबियती सरगर्मियों में शरीक किया जाता है ताकि उनकी जिस्मानी, जहनी और अखलाकी सलाहियतें मुतवाजन अंदाज में परवान चढ़ सकें। सामिन इकराम, अब एक और अहम खबर जो रियासत कतर और ममलकत सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी तआवुन और इदारा जाती शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम बनाने से मुतालिक है। वज़ारत दाखिला ने अपनी मुख्तलिफ सिक्योरिटी और तखस्सुसी इंतजामिया की नुमाइंदगी में ब्रादर मुल्क ममलकत सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के एक आला सतही वफ्द का खैर मकदम किया है। इस वफ्द की क़यादत सऊदी वज़ारत दाखिला के शोबा पब्लिक सिक्योरिटी में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ लीगल अफेयर्स के डायरेक्टर मेजर जनरल डॉक्टर इब्राहिम सतम अल आनजी कर रहे थे। वज़ारत दाखिला के मुताबिक इस दौरे का बुनियादी मकसद मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के तजुर्बात से इस्तेफादा करना, कामयाब इंतजामी मॉडल्स का जायजा लेना और जदीद पुलिसिंग के शोबे में बेहतरीन तरीक़ा कार का तबादला करना था। अमीन कराम, अब बढ़ते हैं एक अहम इलाकाई खबर की तरफ जो अरब ममालिक के दरमियान इमिग्रेशन और पासपोर्ट के शोबे में मुश्तरका तआवुन को मजीद मजबूत बनाने से मुतालिक है। रियासत कतर ने अरब वज़राए दाखिला काउंसिल के जनरल सेक्रेटेरिएट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाली 22वीं अरब कॉन्फ्रेंस बराए सरबराहान इमिग्रेशन और पासपोर्ट्स में फ़ाल शिरकत की। ये अहम इजलास जम्हूरिया ट्यूनिस में अरब वज़राए दाखिला काउंसिल के हेडक्वार्टर में मुनक़िद हुआ, जहाँ मुख्तलिफ अरब ममालिक के इमिग्रेशन और पासपोर्ट इदारों के आला हुक्काम ने शिरकत की। जबकि इस कॉन्फ्रेंस में कतरी वज़ारत दाखिला के वफ्द की क़यादत डायरेक्टर जनरल ऑफ पासपोर्ट्स मेजर जनरल मोहम्मद अहमद अल आतीक अद-दोसरी ने की है। कॉन्फ्रेंस में एजेंडे के तहत मुतअद्दिद अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आए, जिनमें अरब ममालिक के दरमियान जॉइंट अरब कोऑपरेशन को फरोग देना, इमिग्रेशन और पासपोर्ट के शोबे में मुश्तरका राब्तों को मजबूत बनाना, जदीद तकाजों के मुताबिक सिक्योरिटी निज़ाम को बेहतर बनाना और मुश्तरका सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को मजीद मौसर बनाना शामिल था। इजलास में इमिग्रेशन और पासपोर्ट के शोबे को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और पेशावराना तजुर्बात का तबादला भी किया गया, जबकि मुतअद्दिद तजावीज और सिफारिशात भी मंजूर की गईं। मजीद सामने कराम, ट्रैफिक के शोबे में मुश्तरका खलीजी ताउन से मुतालिक एक और खबर ये है कि रियासत कतर ने खलीजी ताउन काउंसिल GCC के रुकन ममालिक के 54वीं इजलास बराए डायरेक्टर्स जनरल ऑफ ट्रैफिक और 52वीं इजलास बराए ट्रैफिक सिस्टम्स डेवलपमेंट टीम में फाल शिरकत की। ये दोनों अहम इजलास सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में वाक़े GCC जनरल सेक्रेटेरिएट के सदर दफ्तर में मुनक़िद हुए, जहां खलीजी ममालिक के ट्रैफिक और रोड सेफ्टी के शोबों से ताल्लुक रखने वाले आला हुक्काम ने भी शिरकत की। जबकि कतरी वज़ारत दाखिला के वफ्द की क़यादत जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के इदारा लाइसेंसिंग के असिस्टेंट डायरेक्टर कर्नल रुकन अली हसन अल काबी ने की। इन इजलासों में खलीजी ममालिक के दरमियान ट्रैफिक के शोबों में जारी तआवुन, मुश्तरका मंसूबों और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मजीद मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतालिक मुतअद्दिद सिफारिशात भी मंजूर की गईं, जिनका मकसद खलीजी ममालिक के दरमियान जॉइंट ट्रैफिक कोऑपरेशन को मजीद फरोग देना, जदीद ट्रैफिक निज़ाम को तरक्की देना और मुश्तरका ट्रैफिक उमूर में मुअस्सर राब्ते को मजबूत बनाना है। और अब पेश खिदमत है वज़ारत दाखिला की जानिब से एक अहम साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
1: ओनली ऑन FM 107। दिल से

0: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
1: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: उस अरबी जबान की एक नहायत खूबसूरत और हकीमाना कहावत है अलजूद मिनल मौजूद। अलजूद यानी सखावत और फयाजी, अलमौजूद यानी जो चीज़ आपके पास इस वक्त मैसर हो। मतलब इस कहावत का ये है कि फयाजी और सखावत उसी वक्त मुतबर है जब आदमी अपनी इस्तेताद के मुताबिक देता है। अगर किसी दोस्त या अजीज को कोई ज़रूरत पेश आए और आपके पास वो चीज़ वाफर मकदार में ना हो तब भी जो कुछ मैसर है वही दे देना असल सखावत है। साथ ही इस कहावत में एक लतीफ लुत्फ से भरा एहतजार भी है कि यही है जो मेरे पास है, माजरत के इससे ज्यादा मुयसर ना हो सका। और इस अंदाज को बयान करने के लिए हम बोलते हैं जितना ही है उतना ही सही, या फिर थोड़ा है पर खुलूस से है, इस तरह के मुहावरे हैं। वैसे दोस्तों हकीकत तो ये है कि सखावत का असल हुस्न मकदार में नहीं बल्कि नीयत में है। चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो लेकिन दिल से दिया गया तोहफा सबसे कीमती होता है। यही पैगाम है इस कहावत का अलजूद मिनल मौजूद।
3: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिने किराम, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जामे हदीस पर गुफ्तगू करेंगे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार निहायत अहम हिदायत अता फरमाई। ये चारों हिदायत एक मुसलमान की इबादत और दीनी शऊर को दुरुस्त रुख अता करती हैं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 ग़ज़वात में शरीक हुए, फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चार बातें सुनी जो मुझे बहुत पसंद आई। फिर आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कोई औरत दो दिन की मसाफत का सफर अपने शौहर या महरम के बगैर न करे, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन रोजा न रखा जाए, फजर के बाद सूरज तुलू होने तक और असर के बाद सूरज गुरूब होने तक नफल नमाज न पढ़ी जाए, और खास फजीलत की नीयत से सिर्फ तीन मस्जिदों की तरफ सफर किया जाए, मस्जिद उल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। सामने किराम, इन चार बातों में सर फहरिस्त जो नुकता है कि कोई औरत दो दिन की मसाफत का सफर अपने शौहर या महरम के बगैर न करे, इसकी वजह यह है कि इस्लाम ने औरत को इज्जत, एहतराम और तहफ्फुज़ दिया है। इसीलिए इस्लाम ने औरत के सफर के हवाले से ये कहा है कि अपने शौहर या महरम के बगैर सफर न करे। इस हुक्म का मकसद औरत पर पाबंदी लगाना नहीं बल्कि उसकी हिफाजत, इज्जत और सहूलत को यकीनी बनाना है। और सर इस्लाम के तमाम अहकाम रहमत और हिकमत पर मबनी है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुल जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: नगर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, हमारे फुट, हमारे पाओं की जो सेहत है और रोजाना देखभाल के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारे पाओ हमें चलने, दौड़ने और डेली जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें मदद देती हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि हम किस तरह से चल सकते हैं, यानी अपने पाओ की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि चलना तो है ही, तो उसके लिए फिर कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए, ब्रीदेबल सॉक्स आप देखिए, और इसी तरह से बहुत हाई हील जो हैं और बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आप उसे ना पहनिए, और जो अगर आपके पुराने शूज़ हैं ठीक नहीं आपसे चला जा रहा है या आपको वो डिसकम्फर्ट कर रही हैं तो आप उन्हें बदल दीजिए। और इसी तरह से जो अपने पाँव हैं उनकी जो डेली फूड हाइजीन है उसकी तरफ हमें ज़रूर तवज्जो देनी है, उसे वॉश करना है अपने जो पाँव हैं और उन्हें ड्राई करना है मुकम्मल तौर पर, इसी तरह नेल ट्रिमिंग करनी है, मॉइस्चराइज करना है टू प्रिवेंट द क्रैक्स आ जाते हैं तो उसके लिए मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। फंगल इन्फेक्शन जो हैं वो इससे प्रिवेंट भी होंगी, और मतलब आप फंगल इन्फेक्शन जो कि बहुत आम है पाँव में हो जाती हैं तो उससे हम दूर रह सकते हैं। और अगर खासा कोई डायबिटिक है तो फिर उसके लिए बहुत स्पेशल केयर ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपका सही नहीं है तो उससे जो हमारे पाँव की सेहत है बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसी तरह से अगर कोई छोटा भी ज़ख्म है तो उसे चेक कीजिए, देखिए कि आपके पाँव के ऊपर कोई रेडनेस तो नहीं है या कहीं कोई सूजन, कोई स्वेलिंग तो नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ भी महसूस करें तो फौरन अपने डॉक्टर से आप रुजू कीजिए, और रेगुलरली अगर आप अपने पाँव चेक करवाते रहें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। इसी तरह से जो एक्सरसाइजेस हैं जैसे कि अपने पाँव को स्ट्रेंथन करने के लिए टो कर्ल्स हैं, एंकल रोटेशन हैं, और इसी तरह से जो सॉफ्ट सर्विसेज हैं उनके ऊपर अगर आप नंगे पाँव चलते हैं तो ये भी एक एक्सरसाइज है, इससे सर्कुलेशन की इम्प्रूवमेंट होती है। और फिर बैलेंस जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी आप ज़रूर कीजिए। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, कॉर्न्स हो जाते हैं, उनकी तरफ आपने ज़रूर तवज्जो देनी है, और जो टाइट शूज़ हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, और रोज़ या रोज़ाना की बुनियाद पर चेक ज़रूर कीजिए अपने पाँव को। और इसी तरह से अगर कोई भी मसला नज़र आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप मेडिकल एडवाइस ज़रूर लीजिए। सेहतमंद पाँव रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी होती है और मोबिलिटी जो है वो होती है, रोज़ाना छोटे इकदाम से पाँव मजबूत और महफूज रह सकते हैं। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज कतर फुटबॉल टीम के हेड कोच, जी हाँ, हुसैन लोप्तगी के बारे में मैं बात करूंगा। हुसैन लोप्तगी कतर की कौमी फुटबॉल टीम के हेड कोच हैं और उन्हें 2025 में कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने टीम की क्यादत सौंपी। पहले ये स्पेन के हेड कोच थे, उसके बाद रियल मद्रिद के कोच भी थे एंड काफ़ी एक्सपीरियंस है और इसी वजह से कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने समझा कि ही इज़ द बेस्ट मैन टू गाइड कतर फुटबॉल। उन्होंने पहले स्पेन की कौमी टीम, एफसी पोर्टो, रियल मद्रिद, सीविया और प्रीमियर लीग के क्लब्स को कोच किया है। कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने उन्हें 2027 एएफसी एशियन कप तक के कॉन्ट्रैक्ट पर मुकर्रर किया है ताकि टीम को दुनिया के बेहतरीन मुकाबलों के लिए तैयार किया जा सके। विच मीन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद लोप्तेगी का नेक्स्ट चैलेंज होगा अगले साल जो सऊदी अरब में होने जा रहा है एएफसी एशियन कप। लोप्तेगी अपनी टैक्टिकल समझ, डिसिप्लिन और पोजिशन बेस्ड फुटबॉल के लिए मशहूर है। स्पेन की कौमी टीम के साथ उनका रिकॉर्ड काफ़ी मजबूत रहा है जहां उन्होंने कई अहम फतूहत हासिल की। कतर में उनका मकसद एशियन चैम्पियंस की बुनियाद पर एक मजबूत और मुनज़्ज़म टीम तैयार करना है। उनकी क्यादत में कतर ने 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन हासिल की और इसी तरह से कतर सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम हैज क्वालिफाइड फॉर द फुटबॉल्स मेगा प्लेटफॉर्म दैट इज़ द वर्ल्ड कप। लोप्तेगी ने स्क्वाड में तजुर्बेकार खिलाड़ी जैसे अकरम अफीफ, अलमोइज अली और पेड्रो मिगल पर भरोसा किया है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो कतर को इंटरनेशनल सतह पर मजीद मुस्तकाम और मुकाबले के काबिल बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज हम जानेंगे कि हम अपनी समाअत को लंबे अरसे तक कैसे महफूज रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा शोर वाली जगहों पर एयर प्लग या कानों के हिफाजती आलात जो हैं वो इस्तेमाल कीजिए। अगर आप किसी फैक्ट्री में, तामीराती मुकाम या किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ मुसलसल शोर हो, तो हिफाजती हदायात पर ज़रूर अमल कीजिए। बच्चों को भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मोबाइल, टैबलेट्स या वीडियो गेम्स इस्तेमाल ना करने दें। कान साफ़ करने के लिए रुई की जो एक पतली सी तीली होती है या कोई नुकीली चीज़ कान के अंदर ना डालिए, क्योंकि इससे कान को नुकसान पहुंच सकता है। अगर कान में दर्द हो, रतूबत हो या अचानक कम सुनाई देना शुरू हो जाए या चक्कर आना शुरू हो जाए, तो खुद से कोई भी इलाज करने के बजाय आप डॉक्टर से रुजू कीजिए। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग भी वक्त के साथ साथ समात को मुतासिर कर सकते हैं, इसलिए मुतवाजन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, मुनासिब नींद और जो सिगरेट से परहेज़ है, ना सिर्फ दिल बल्कि कानों की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। बुज़ुर्ग अफराद और शोर वाले माहौल में काम करने वाले अफराद को वक्तन फ़वक्तन अपनी समात का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि किसी भी मसले की तशखीस जल्द हो सके। याद रखिए, समात एक कीमती नेमत है। सिर्फ चंद आसान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके हम अपनी और अपने बच्चों की समात को कई सालों तक महफूज रख सकते हैं। तो अपनी आवाज़ की सतह कम रखिए, शोर से बचिए और अगर समात में कोई तब्दीली महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू कीजिए। अल्लाह ताला हमें सेहतमंद समात और तंदुरुस्त जिंदगी अता फरमाए।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. Main hoon aapki host Nazia.
0: One Step to 2030.
1: और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे. ये टॉपिक है क्लीनिंग द प्लैनेट विद टेक. देखिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है पोल्यूशन. समंदर प्लास्टिक से भरे हुए हैं, हवा पोल्यूटेड है और जमीन भी सेफ नहीं है. लेकिन गुड न्यूज ये है कि टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर रही है. आजकल AI और रोबोट्स पोल्यूशन साफ करने के लिए यूज किए जा रहे हैं. मिसाल के तौर पर ओशंस में स्पेशल रोबोट्स और ड्रोन्स प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं. ये रोबोट्स खुद डिसाइड करते हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा कचरा है. अंडर वाटर रोबोट्स भी यूज हो रहे हैं जो समंदर के नीचे जाकर प्लास्टिक और वेस्ट निकालते हैं जहाँ इंसान का पहुँचना मुश्किल था. AI सिस्टम सेटेलाइट डेटा को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करते हैं कि पोल्यूशन कहाँ जमा होगा ताकि उसे पहले ही कंट्रोल किया जा सके. जमीन पर भी रोबोट्स वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्ट करते हैं. प्लास्टिक अलग, मेटल अलग, ऑर्गेनिक चीजें अलग, जो रिसाइकलिंग प्रोसेस को फास्ट और इफेक्टिव बनाती हैं. दोस्तों, फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि ड्रोन्स ऑटोमेटिकली पोल्यूशन डिटेक्ट करें और शायद एयर को भी हवा से निकाला जा सके, उसे क्लीन किया जा सके. ये बात समझना आपके और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि प्लैनेट बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है. अगर हम AI और रोबोट्स का सही इस्तेमाल करें तो हम अपनी जमीन को फिर से क्लीन और हेल्दी बना सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम कचरा कम मिनिमाइज करने की आदत तो अडॉप्ट करें. एटलीस्ट इसकी शुरुआत हम घर से ही कर लेते हैं. अपने घर के कचरे को जो है वो प्रॉपर तरीके से सेग्रीग्रेट करना, उसके अलावा जब आप पब्लिक प्लेसेस पर जाते हो तो कौन सा कचरा कहाँ फेंकना मुनासिब है. आप देख रहे होते हो कि डिफरेंट बिन्स होते हैं, वहाँ पर लिखा होता है, मेंशन होता है कि यहाँ पर आप पेपर डालिए, यहाँ पर आप प्लास्टिक डालिए एक्सेट्रा. तो आप जो है थोड़े से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो और जहाँ पर जो कचरा लिखा है जिस तरह का उसको वहीं डालिए जिससे उसको रिसाइकल किया जा सके. क्योंकि अगर हम अभी से नहीं सोचेंगे और अपने फ्यूचर को परेशानी से और मुसीबत से भरेंगे तो आने वाली जनरेशन को हम क्या दे पाएंगे. तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम आज से थोड़े से सतर्क रहें और इन चीज़ों का ख्याल रखें. चलिए, ये तो एक अच्छी बात, एक अच्छी न्यूज़ है कि प्लैनेट को क्लीन किया जा रहा है टेक्नोलॉजी की हेल्प से. ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा कि हाँ, वाकई जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता वहाँ पे रोबोट्स पहुँच के समंदर से प्लास्टिक कचरा और हवा जो इस तरह से पोल्यूट हो रही है, जो ज़मीन अनसेफ होती चली जा रही है, सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कम करने, मिनिमाइज करने में कितनी हेल्प कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि मशीन और AI के आने के सिर्फ ड्रॉबैक्स हैं या हम सिर्फ ये डरते ही सोचते रहें, बल्कि AI जो है हमारी लाइफ को आसान भी बना रही है. टेक्नोलॉजी से हमारी लाइफ हमेशा आसान हुई है, लेकिन हाँ, छोटे मोटे चैलेंजेस तो हमेशा आते ही आते हैं. बट डिस्पाइट ऑफ दैट, सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें मिल रहा है. बस इसी तरह से एक गुड बैलेंस के साथ टेक्नोलॉजी को अगर इस्तेमाल किया जाए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो तो चीजें आसान ही होंगी. फिलहाल दोस्तों, वक्त है कि मैं आपसे इजाजत लूँ इस टॉपिक पे. कल आऊंगी तो एक और नए टॉपिक पे हम मिलकर बात करेंगे. और तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
0: One step to 2030.
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

इसकी जो इसका जो अहम फ़ायदा है वो ये कि जैसे हवाएं तेज़ चल रही हैं वहाँ पर आपको ज़रूर कुछ ऐसा नोटिस नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर वहाँ ये लिखा मिलेगा आपको, लहरें बुलंद हों, मौसम ख़राब होने का इम्कान हो, तो बेहतरीन फ़ैसला यही है कि समंदर में जाने का जो फ़ैसला है इसको मुअख्खर कर दिया जाए। सामने कराम मज़ीद उन्होंने हमें यह भी बताया कि अगर आपको थकन महसूस हो रहा हो, बाज़ औक़ात तो ये है कि बंदा बुखार है, जिस्मानी तौर पर कुछ थकन है, बीमार है, तो समंदर में न उतरें। यानी ये गलत है कि बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि पानी में जाकर तबीयत बेहतर हो जाएगी, ये नहीं, बल्कि वो तो शुरू से कह रहे हैं कि अगर आपके यानी थकन महसूस हो तो पहले से एहतियात करें और समंदर में आप न जाएं, क्योंकि कमज़ोरी, बुखार, जो भी इस तरह की जो तकलीफ़ें हैं, ये अगर शदीद थकन अगर हो तो पानी में जो इंसान की जो सलाहियत होती है उसे कमज़ोर कर देती है, कम कर देती है, फिर मामूली सी दुश्वारी भी पेश आ जाए तो ये बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तो अपनी सेहत को नज़रअंदाज न करें। और आखिर में उन्होंने बच्चों के हवाले से भी कहा कि बच्चे अगर जाएँ तो जैसे कि उन्होंने कहा कि सुतरतुन नजात लाइफ जैकेट, ये काफ़ी ज़रूरी है कि लाइफ जैकेट का इस्तेमाल बच्चों के लिए। उन्होंने कहा कि आपको ये लग सकता है कि भाई मौसमी सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल सही है, यानी कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जैसे कि हमने शुरू में भी कहा समंदर का मिजाज उसका कोई ठिकाना नहीं है, अचानक कुछ से कुछ हो सकता है, तो इस वजह से बच्चों को ज़रूर लाइफ जैकेट पहनाइए चाहे पानी कम गहरा ही क्यों ना हो। यानी ये आपकी तरफ से एहतियात है, जैसे कि हमने कहा कि एहतियाती इकदामात ये ज़रूरी है और एक लम्हे की बेहतियाती ये बड़े से बड़े हादसे का बायस बन सकती है। तो लाइफ जैकेट इसको हर वक्त आप बच्चों के लिए ज़रूर यानी इसका इंतज़ाम करें, इसकी पाबंदी करें। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जो वाटर स्पोर्ट्स के जो ऐसे स्कूटर्स हैं दर्राजात अल-माईया के हवाले से जो उन्होंने कहा है कि आप उनके लिए जो डिज़ाइनेटेड एरियाज़ हैं उनसे आप दूर रहें, तो ये आपको कैसे पता लगेगा, जब आप ये पता कर लेंगे शुरू में जाकर कि भाई यहाँ तैराकी के लिए कौन से मुंतखब एरिया हैं, मखसूस एरिया कौन से हैं, तो जब आप इसका पता हासिल कर लेंगे तो फिर आपको यानी इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी, आप वो स्कूटर्स के लिए जो ख़ास उनके एरियाज उसमें आप कभी भी नहीं जाएंगे। तो ये बात ज़रूरी है कि आप पहले पता कर लें कि आपकी स्विमिंग के लिए मखसूस करदा एरिया कौन सा है। यानी मज़ीद उन्होंने तंबी के लिए ये भी बताया कि भाई हमें मुतनब्बे किया है कि आप ये स्कूटर्स के जो एरिया हैं इनके लिए अलग जोन मुकर्रर किए जाते हैं, उस जोन में आप कभी भी न जाएं, क्योंकि अगर आप चले जाते हैं तो किसी भी हादसा का सामना कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, तो ख़ुद भी महफूज रहें दूसरों को भी महफूज रखें। तो हर शख्स को ये ज़रूरी है कि अपनी सरगर्मी के लिए या जो भी है वहाँ जो हमें फैसिलिटी मिल रही है उसके लिए जो मखसूस जगह है, मुख्तस जो एरिया है, उसका हम इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, और नज़्म व ज़ब्त ये सब की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। और मज़ीद उन्होंने ये कहा कि जो हिदायत हैं साहिल सिक्योरिटी अहलकारों के हवाले से और लाइफ गार्ड्स की जो हिदायत हैं इन पर मुकम्मल अमल करें। यानी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेंगे, वहाँ जो बोर्ड्स हैं, यहाँ जो वहाँ के जो लोग कुछ बता रहे हैं आपको इस एरिया में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो करना, तो इन सब की जो है ना आपने ख़ास लिहाज रखना है। तो ये थी बात, अहम नसीहतें जो यानी समंदर का रुख करने वाले हैं हमारे सामीन जो समंदर का रुख करना चाहते हैं इन दिनों में, तो आप ज़रूर इन नसीहतों को फॉलो कीजिएगा। समीन कराम इस वक्त हम एक मरतबा फिर लौटते हैं हमारे मेहमान मेजर सालिम हमद सालिम अल-मर्री की तरफ, जिनका ताल्लुक हमने कहा है कि जनरल डायरेक्टर्स ऑफ कोस्ट्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी से है। माजरत, तो अब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई शख्स इस तरह का हादसा का सामना करे, यानी हो सकता है कि वो इमरजेंसी

0: मुश्किल का बायस बन रहे हैं। तो इस वजह से यानी अगर आप रेस्क्यू स्विमिंग की जो बाकायदा तरबियत नहीं रखते तो जाहिर सी बात है ख़ुद भी ख़तरे में पड़ सकते हैं। तो एक शख्स को बचाने की कोशिश में कभी कभार ऐसे होते हैं ना, दो दो तीन अफराद जो है ना अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो कहा कि अगर आप ट्रेंड पर्सन नहीं हैं तो आप यानी ख़तरे में न डालें, ख़ुद भी ख़तरे में अपने आप को या दूसरों को भी ख़तरे में न डालें। तो इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने ये कहा कि आप सबसे पहले जो आप काम कर सकते हैं कि फ़ौरन आप मदद तलब करें। कतर में किसी भी समंदरी यानी अगर कोई इससे सूरत हाल पेश आ जाए, हंगामी सूरत हाल, तो आप 999 पर कॉल कर सकते हैं। या फिर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कोस्ट्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी से आप फौरी रابطہ करें। और जैसे कि उन्होंने कहा, जितनी जल्दी इत्तला मुतालका इदारों तक पहुँचेगी उतनी ही जल्दी रेस्क्यू टीम में मौके पर पहुँच सकेंगी। तो यानी आप कोशिश करें कि जल्द अज़ जल्द उनसे रابطہ करें ताकि वो जल्द अज़ जल्द उस मकाम पर पहुँच सकें। यानी ऐसा ना हो कि आखिरी जो इकदाम हो वो ये कि आप उनसे रابطہ कर रहे हैं, बल्कि अव्वल इकदाम ये होना चाहिए कि आप पहले इमरजेंसी जो टीम है, इमरजेंसी जो नंबर है, इस पर आप रابطہ करके उन्हें बता दें और उसके बाद जो भी इमदाद आपसे मुमकिन हो सके इब्तदाई इमदाद वो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी वो जो बात जो पॉइंट्स हमने कहे कि आप माहिर नहीं हैं तो उस सिलसिले में आप ख़ुद को भी यानी इस तरह मुसीबत में न डालें और दूसरों के लिए भी मुसीबत का बायस न बने। तो ये थी अहम कुछ नकात। यानी अगर कोई मुसीबत कोई हंगामी सूरत हाल पेश आ जाए समंदर में तो इस सिलसिले में आपने क्या करना है। पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि हंगामी हालत में घबराएं नहीं, पुरसकून रहें। दूसरी बात, अगर तरबियत याफ्ता आप रेस्क्यू वो ट्रेंड पर्सन नहीं हैं तो ख़ुद पानी में कूद कर किसी को बचाने की कोशिश न करें। तीसरा, फ़ौरन 999 999 या जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कोस्ट्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी को इत्तला दें। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुमकिन हो, अच्छा यानी आपने उन्हें बता दिया, बताने के बाद अगर मुमकिन हो आपके पास कोई ऐसे वसाइल दस्तियाब हों उधर कि डूबते हुए शख्स की तरफ तैरने वाली कोई चीज़ आप फेंक दें ताकि वो पानी पर कायम रह सके। तो ये अहम नुक्ता है, ये आपकी तरफ से एक कार्रवाई है। यानी उस सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं, बाज़ औक़ात आप जैसे कि वो परेशान होकर घबरा कर आप खुद कूद कर उतर गए, यानी फिर तो बाकी बचाने वाले जो भी हैं उधर वो तो और भी परेशान हो जाएंगे। आपको जस्ट उधर ही इब्तदाई जो इमदाद आप ये कर सकते हैं कि उधर आप कुछ ऐसी चीज़ तलाश करके लेके आ जाएं जो पानी पर क्या हो वो तैरती हो और इस तरह जो है ना पानी पर कायम रहे, तो उस चीज़ पर बंदा उसे पकड़ कर वो कुछ मुस्तफ़ीद हो सकता है जो डूबने वाला है या उस सूरत हाल में है। तो सामिन कराम, ये बहुत ही अहम नुक्ता है कि आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि आप डूबते हुए शख्स की तरफ तैरने वाली कोई चीज़ फेंक दें। अच्छा, तो ये चंद अहम निकात थे जो हमारे मेहमान ने हमें बताया। ओवरऑल हम अब एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेक के बाद जो है ना हम हमारे मेहमान से क्या पूछने वाले हैं। जस्ट ये कि सवाल आपके इल्म में रहे और हमारा ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा 9 बजे तक। हमारा अगला सवाल है मेजर सालिम हमद सालिम अलमर्री से कि जो यानी बोट के मालिकान हैं जो शिकार करने के लिए निकलते हैं समंदर में, तो उनके लिए क्या कुछ पाबंदियां हैं जो उन्हें उसका ख़ास ख्याल रखना है, उसके लिहाज करना है। तो इस सिलसिले में वो हमें वजाहत पेश करेंगे जस्ट एक छोटे से वक्फे के बाद।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी। जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का

0: हिस्सा बने। प्रोग्राम दोहा डायरी विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, रिक्रिएशनल और प्ले एरियाज में बच्चों के हिफाजती इकदामात को तरजीह देना उन्हें हादसात से बचाता है और खुशगवार और सेव आउटिंग्स को यकीनी बनाता है। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बराए मेहरबानी मुसलसल निगरानी को बरकरार रखें और बच्चों को अपने फैमिली मेंबर्स के इर्द गिर्द ही रहने की इजाजत दें। गाड़ी को हमेशा सेफ पार्किंग में ही पार्क करें और बच्चों का गाड़ी से बाहर निकलते वक्त खास ख्याल कीजिए। उनका हाथ पकड़ के रखिए और दूसरी गाड़ी जब रिवर्स हो रही हो उस वक्त बच्चों को उसके पीछे जाने से रोकें।
4: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर,
5: माहिरीन की राय पर।
4: लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड,
5: हेल्थ गाइड,
4: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक,
5: इलाज और एहतियात तक।
4: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
5: दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
6: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी,
7: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107।
8: FM 107
7: दिल से देसी।
3: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रैवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
6: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: चेकअप आप ज़रूर करें। और उन्होंने जैसे कहा कि मौसम की जो सूरत हाल है उसका भी आप पेशगोई पर नज़र रखें कि क्या बताया जा रहा है समंदर के हवाले से, उसके मौसम पर क्या क्या इत्तलात मिल रही हैं उसका आप ख़ास ख्याल रखिएगा। लहरें कभी बताई जाती है कि लहरें बुलंद हैं, कभी हवाएं तेज़ के हवाले से खबर आती हैं। तो अगर आपके पास यदि टेक्नोलॉजी दस्तयाब है, आजकल हर एक के हाथों में है मोबाइल फ़ोन और कुछ भी, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि भाई मौसमियाती इत्तलात क्या हैं इस वक्त। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि जो डिज़ाइनेटेड एरियाज़ हैं, मखसूस इलाके हैं, वहाँ पर आप माहिगीरी करें। और यानी कुछ इलाके ऐसे हैं, हमारे मेहमान मेजर सालम मोहम्मद सालम अलमर्री, जिनका ताल्लुक जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कोर्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी से है, उन्होंने हमें इस सिलसिले में बताया कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर शिकार ममनू है, यानी वहाँ पर आप माहिगीरी नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से आपने उन इलाके में नहीं जाना, सिर्फ माहिगीरी के लिए जो मखसूस इलाके हैं वहीं पर आप शिकार कर सकते हैं, माहिगीरी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। और ओवरऑल समंदरी माहौल के बाद अगर हम बात करें तो ये हर वक्त ज़रूरी है। इसमें कुछ इस तरह के फजला वगैरह फेंकना, इससे हम बाज रहें, चूँकि ये ज़िम्मेदारी हम सब की है। जिस तरह ये सिक्योरिटी अहलकार हैं, ये सेफ्टी के हवाले से हम बता रहे हैं, अवेयरनेस को आम कर रहे हैं, तो हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन तालीमात को फॉलो करें, इनकी गाइडलाइन को फॉलो करें। तो गुफ्तगू का खुलासा क्या है? खुलासा यही है, रजिस्ट्रेशन, कानूनी दस्तावेज़, रवानगी से पहले कश्ती इंजन और ईंधन की मुकम्मल जाँच, तमाम मुसाफिरों के लिए जो हिफाजती सामान, और मज़ीद रवानगी से कबल जो है ना मौसमियाती जो पेश हुई है उसको आप उसका आप ख़ास ख्याल रखें। मज़ीद यानी इजाज़त याफ्ता इलाकों में माहिगीरी करें और समंदर को आलूदगी से बचाएं। तो ये सब अपनी ज़िम्मेदारी का शऊर के साथ हम जो है ना महफूज बहरी माशरे की बुनियाद बन सकते हैं। सामने कराम, अब हम हमारे अगले मसला अगले महवर की तरफ मुंतकिल होते हैं। और किसी भी समंदरी सफ़र के लिए हमारी क्या कुछ तैयारी करनी चाहिए, सिलसिले में हमारे मेहमान से हम सवाल करेंगे। सैयद रायद सालम मोहम्मद सालम अलमर्री, बख़ुसूस यानी इस्तेदादात अल्लती यजिब अल-क़याम बिहा क़ब्ल अय रहला बहरिया, हब्बذا توضح لنا النقطة هذه.
1: تمام، يعطيك العافية. صحيح، الاستعدادات يجب متابعة آخر نشرة أرصاد جوية.
0: حلو.
1: وتأكد كمية الوقود. أيضا فحص المحرك والبطارية والأنوار الملاحية.
0: جميل.
1: توفير سترات النجاة لجميع الركاب.
0: أوكي.
1: تجهيز صندوق الإسعافات الأولية، طفاية الحريق وأجهزة الاتصال. أيضا إبلاغ أحد أفراد الأسرة بوجهة الرحلة وموعد العودة المتوقع.
0: أوكي.
1: هذا شيء مهم جدا، يجب إبلاغ أفراد الأسرة أو حتى الأصدقاء أو حتى يعني حتى لو كنت مثلا في مثلا تابع لكافية أو شركة معينة أو شيء، يجب إبلاغهم بوجهة الرحلة وموعد العودة وموعد العودة المتوقع.
0: جميل جميل، كأنك تركز على نقطة في كل يعني السؤال بخصوص المتابعة النشرات الجوية.
1: صحيح صحيح.
0: هذه نقطة مهمة جدا بخصوص اللي يبون يرتادون البحر أو
1: بالطبع
0: توجهون البحر. بارك الله فيكم. سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان بتا رہے تھے کہ اگر ہم سفر کرنا چاہتے ہیں سمندری بحری سفر کے حوالے سے، تو لازماً کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں، تیاریاں ہیں جو آپ نے اختیار کرنی ہیں. پہلی بات یہ کہ روانگی سے پہلے موسم کی تازہ جو پیشن گوئی ہے اسے آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں، ضرور دیکھیں. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایندھن کی جو مقدار ہے فیول، اس کو چیک کریں. اور اسی کے ساتھ انہوں نے مزید بتایا کہ کشتی جو روشنی کے جو نظام ہے کشتی میں، اس کا آپ مکمل معائنہ کریں. مزید انہوں نے بتایا کہ تمام مسافروں کی لائف جیکٹس کی موجودگی، اور اسی کے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس، فائر اسٹنگوشر، مواصلاتی آلات جو بھی ہیں اس کا آپ نے ساتھ رکھنا ہے. اور مزید انہوں نے آخری بات جو کہی، آخری نقطہ وہ کافی اہم ہے، کہ اپنے گھر والوں کو سفر کی اطلاع ضرور دیں. انہوں نے کہا کہ आप कहाँ जा रहे हैं और आप कब लौटेंगे, कहाँ जो वहाँ

0: होती हैं, तो इस वजह से आप यहाँ करीब ना जाएं, तो वहाँ से भी आपको कभी का फासला रखना है क्योंकि हिफाजती तकाजा है। फौजी अड्डे की बात की, कवायद अलास्करिया, तो वहाँ से भी आपने काफ़ी फासला रखना है, और चूँकि वहाँ दिफाई सलाहियत की बात होती है तो उनके करीब जाना ये कानूनन ममनू है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि कौमी सलामती से यह मसला है कि कुछ भी यानी आप उसके करीब मना कर दिया गया है, आपको फासला रखना है, तो ये फासला जो है ना मुल्क के दिफाई निज़ाम के तहफ़ के लिए मुकर्रर किए गए हैं। और इसी तरह बहरी बंदरगाहों के दाखिली रास्ते, नेविगेशन चैनल्स, यहाँ पर भी आप इनसे दूर रहें। तो ये तमाम ममनू इलाके, यानी अगर आपके पास वाटर स्कूटर्स हैं, किश्ती हैं, यानी इसका ये मतलब नहीं आप कहीं भी जाकर आराम से जो कुछ भी चलाएं, यहाँ है कि आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इस सिलसिले में आपको सही मालूम रहनी चाहिए। और वहाँ जो नोट्स होते हैं, डायरेक्शंस, वहाँ पर जो आपको बोर्ड्स में जो भी मालूम तालीमात हैं वहाँ, उनकी पासदारी करें, उनको फॉलो करें, तो इसी में जो है ना आपकी हिफाजत है, आपकी सलामती है, वतन के अहम मफादात के का तहफ़ है। सामने करम, और अब हम मज़ीद एक और नुक्ते की तरफ बढ़ेंगे। मेजर सालिम मोहम्मद सालिम अलमर्दी, जिनका ताल्लुक जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कोस्ट्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी से है, वज़ारत दाखिला का बहुत ही एक अहम इदारा है, तो वो हमें अब बताएंगे कि बाहरी जो माहौल है इसकी हिफाजत के लिए, इसकी हिफाजत की क्या अहमियत है। सैयद राइद सालिम मोहम्मद सालिम अलमर्री, بخصوص أهمية المحافظة على البيئة البحرية، ماذا ترى؟
1: في الحقيقة يعني المحافظة على البيئة البحرية هي مسؤولية الجميع،
0: صح،
1: وذلك بعدم رمي المخلفات في البحر، محافظة أيضا على الشعب المرجانية، والالتزام بالممارسات التي تحافظ على الثروة البحرية للأجيال القادمة. نعم
0: जमील है सामने कराम, जैसे कि हमारे मेहमान ने बताया कि यानी समंदरी जो माहौल है इसका, इसकी हिफाजत ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, तो इसमें उन्होंने कुछ ऐसे ख़ास बताएं कि आप बहरी समंदर को आलूदगी से बचाने के लिए आप ऐसे जो है ना फजला वगैरह न फेंकें, यानी कचरे वगैरह फेंकने से आप गुरेज करें, मज़ीद मरजानों से, मरजानों की हिफाजत भी ज़रूरी है, क्योंकि आप फजला वगैरह फेंकेंगे तो मरजानों पर जाके गिरेंगे तो वो भी आलूदा होगा, फिर मसाइल, ये मरजाने मर जाते हैं ना, तो इस वजह से इन मरजानों की हिफाजत ज़रूरी है, मरजान के चट्टान कहते हैं इनको, तो इनकी हिफाजत ज़रूरी है। और इसी तरह यानी यहाँ पर बात आ जाती है जो बहरी समंदरी जो सरवा है, जो यानी जो एक मईशत है, इसकी हिफाजत ज़रूरी है, तो समंदर से फ़ायदा भी उठाएं लेकिन उसकी हिफाजत ज़रूर करें। अब हम एक और सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि अगर यानी जो ओवरऑल उमूमी तौर पर सलामती के हवाले से जो बताई जाती है हमारे जो जनरल डायरेक्टर ऑफ कोस्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से, वज़ारत दाखिला की जानिब से, तो इसकी, इसके फॉलो की क्या अहमियत है, इनकी पाबंदी करना इसकी क्या अहमियत है। सैयद राइद, मा अहमियत इल्ज़ाम अल-जुम्हूर बिल इरशादात व तालीमात अस-सादरा,
1: ممكن تعيد السؤال بس؟
0: بخصوص يعني أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان السلامة العامة، ما أهمية التزام الجمهور بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا سيما في مثل هذه الظروف التي تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية؟
1: صحيح، الأهمية هي حماية الأرواح، الحد من الحوادث البحرية، تسهيل عمل الجهات المختصة في إدارة الحالات الطارئة، أيضا تعزيز السلامة البحرية للجميع.
0: جميل. سامعين الكرام، جیسے کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ جب یعنی حفاظتی ہدایات یہ جو بتائی جاتی ہے نا، یہ محفوظ رکھنے کے لیے جاری کی جاتی ہیں، تو کسی بھی علاقے میں کچھ بھی حفاظتی ہدایات ہیں، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، یعنی کافی ضروری ہے، इन फैसलों के पीछे माहिरीन की मालूमात, मौसमी जायज़ें, हिफाजती रिपोर्ट, ज़मीनी हकायक मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले जो बात उन्होंने कहा कि इन तालीमात की अगर आप पाबंदी करते हैं तो जानों की हिफाजत है, ठीक है, जानों का तहफ़ दूसरा बड़ा फ़ायदा है हाथ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी बढ़िया चल रहा है सब, बहुत घुम्मी घुम्मी हो रही है। गर्मी में भी बाज ना आना ये हम सीख लेते हैं कतर में, क्योंकि कब तक आप कहेंगे गर्मी बहुत है, मैं तो गर्मी रहना पसंद करता हूँ, ये कहने का मुझे दीजिए ना आप क्यों मार नहीं जा रहे हैं? तो मैं आपको वजह देता हूँ, बाहर जाने की बहुत सारी वजहें हैं और काम के अलावा भी बहुत सारी वजहें हैं जहां पर आप पहुंचेंगे इंडोर इवेंट्स में, और आप एसी में भी खूब मजे ले सकते हैं। अब जरा सी मेहनत तो करनी पड़ेगी वहां तक जाने की, लेकिन कतर कोई इतना बड़ा नहीं है कि आप ड्राइव करते जा रहे हैं तो आसान आसान जगहों पर पहुंचना, शानदार इवेंट्स को अटेंड करना, ये जो ब्लेसिंग है इसका फायदा उठाइए कतर में रहते हुए, ये बहुत आसान है। और जो नए लोग आए हैं मैं उनसे अलग से बात कर रहा हूँ, सुनो भाई साहब कोई कितना भी गया है, मैं जो इवेंट्स बता रहा हूँ ना इनमें से कोई ना कोई एक लपक लेना, पहुँच के जरूर आना, मजे आ जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं कतर 2026, बिकॉज इवेंट्स की जो लाइनअप है वो लगातार है और पूरे साल बहुत सारे इवेंट्स हैं, मगर जो रिसेंटली हुए हैं, जो रिसेंटली होने वाले हैं, सबका लेखा जोखा आपको दिया जाएगा। पर आप भी किसी इवेंट में होकर आ चुके हैं और आप बताना चाहते हैं, सो 666-22-107 नंबर है। देखो क्या होता है, कुछ लोग मैंगो फेस्टिवल गए, मैंगो फेस्टिवल से उन्होंने फोटोज निकाले, हमें टैग किया, बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वही बहुत अच्छा था। मैंगो फेस्टिवल रिसेंटली कल्मिनेट हुआ है और कंक्लूड हुआ है, बहुत बहुत जबरदस्त गया है। पाकिस्तान से बड़े बड़े बड़े बड़े ट्रेडर्स पहुंचे थे, और जो आम से बनने वाली चटनी है, अचार है, जूस है, मिल्क शेक है, सब जो है वहां पर दिखाया गया, मिल भी रहा था, खरीद फरोख भी हो रही थी। और जो पाकिस्तान से स्पेशल जो आम आते हैं, पेटियां भर भर के ले गए लोग भाई, पेटियां भर भर के। तो ये जो देखने को मिला है वो उन लोगों ने मिस किया है जो वहां पे नहीं गए। सो अगर आप आम की पेटी घर पे लेके आए हैं, मैं आपको 1 लाइक दे रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए आपको 1 लाइक, बहुत बढ़िया। तो वो तो हो गया इवेंट, लेकिन आने वाले बहुत सारे इवेंट्स जो आपको मिस नहीं करने हैं टू बिगिन विद। इसके बाद मैं फिर से मेंशन करना चाहूंगा, अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है ये अभी तो चलेगा एक दो महीने और है, मगर ये जो टाइम है ये डिस्काउंट्स का टाइम होता है जब आप स्टेकेशन करने का प्लान कर लेते हैं, तो आप कर लीजिए प्लान। जस्ट अ रिमाइंडर जिनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, अगर नहीं भी है यार फैमिली हटाओ, लोग मुझसे बोलते सिंगल के लिए आप कुछ नहीं बताते, भाई बैचलर से बात करो, आप लोग ग्रुप बनाएं, दोस्तों के साथ जाएं, कोई स्टेकेशन वगैरह करें, एक दिन ही सही भाई। यहाँ पर आपको जरूरी नहीं कि आप घर में बैठे, मुझे पता है नींद पूरी करनी है, वो भी बहुत जरूरी है, एक दिन मिलता है ये भी शिकायत होगी, ये भी शिकायत होगी कि दिन ही नहीं मिलता, बट टेक आउट सम टाइम, टेक अ ब्रीदर, कोई कितना भी टाइम मिले कहीं होके जरूर आना, क्योंकि कतर में स्टेकेशंस आर गोइंग वंडरफुली वेल। अगर आप कहीं दूर निकलना चाहते हैं, थोड़ा टाइम बिताना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, सो टेक देम आउट, कुल मिला जुला के चले जाओ भाई, मौज करो, खुश रहो प्लीज। एक ही दिन मिलता है मुझे ही पता है, और ये शिकायत रहती है अपने आप से, क्या नींद पूरी नहीं होती, आई अंडरस्टैंड। किसी एक हफ्ते हो जाओ स्टेकेशन, जरूरी नहीं है कि फैमिली है तभी जाना है, दोस्तों के साथ जाइए, 3-4 दोस्त मिलके मौज करके आओ, क्योंकि कतर में जो होटल्स हैं दे आर गिविंग डेफिनेटली द बेस्ट ऑफर्स दिस समर्स एज वेल। अगर आप स्टेकेशन भी नहीं करते हैं तो उनके जो जो ब्रंचेस के हैं, जो बूफे के जो प्राइसेस हैं, उनमें बहुत बढ़िया डिस्काउंट्स हैं। सो ये सर्च करने का टाइम आपका है, ये मैं काम आपको छोड़ता हूँ, लेकिन डेफिनेटली गो आउट एंड हैव समथिंग डिफरेंट इन कतर, क्योंकि वरना आप वो मोनोटोनस उसमें जीते रहेंगे तो फिर इन चीज़ों का मजा नहीं।

0: नहीं पाएंगे। और शर्माना कभी नहीं भाई कि यार हम तो बैचलर, मैं ही बैचलर रहा हूँ। दोस्तों को पकड़िए, जाइए, मौज करिए, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं।
1: Qatar 2026
0: कुछ आने वाले इवेंट्स पे जरा नजर बनाए रखते हैं और जो रनिंग इवेंट्स हैं, तो क्योंकि जो चल रहे इवेंट्स उनके बारे में पहले बात कर ली जाए। तो मॉल ऑफ कतर चलते हैं पहले। तो मॉल ऑफ कतर में इस बार गर्मियों में और गर्मियों को बीट करने के लिए टशुम बहुत बढ़िया चीज शुरू हो चुकी है, मतलब चल रही है अभी। इट इज इन द हार्ट ऑफ द वाइब्रेंट मिस्टिकल रेन फॉरेस्ट। इनटू द जंगल नाम दिया गया है। ये एक बहुत ही जबरदस्त स्पेक्टेकुलर फैमिली फ्रेंडली लाइव एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस है जो ओएसिस स्टेज है ना मॉल ऑफ कतर का, वहां पर ये जारी है और 1 अगस्त तक चल रहा है। सो अगर वहां पे जाएंगे तो आपको एक लश ग्रीन दुनिया नजर आएगी, नेचर, फैंटेसी। और जो ओएसिस स्टेज है ऐसा लगेगा भाई जिंदा हो गया है, तो पूरे साल भर में देख रहा था, आज लग रहा है अलाइव है। लार्जर देन लाइव जंगल कैरेक्टर्स वहां पर आपको नजर आएंगे, बहुत कमाल की डेजलिंग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स है उनकी, थिएट्रिकल पपेट्री वहां पर आपको नजर आएगी, डायनेमिक डांस हो रहे हैं, बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो सर्कस से इंस्पायर्ड एक्ट्स हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। फिर इसके साथ साथ हर ऑडियंस को ताकि यू नो कैप्टिवेट रखा जाए, इंटरेक्टिव चीजें रखी जाए, तो उनके लिए भी अलग अलग चीजें हैं जिसमें स्टोरी टेलिंग को ब्लेंड किया गया है बहुत सारे एक्ट्स में। इसके अलावा जो बच्चे अगर आपके घर में, तो उन्हें लेके आप पहुंचेंगे तो उनको बहुत मजा आएगा, दोस्त नए बनाने का मौका मिलेगा, आपके साथ इन इवेंट्स को देखने का मौका मिलेगा, आपका उनका बॉन्ड बेहतर होगा। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव राइट नाउ। और 1 अगस्त तक ये जारी है। सो इनटू द जंगल मॉल ऑफ कतर में शाम को 5:30 to 7 ये अभी भी जारी है और 8:30 भी है ऑन अदर डेज। सो मॉल ऑफ कतर पहुंचे एंड हैव अ ब्लास्ट भाई। ये जो टाइम है इसका आपको मजा करना चाहिए। एंड बिल्कुल मत सोचिए कि अभी जाऊंगा, कल जाऊंगा, पर जाऊंगा, 1 तारीख आने वाली भाई, अब तो हो ही आओ। और जब आप सुन रहे होंगे ये शो, आई एम प्रिटी श्योर कि 1 तारीख बहुत ही करीब होगी। तो प्लीज हैव अ गुड टाइम 5:30 से शाम तक 8:30 to 8:00 आपको मॉल ऑफ कतर में कई सारे इवेंट्स मिलने वाले हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर इवेंट।
1: Qatar 2026
0: देखो दोहा तैयार हो चुका है एक ऐसे कॉमेडियन के लिए जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं भाई, बहुत लोग उनके बहुत बड़े फैन हैं। और आ रहे हैं मैक्स अमीनी। मैक्स अमीनी परफॉर्म करने जा रहे हैं कतर में। आई रिमेम्बर के बहुत सारे कॉमेडियंस यहाँ पर आ चुके हैं, मुझे रसल पीटर्स की उम्मीद भी नहीं थी, पर रसल पीटर्स भी आके गए। एंड डेफिनेटली मैक्स अमीनी का नाम सुनते ही पढ़ते के साथ ही मैंने कहा अरे भाई ये यहाँ तो जाना भाई। सो अभी टिकट की प्राइसिंग तो नहीं आई है, मगर ऐसा कॉमेडियन जो जाना जाता है अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए और यूनिक इनसाइट्स के लिए हर दिन की, तो वो कॉमेडियन आपके सामने आ जाए परफॉर्म करे, हो सकता है कि वो आपको ही मौका दें अगर आप स्टेज के आसपास हैं बोलने का। वैसे तो वो सबको मौका देते हैं, किसी को भी बीच में पकड़ लेते हैं। और क्राउड वर्क बहुत कमाल का है मैक्स अमीनी का। सो ही इज गोइंग टू परफॉर्म इन कतर रियली रियली सून। जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो टिकट्स वो खुल चुके हैं, तो आप जाके जहाँ पे टिकट्स मिलते हैं बहुत सारे इवेंट्स के वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। आई कैन नॉट टेल यू द वेबसाइट बिकॉज ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस कमर्शियल रीजंस एंड बाउंड्रीज, मगर मैक्स अमीनी कतर जब आप टाइप करेंगे सो आपको वेबसाइट भी मिल जाएंगी जहाँ पर आप प्री रजिस्टर कर सकते हैं फॉर टिकट्स। राइट नाउ द प्राइस आई बिलीव इट्स नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ, बट एज सून एज यू प्री रजिस्टर आई थिंक दे आर गिविंग यू द प्राइस। सो आप जाके टिकट्स बुक कर लीजिएगा, बिकॉज ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जब आएंगे और बताया जाएगा कि आप परफॉर्म कर रहे हैं वैसे ही टिकट्स बिक जाएंगे सारे के सारे, सोल्ड आउट हो जाएंगे एंड फिर अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। सो मैक्स अमीनी की अगर आपने एक भी वीडियो देखी है तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्यों उनकी तारीफ कर रहा हूँ। ही डिजर्व्स ऑल द अटेंशन एंड ऑल द अटेंशन ऑफ कोर्स एंड ऑल द लाइक्स एंड प्रेजेस। सो वो परफॉर्म करने वाले हैं कतर में। सो आई एम एक्साइटेड, मैं जरूर जाऊंगा मैक्स अमीनी को देखने के लिए एंड उनका क्राउड वर्क देखने के लिए स्पेशली, बिकॉज जो कॉमेडियन स्टेज पर आके सिर्फ जोक ना करें और साथ में उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी रखें, ऐसे कॉमेडियंस भाई मुझे बहुत पसंद है। सो आई एम नॉट गोइंग टू मिस आउट ऑन दिस वन, दिस इज डेफिनेटली ऑन द लिस्ट। तो ये जरूर देखिएगा मैक्स अमीनी लाइव इन कतर, ही इज गोइंग टू परफॉर्म एन अनफॉरगेटेबल कॉमेडी शो। Pre-registration is now open. Okay, आगे बढ़ते हैं।
1: Qatar 2026.
0: तो देखिए अगला जो इवेंट है ये मेरा फेवरेट है और इसमें मैं अभी होके भी आऊँ रिसेंटली, बहुत बहुत कमाल का है कतर टॉय फेस्टिवल। जब ये आने वाला था आपको याद होगा चंद महीनों पहले मैंने आपको बताया था मैं कितना एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई एब्सोल्युटली अडोर दिस इवेंट। इन्होंने लॉन्च किया है समर कैंप फॉर सेकंड सक्सेसफुल ईयर, एक वाइब्रेंट डायनेमिक प्रोग्राम है इनका जो बच्चों के लिए और प्री टीन्स के लिए बनाया गया है।

0: इस पूरे सफर में, मतलब पिछले साल भी और इस साल भी, काफी क्रिएटिविटी, एक्सप्लोरेशन और खुशी का मौका दिया उन्होंने. दिस इज रनिंग फ्रॉम 5 to 30th of July. सो अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं, सो प्रॉब्ली आपके पास चांस होगा, आई बिलीव सो, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएगा. सो 30 जुलाई तक ये इवेंट है, सिर्फ फ्राइडे सैटरडेज नहीं है, 2 दिन की इसकी भी छुट्टी है. मगर जो कैंप है वो किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है वो आप ध्यान रखिए, 4 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली है. अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मगर जो एक्टिविटीज हैं वो 4 से 12 साल के बच्चों के लिए हैं और उनके हिसाब से टेलर्ड एक्टिविटीज यहाँ पर मौजूद हैं. काफी मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शन है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चों को कह दिया बेटा ये कर लो खेल लो, नहीं. इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. इसके अलावा दोहा एग्जीबिशन में, क्योंकि ये हो रहा है दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, सो जो वहां पर हैं जो कैंपर्स बनेंगे उनके लिए एक पूरी अलग दुनिया है, एक अलग साइड है कतर टॉय फेस्टिवल की, जो कि स्पेशली डिजाइन की गई है एक डीपर डिस्कवरी के लिए. और उसमें हैंड्स ऑन फन एक्टिविटीज है, एंड जो इनकी एक्टिविटीज होती है वो ऐसी नहीं है कि ऊपरी बस किया जाओ बेटा हाँ इधर से ये बॉल उधर फेंक दो हो गया काम, नहीं. काफी इमर्सिव है बिकॉज इट लेट्स योर किड लर्न अ लॉट विच इज बियॉन्ड द यूजुअल फेस्टिवल विजिट. तो आप जाएंगे तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन जो कैंप लगा है इसका वो बड़ा अच्छा है. कैंप सच में बहुत प्यारा है, मैंने कुछ वीडियोस देखे एंड आई लव्ड इट. सो ये जो दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में है टॉय फेस्टिवल, ये 5 से 30 जुलाई तक है, सुबह के 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक. एंड जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन, फ्राइडे सैटरडेज ऑफ है और जो चौथा वीक है इसका, जो लास्ट वीक है जिसमें आप जा सकते हैं, इसमें बिल्डिंग डिजाइन और रिसर्च स्किल्स हैं जो कि एम्पावर करती हैं बच्चों को, सिखाती हैं कि किस तरीके से टीम वर्किंग बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क होता क्या है, और उनको मौका मिलता है कि अपने ओरिजिनल आइडियाज़ को आगे लेके आएँ. क्योंकि एक सेक्शन है साइंस स्ट्रीट मिनी एक्सपो, ये बच्चों के लिए है स्पेशली, ताकि वो अपने आइडियाज़ भी आगे रख सकें. उसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसमें इमर्सिव एक्टिविटीज़ हैं, एंड ऑफकोर्स बच्चे जब ऐसे कैंप्स में जाते हैं तो ना सिर्फ उनका दिमाग खुलता है, उनका जहन खुलता है, वो नए दोस्त बनाते हैं, लाइफ का एक पीओ भी चेंज होता है, पर्सपेक्टिव चेंज करते रहना चाहिए. ये हमने भी सिखाया है, लोग कहते हैं ना, इवन हमारे इस्लाम में भी कहते हैं कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका परसेप्शन बदलता है, चेंज होता है, आप खुलता है आपका दिमाग. सो ट्रैवल करें और बच्चों को, क्योंकि ऑफकोर्स आप उनको भी ले जाना चाहेंगे उनका भी जहन खुले, वो भी उनका पर्सपेक्टिव बदले. सो कीप चेंजिंग देयर पर्सपेक्टिव. यू नेवर नो कि आपका बच्चा इन समर कैंप्स की वजह से हो सकता है कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसी चीज डिस्कवर कर ले जो शायद आपको भी नहीं पता. यू नो देयर आर टाइम्स जब आपको लगता है कि बच्चा जो है कुछ और चीज में उसको शौक रखता है, लेकिन द मोमेंट यू हैंड हिम अ पेंट ब्रश, यू हैंड हिम सम ब्लॉक्स टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, वो बच्चा उसमें बहुत इंटरेस्ट हो जाता है, एंड यू रियलाइज कह रहे वाह ये तो पेंटिंग भी कर लेता है, ये तो ये भी कर लेता है. सो वो जो परसेप्शन है, वो जो पीओवी चेंज करने का तरीका है, वो यही है. ऐसे ही एक्टिविटीज हैं, ऐसे ही समर कैंप्स हैं. सो कतर टॉय फेस्टिवल का पूरा पूरा फायदा उठाइए. एज ग्रुप फिर से बता दूं, 4 से 12 साल के बच्चों के लिए है, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग. सो DECC 5 से 30 जुलाई, आई बिलीव जब आप सुन रहे होंगे तो लास्ट वीक होगा, तो लास्ट वीक का मैंने बता दिया क्या एक्टिविटीज है, सुबह के 8 से दोपहर के 1 बजे के बीच में. और बड़े भी जा सकते हैं, नॉट इन द कैंप, मगर आप टॉय फेस्टिवल जरूर घूम सकते हैं. तो आप जरूर जरूर जाएं, यू माइट फील नॉस्टैल्जिक, एंड ऑल्सो आपको बहुत सारे वहां पे जो कॉस्ट्यूम में मिलेंगे आपको, इट्स लाइक कॉमिकॉन टाइप का चीज है ये, और बहुत बहुत प्यारा है. तो जरूर हो क्या ये. ओके, मूविंग ऑन.
1: आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
0: देखो जब म्यूजिक की बात आती है ना और बैकग्राउंड स्कोर की, तो मैं एक बंदे का बहुत बड़ा फैन हूँ. आई स्टिल रिमेम्बर एक मूवी देखी थी मैंने जिसका नाम है डंकर्क. डंकर्क में म्यूजिक जो बैकग्राउंड का है वो बड़ा कमाल का है. जो साउंड है, जो म्यूजिक है, BGM है, वो ऊपर की तरफ जाता है, टिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग, और पूरी टेंशन बना के रखता है उन्होंने. भाई ये क्या आइडिया है, आपको लगेगा आप शायद म्यूजिक ड्रॉप होगा, लेकिन म्यूजिक ड्रॉप नहीं होता, एंड इट क्रिएट्स टेंशन. फिर एक उसमें मैंने साउंड सुना था, ठीक घड़ी के साउंड के साथ जो म्यूजिक क्रिएट किया गया है, ऐसे बहुत कम लोग सोच पाते हैं. मेरे जहन में एक ही नाम है जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बैकग्राउंड स्कोर के मामले में और म्यूजिक देने के मामले में इन जनरल, जब बात आती है इंटरनेशनल आर्टिस्ट की. सो हैंस ज़िमर इज हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस. सो हैंस ज़िमर टूर पे निकले पिछले साल मैंने सुना था, आई थिंक, पता नहीं हुआ नहीं हुआ, मुझसे मिस हो गया था। तो इस बार भी ही इज रेडी टू सेट न्यू स्टैंडर्ड्स अपने।

इलेक्ट्रॉनिक साउंड एलिमेंट्स के साथ और एक इमर्सिव लाइट प्रोडक्शन के साथ वो आएंगे कतर में. और इस बार भी बड़ा यूनिक स्टेज तैयार किया जाएगा ताकि उनकी जो सक्सेस स्टोरी है अपने प्रीवियस प्रोडक्शन की, नेक्स्ट लेवल जो वो कहते हैं उनका लाइव प्रोडक्शन का नाम है द नेक्स्ट लेवल, वो हैंस ज़िमर की रिलेंटलेस ड्राइव को शोकेस करता है. किस तरीके से उन्होंने आर्टिस्टिक बाउंड्रीज को पार किया है. क्या होता है कि आप अपने काम में बहुत माहिर होंगे, ठीक है, बट समटाइम्स यू फील कि मैं अभी इतना माहिर हूं कि मुझे कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू क्रॉस द आर्टिस्टिक बाउंड्रीज, और फिर आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं. बट हैंस ज़िमर इज टोटली डिफरेंट. He is one crazy artist. होते हैं लोग कहते हैं भाई artist सन की होते हैं. He is the prime example who constantly pushed his artistic boundaries and did something else. हमेशा explore करते आए हैं वो नए paths of music and evolve करते आए हैं उस sound को. आप कभी भी Hans Zimmer जब लिखा है music by Hans Zimmer, automatically आपके दिल में आता है यार ये बंदे ने कुछ तो किया होगा इस बारे में. And that is how he has created his image. तो एक नए vision के साथ इस बार वो दोहा भी आ रहे हैं. And he has tons of fans like me as well. So, तैयार हो जाइए एक Sonic World Beyond Imagination feel करने के लिए, क्योंकि this is their theme and globally recognized है उनका music. बहुत सारे movies में से Hans Zimmer ने बड़े-बड़े काम किए हैं. और जब मैं नाम बताऊंगा किन-किन चीजों में उन्होंने काम किया है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि बंदा तारीफ के लायक है. वो music composer रहे हैं Lion King में. ग्लैडिएटर को उन्होंने स्कोर दिया है. एंड माय फेवरेट व्हिच इज एब्सोल्युटली अ बैंगर वो है डार्क नाइट ट्रिलॉजी, बैटमैन बिगिंस, डार्क नाइट एंड डार्क नाइट राइजेस, सबका म्यूजिक दिया है ज़िमर ने. फिर द लास्ट समुराई, अगर आपने नहीं देखी लास्ट समुराई का म्यूजिक उन्होंने दिया है. इंटरस्टेलर ब्रो, मतलब और क्या एग्जांपल. इंटरस्टेलर का म्यूजिक उन्होंने दिया है, इंसेप्शन का दिया है, ड्यून पार्ट वन का दिया है, और बहुत ही रिसेंटली उनकी एक मूवी आई थी जोसेफ कोइंस्की की F1 द मूवी, हाईएस्ट ग्रॉसिंग स्पोर्ट्स फिल्म है वो ऑफ ऑल टाइम. उसमें भी अवार्ड जीता है हैंस ज़िमर ने, अ गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन. दिस इज एन अवार्ड फॉर हिम नो. और ये हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी का हिस्सा बनने के बिना भी वो बहुत बड़े बन चुके हैं इंडस्ट्री में. सो उनकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग अप्रोच है म्यूजिक के कॉम्पोजिशन के लिए, वो मॉडर्न सिनेमेटिक साउंड को बदलती आई है. लोग उनको देख के रिस्क लेना चाहते हैं जो बैकग्राउंड स्कोर देते हैं, बिकॉज पीपल फील कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई टेंशन वाला सीन है तो बैकग्राउंड म्यूजिक में साउंड इफेक्ट्स सस्ते वाले करो. पर आप समझ गए ना, टेंशन की भी अलग अलग किस्म के साउंड इफेक्ट्स, साउंड एलिमेंट्स डाले जा सकते हैं. तो कुल मिला के एक्सपेरिमेंटिव, ही इज अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट. कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है. हैंस ज़िमर अपने आप में हैंड्स डाउन वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी. एंड वो दोहा आ रहे हैं 974 स्टेडियम प्रिसिंक्ट परफॉर्म करेंगे. एंड ये अभी आने में टाइम है, 6 नवंबर को आएंगे, बट ही इज गोइंग टू परफॉर्म शाम में 6 बजे से रात के 12 बजे तक. तो 4 घंटे का बहुत कमाल का इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा हैंस ज़िमर जब यहाँ पर आएंगे. अगर आप हैंस ज़िमर को नहीं जानते हैं, कभी सुना नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगा आप जाइए. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कतर फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा वाले कहीं परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो उनके परफॉर्मेंस कभी मत छोड़िएगा. वैसे ही आई वुड से कि हैंस ज़िमर अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो भाई बनता ही नहीं आपका छोड़ना. ओके, मूविंग ऑन. अब अगला जो है अगला स्टोरी टेलिंग पर है. मैं ये समझता हूँ कि स्टोरी टेलिंग एक ऐसा आर्ट है, क्योंकि मैं खुद स्टोरी टेलिंग करता हूँ. मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो मैं बहुत बड़ा स्टोरी टेलर हूँ, नहीं, बट स्टोरी टेलिंग इज़ एन आर्ट फॉर्म जहाँ पर आप बहुत छोटी सी बात को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स बात को आप बहुत आसान करके किसी के भेजे में भी चिपका सकते हैं. एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट. और जब बच्चे स्टोरी टेलिंग से मुखातिब होते हैं तो उनके लिए कोई बड़े से बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज उन्हें परेशान नहीं कर सकती कुल मिला के. सो दे अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड जो दिमाग की ग्रोथ है वो स्टोरी टेलिंग के जरिए होती है. समटाइम्स आप कुछ चीजें देखते हैं और आपको वो चीजें याद करने के लिए कहानी बुननी पड़ती है जो आपके दिमाग में आप बुन लेते हैं. एंड दैट्स हाउ आवर ह्यूमन ब्रेन वर्क. तो एक स्टोरी टेलर के तौर पे ये इवेंट को प्रमोट करते हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जो कि 18 अगस्त से 22 अगस्त तक होगा. ये एक छोटी बच्ची की कहानी है, लायला, जो जाती है अपनी ग्रैंड मदर के पास विजिट करने के लिए. एंड उसे रास्ते में एक बहुत ही चालाक वुल्फ मिल जाता है, भेड़िया, जो उसे धोखा देने की कोशिश करता है. डिसेप्टिव है काफी ज्यादा. और इस स्टोरी हाईलाइट करती है टेंशन बिटवीन इनोसेंस एंड डिसेप्शन, मतलब मासूमियत और धोखाधड़ी के बीच का जो रास्ता होता है उसको अच्छे से दिखाती है. और ये जो कहानी

काफी काफी ज्यादा पॉपुलर है. टाइम ऑनर्ड टेल, वक्त जिस कहानी की इज्जत करे उसकी इज्जत तो हम क्यों ना करें. तो जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन हैव एंजॉयड दिस स्टोरी एंड ना सिर्फ बच्चे, जो बच्चे बड़े हो चुके हैं जिन्होंने ये कहानी देखी है पहले, एंड नाउ देयर एडल्ट्स, दे आल्सो लव द स्टोरी. तो अब विजिट करिएगा थिएटर अपने बच्चों के साथ एंड एक लॉन्ग लास्टिंग फैमिली मेमोरीज हम जरूर बनाएंगे. एक नहीं दर्जन बनाएंगे. मेमोरीज बोला है मैंने, जब प्लूरल तो मेमोरीज, सिर्फ मेमोरी नहीं. तो लैला एंड द वुल्फ ये कहानी का नाम है एंड इट इज रिकमेंडेड फॉर 4 to 11 ईयर्स ओल्ड किड्स. और ये परफॉर्मेंस इसकी जो होने वाली है ये अरेबिक में होगी, बट आपको समझ में आ जाएगी. अगर आपने यहाँ पे रहे हैं, आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी. बाकी अगर आपको अरेबिक समझ में आती है तो ये लोग ज़्यादा डिफिकल्ट डायलेक्ट यूज़ भी नहीं करते. इट इज़ डन इन अ वेरी नाइस एंड सटल वे, जिसका डायलेक्ट भी ईजी है समझने के लिए. एंड इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म इन अरेबिक एज आई मेंशन. सो ये परफॉर्मेंस, आफ्टरनून परफॉर्मेंस रखी गई है 18 अगस्त से 22 अगस्त तक शाम के 4 बजे. ठीक है, शाम के 4 बजे. लोकेशन है दोहा प्लेयर्स कम्युनिटी थिएटर ग्रुप, 18 अगस्त 22 अगस्त तक शाम के 4 से 4:40 के बीच में. सो ये कुछ इवेंट्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, बिकॉज ये अगर आपसे छूट गए तब तो पीर जी दिक्कत हो जानी है. तो आप इन इवेंट्स पे जरा ध्यान रखिएगा. बाकी कोई ऐसा इवेंट आपको लगता है कि भाई हमसे छूट गया और आप बताना चाहें तो प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज बताएं, प्लीज प्लीज नो. एंड इसके अलावा मैं आपकी नज़र ले जाना चाहूँगा वाटर पार्क्स की तरफ भी. जो वाटर पार्क्स हैं कतर में, वहाँ पे भी कई सारे डिस्काउंट्स हैं. वहाँ पर भी आप ज़रूर ज़रूर होके आएँ, बिकॉज दे हैव ओपन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी हैं, सिंगल्स के लिए भी हैं, जो सिंगल नहीं है उनके लिए भी हैं. और ये चल रहे हैं अभी इवेंट्स, कई जगहों पर ख़त्म हो जाएंगे इस हफ्ते, कुछ कई जगहों पर चलेंगे. एंड इसके अलावा PSCC की तरफ से भी एक इवेंट जारी हुआ है, केयर समर प्रोग्राम, जो कि फ्री फील्ड ट्रेनिंग है स्टूडेंट्स के लिए कतर में. ये भी काफ़ी काफ़ी अच्छा इवेंट है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके जरिए 12 से 18 साल के बीच में जो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं उनको इस प्रोग्राम से जोड़ा जा रहा है, चाहे वो सिटीजन्स हो चाहे रेजिडेंट्स हो. और कंडक्ट किया जा रहा है एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम, लेकिन बहुत ही ज़रूरी प्रोग्राम, ताकि बच्चे जो हैं अपने एनवायरमेंट से जुड़ें, हेल्थ सेंटर से जुड़ें और हिस्सा लें अलग अलग हेल्थ सेक्टर्स के कामों में. और हो सकता है दे माइट एज वेल वॉन्ट टू वर्क फॉर हेल्थ सेक्टर्स. ये एक ट्रेनिंग है और ये जो चलेगी ये 3 अगस्त से 26 अगस्त तक चलेगी, 3 दिन हर हफ्ते, मंडे ट्यूसडे और वेंसडे, और 2 शिफ्ट्स में चलेगी, मॉर्निंग सुबह 10 से 1 और फिर शाम को 5 से 8. ये अलसद अलवजबा उमसलाल की तरफ ये इवेंट्स रखे गए, मतलब ये प्रोग्राम रखा गया और सारे स्कूल्स को जोड़ने की कोशिश है, एंड विच इज सच अ ग्रेट इनिशिएटिव. तो इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं. इसके अलावा विजिट कतर का एक इवेंट है जो आने वाला है. दे आर प्रेजेंटिंग पार्टनर फॉर कतर गुडवुड फेस्टिवल 2026, जिसका काफ़ी काफ़ी भारी भरकम इनाम भी है. सो इट्स गोइंग टू टेक प्लेस 28 जुलाई से 1 अगस्त तक वेस्ट ससेक्स यूनाइटेड किंगडम में. ये हमें देखने को मिलेगा, तो मैंने इसलिए इसको लास्ट में रखा बिकॉज इट इज़ नॉट हैपनिंग इन कतर, बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन वॉच ऑन डिफरेंट चैनल्स एंड दिस कैन बी ऑल्सो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. इसके अलावा जो है समर क्लासेस कतर में जारी हैं, अगर आप स्विमिंग क्लासेस लेना चाहते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी हैं, ये समर क्लासेस जगह जगह पर दी जा रही हैं. और अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं, भाई तैरना सीखो क्योंकि यही मौका है. हैमिल्टन एक्वाटिक्स में है, स्पीडिया स्पोर्ट्स में है, एक्सेलरेट स्पोर्ट्स सेंटर में है, होब्स स्पोर्ट्स सेंटर में है, रेनबो कलर स्पोर्ट्स अकेडमी दे रही है, स्पोर्ट्स कासल दे रहा है, स्पार्टा स्पोर्ट्स में है, बहुत अलग अलग जगहों पर, इवन पर्ल स्पोर्ट्स अकेडमी जो मेरे घर के पास में, वहाँ पर भी स्विमिंग क्लासेस चल रही हैं. सो आप बच्चों के साथ इस भी एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ चांस फॉर यू टू हैव दैट कम्युनिकेशन विद योर किड. एंड ये आप इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं. बाकी कुछ और छोटे मोटे इवेंट्स हैं जो बड़े स्केल पर हैं, बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं. अभी क्या फुटबॉल गया ना, तब से लोग जो हैं थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अब क्या देखें. अभी भी बहुत कुछ है, जैसे कि आई गिव एन एग्जांपल, कलर वर्ड्स एक्सपीरियंस. मैंने आपको बताया था कलर वर्ड्स एक्सपीरियंस आपको मिलेगा 20 जुलाई से, ये शुरू हो चुका है रिसेंटली, 15 सितंबर तक है. तो ये जो दुनिया बनाई गई है कलर वर्ड्स की, ये कलर रामा एक इमर्सिव एनवायरनमेंट है. लेट मी टेल यू दिस इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, तो काफ़ी इंटरेक्टिव इंस्टॉलमेंट्स हैं, लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेज हैं और ऐसा एनवायरनमेंट है जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो बच्चों को बहुत मजा आएगा. इसमें कैरेक्टर मीट एंड ग्रीट भी रखा गया है और ये साउथ पार्क कतारा कल्चरल विलेज में रखा गया है 20

जुलाई से 15 सितंबर, तो अभी भी टाइम है, जरूर जाइए। टेंटेटिव ओपनिंग डेट तो उसकी 20 को, तो खुल चुका होगा अभी तक तो। और इसकी टाइमिंग है वीकडेज में शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक, और 4 बजे से 11 बजे तक ये वीकेंड्स पर रहेगी। प्राइसेस इसके देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आपको पता लग जाएंगे। एंड इसके अलावा जो समर कैंप्स हैं वो तो लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पे। आई के लिटिल स्टार्स भी जारी है, आई थिंक जब ये आप शो सुन रहे होंगे तो मे बी इट्स गॉन नाउ। 31 जुलाई तक वो भी रहा है। एंड मॉर्निंग जो जॉगिंग सेशंस हैं वो भी रखे गए हैं दोहा फेस्टिवल सिटी में, जो कि 31 अगस्त तक हैं। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस एज वेल। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, यू नो समटाइम्स यू फील लाइक कि मैं रनिंग करूं, जॉगिंग करूं, कहीं से तो अपनी सेहत का ख्याल रखूं। सो जो इनिशियल कहते हैं ना लोग, इनिशियल 1-2 किलोमीटर जो है वो मायने रखते हैं, तो आई थिंक कहीं से शुरुआत होगी तो आपकी यहाँ से हो सकती है। इंडोर है, सबसे अच्छी बात यह है, और इंडोर में तो भागने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, एक्सरसाइज सब कुछ कराई जाएंगी। सो 5 किलोमीटर का रन है, और ये एक रनिंग क्लब बनाया गया है दोहा फेस्टिवल सिटी में, जो फ्राइडे मॉर्निंग्स को आपकी तैयार करेगा, वर्जिश करा देंगे, आपकी तैयार कर देंगे एकदम आपको बढ़िया तरीके से। तो यहाँ का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा एक हेरिटेज और ट्रेडिशनल क्राफ्ट समर वर्कशॉप भी जारी है, और ये जो समर वर्कशॉप है ये रखी गई है सिर्फ लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए। 9 साल से 14 साल की बच्ची बच्चियां सुन रही हैं, तो बेटा स्वीटहार्ट दिस इज फॉर यू। और ये बिल्डिंग 46 में है, साधु एग्जीबिशन कतारा में, और ये 4 अगस्त तक ये चलने वाला है। एंड दिस इज फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 12 PM, एंड एंट्री फ्री है, तो इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा ऑल द म्यूजियम्स अराउंड यू, स्पेशली ये जो अपना कौन सा म्यूजियम है, अरे ये नेशनल कतर नेशनल म्यूजियम, तो नेशनल कतर म्यूजियम, कतर नेशनल म्यूजियम, हाँ मैं आगे पीछे हो जाता हूँ, बट म्यूजियम्स अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए कतर के, दिस इज योर टाइम टू डू इट, बिकॉज हम कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और सारे के सारे म्यूजियम्स हमने अभी तक नहीं देखे, क्योंकि हमारे जहन में होता है म्यूजियम देखे जगह जगह बोरिंग से होते हैं। कतर के म्यूजियम्स आर डिफरेंट ब्रो, यहाँ म्यूजियम्स भी बोरिंग नहीं है, उनमें भी एंटरटेनमेंट का फुल मसाला झोंका गया है, तो आप जरूर जरूर देखें। सबसे पहले तो आप MIA से शुरू कर सकते हैं, MIA जाइए, नेशनल कतर म्यूजियम जाइए, और इसके अलावा जो मशहब म्यूजियम वहां पे नहीं जाना है, मुशारिब जाइए। आपको हर जगह हर म्यूजियम में कुछ ना कुछ इंटरेक्टिव मिलेगा, और अभी तो ऑटो वर्कशॉप भी शुरू होने वाली हैं, काफी सारी चीजें हैं जो इंडोर्स रखी गई हैं आपकी सहूलत के हिसाब से। सो उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए, दिस इज योर चांस टू गो आउट। ये बहाना ना बना के कि गर्मी हो रही कौन जाएगा, आपको पैदल नहीं चलना है कोई, नो बडी इज फोर्सिंग यू, बट बी अ पार्ट ऑफ ऑल दीज इवेंट्स। और कोई इवेंट अगर आपने विटनेस किया एंड यू वांट टू टेल अस, प्लीज प्लीज बताइएगा, एंड वी वुड लव टू नो, वी वुड लव टू ऐड दिस ऑन द लिस्ट। फुटबॉल के बाद से लोगों ने बाहर इवेंट जरा क्या कहते हैं देखने के लिए बाहर जाना थोड़ा बंद कर दिया, क्योंकि पहले वो ना चस आ रही है जी बाहर देखेंगे फुटबॉल द मैच, वो भी बंद हो गया है, तो पीपल आर फाइंडिंग वेज टू जस्ट गो आउट एंड स्पेंड सम टाइम, तो रादर देन गोइंग जस्ट टू बीचेस, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि लोगों का बाहर जाने का मतलब सिर्फ एक ही है, मैं तो जी बीच पर आ जाऊंगा बस। बीच के अलावा भी बहुत कुछ है तो जाइए। एंड ऑल्सो जीवान आइलैंड पे भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, पर अल्टीमेटली आप जरूरी नहीं कि कुछ वहाँ पे खरीदने के लिए ही जाएंगे, जीवान आइलैंड आप वैसे भी जा सकते हैं। पार्किंग का जरा ध्यान रखिएगा, एंड अगर आप वीकडेज में जाते हैं वीकेंड के अलावा तो ये बहुत बढ़िया है। बस ये वाले जो इवेंट्स मैंने बताए ये सब के लिए, आप कोई मुझसे ये ना बोलिए आप तो बैचलर्स के लिए बता, मैं बता रहा हूँ हर किसी के लिए भाई, हर किसी के लिए। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो मैंने शुरुआत में कहा था वो फिर से दोहराऊंगा, वो ये कि जो स्टेकेशन का मामला है कतर में वो अभी गर्मा गर्म चल रहा है, इसका फायदा उठाइए, बिकॉज टन्स ऑफ होटल्स आर ऑफरिंग लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें स्टे भी शामिल है। हो सकता है कि आपको स्टे ना करना हो, जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, फैमिली के साथ नहीं आप दोस्तों के साथ जाइए वहाँ पे, जहाँ पे बूफे ऑफर्स जारी हैं, जहाँ पर आपको ब्रंच के, लंच के, ब्रेकफास्ट के, डिनर के तमाम तरीके के ऑफर्स हैं। और क्या ये जो समर एक्टिविटीज हैं इनका समर में ही मजा है, आई नो हमारा दिमाग ये कहता है कि अरे जब थोड़ा मौसम बढ़िया हो जाएगा तब जाके कहीं ना कहीं कुछ देख लेंगे, लेकिन गुरु ये वाले जो अभी इवेंट हो रहे हैं उनका फायदा भी है। जैसे आधे लोगों ने मैंगो फेस्टिवल मिस कर दिया होगा, कोई सेंस है इस बात का? मतलब मैंगो फेस्टिवल ऐसा है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए था। और अब इसके अलावा इवेंट से जुड़ी हुई एक और बात, लास्टली भाई साहब नई नई चीजें ट्राई करने का मौका है आपके पास। रिसेंटली मैंने एक हमारे भाई हैं पाकिस्तान से, तो उन्होंने भी बताया फालसे में

0: मिल रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आपने ये सब भी नहीं खाया जो गर्मी के मौसम में मिलता है तो कुछ नया ट्राई कीजिए। बहुतों को फालसे भी नहीं बताऊंगे, तो फालसे ट्राई कीजिए ब्रो, फालसे। तो मैं समझा देता हूँ, फालसे क्या है, जामुन के क्लोज कजन है, छोटे कजन है बेसिकली। जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं वो तो समझ गए होंगे, पाकिस्तान में भी फालसे लोगों को पता है, पर जिनको नहीं पता है मिस कर रहे हैं आप कुछ बहुत बढ़िया चीज। मेरी इस बात तो इग्नोर मत कीजिएगा, टेक इट वेरी वेरी सीरियसली और फालसे के मजे लीजिए, चटकारे मार के, क्योंकि गर्मी के बाद, गर्मी के सीजन के बाद आपको नहीं मिलने के। अब कहाँ मिलेंगे ये तो मैं भद्दे को प्रमोट नहीं कर सकता, मगर आप फालसे जब टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में नाम मत पूछना, मुझे भी नहीं पता फालसे का, बट दे आर एब्सोल्युटली अवेलेबल इन इन कतर। और कुछ खाने जैसे मैंने कहा कि सिर्फ सीजनल होते हैं तो उनका फायदा उठाइए। ऑन दैट नोट आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। प्लीज गेट इन टच विद अस, और आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, dohawalakabir.fm107, कबीर की स्पेलिंग रहेगी KABIR। एंड इसी के साथ साथ अगर आप कुछ इवेंट्स बताना चाहें जो आने वाले हैं, आप इवेंट्स का हिस्सा बने हैं, किसी भी बताए हुए इवेंट में जाएं या अपने किसी इवेंट में गए तो हमें जरूर टैग कर दीजिएगा अपनी स्टोरीज में, स्टोरी बनाएं FM107 Qatar, FM107 Qatar, हमें टैग जरूर कीजिएगा। इफ यू वांट टू टैग मी ऑल्सो dohawalakabir.fm107। और आपसे मैं चाहूंगा इजाजत, दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक इवेंट्स में भर भर के जाइए, दोस्तों के लिए जाइए, फैमिलीज को लेके जाइए, सब इवेंट्स का भरपूर फायदा उठाइए एंड अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa

वरकातुह। सामाईन, इस वक्त दोहा में सुबह के 9 बज रहे हैं। आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो क़तर FM 107। मोहम्मद नफीस से समात कीजिए आज का पहला नशरिया, और इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम ख़बरों का खुलासा। साहिब सुमो अमीर की हिदायत पर अमल करते हुए इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप का एक खसूसी दस्ता दोहा से दोस्त मुल्क स्पेन के लिए रवाना किया गया है। वजीर दाखला और दाखिली सलामती फोर्स लखविया के कमांडर नीज पुलिस अकेडमी के आला काउंसिल के चेयरमैन ने पुलिस अकेडमी में मुनाकिदा मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्रामों की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत की है। वजारत खारजा में वजीर ममलकत से जमहूरी गयाना के वजीर खारजा व बैन अल-अक़वामी ताउन ने टेलीफोन के जरिए राबता कायम किया है। वजारत महनत ने इंसदाद इंसानी स्मगलिंग की नेशनल कमेटी की नुमाइंदगी में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कौमी रेफरल निज़ाम का आगाज कर दिया है। रियासत कतर ने जमहूरी आयरलैंड की जानिब से इसराइली मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी से मुतालिक कानून की मंजूरी का खैर मकदम किया है। गजा पट्टी में काबिज इसराइली फ़ौज के फ़जाई हमलों के नतीजे में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जबकि मुतअद्दद दीगर अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। सामईन, यह था अहम ख़बरों का खुलासा, और अब पेश खिदमत है रेडियो क़तर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया।

0: hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
4: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
3: गेम ऑन,
4: वॉल्यूम अप,
3: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
4: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
3: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
6: आज ही राब्ता करें
5: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
4: दिल से देसी.
7: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में. हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए. अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं. हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी से अपना सकते हैं. माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है. इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकेंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं. तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं. समीन, मुसलमान की पूरी ज़िंदगी विलादत से लेकर वफात तक सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में ढली हुई है. इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होना ये एक इबादत होने के साथ साथ मुसलमान के लिए मुकम्मल तर्ज हयात भी है. सामिन, जब हमारा छोटा नन्ना मेहमान दुनिया में आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को हिदायत दी कि बच्चे के दाएं कान में अजान दी जाए और ये हिदायत हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मिलती है. तिर्मिज़ी की रिवायत है, हज़रत अबू राफ़े बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के कान में अजान दी जब वो फातिमा के यहाँ पैदा हुए थे. और बज़ाहिर ये अमल इस बात की अलामत है कि बच्चे की पहली समात तौहीद और अल्लाह की किबरियाई के कलिमात से आबाद हो. ज़रा सोचिए सामीन, एक नन्ना बच्चा जो अभी दुनिया की किसी बात से वाकिफ नहीं,

0: उसके कान में सबसे पहले ये सदा गूंजती है, यानी अजमत, किबरियाई और तौहीद का पैगाम। ये मंजर बताता है कि इस्लाम इंसान की तरबियत का आगाज जिंदगी की पहली सांस से ही करता है। इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने फरमाया, अजान का राज ये है कि इंसान के कान में सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई, वहदानियत और कलिमा शहादत की गूंज हो। जैसे जिंदगी के आगाज पर उसे तौहीद सिखाई जाती है, उसी तरह मौत के वक्त उसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की जाती है। यूं समझिए कि जिंदगी के दरवाजे से दाखिला भी तौहीद के साथ है और उसका इख्तिताम भी तौहीद के साथ। आइए हम भी अपने घरों में इस सुन्नत को जिंदा करें, ताकि आने वाली नस्लों के कान भी सबसे पहले अल्लाहु अकबर की सदा से गूंज उठे। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती, बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है, तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में, हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. Number one hits music station. Number one hits
1: music station. Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, बाबा का दियंग अल रायान क्लब के नुमाया बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और कतर की नेशनल टीम की भी हिस्सा रह चुके हैं। फॉरवर्ड के तौर पर वो अपनी ताकतवर जिस्मानी सलाहियत, एथलेटिक मूवमेंट और स्कोरिंग की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। कोर्ट के दोनों एंड पर उनकी परफॉर्मेंस टीम के लिए बहुत मुफीद साबित होती है, क्योंकि वो ऑफेंस के साथ साथ डिफेंस में भी अहम किरदार अदा करते हैं। रयान जैसे मकबूल क्लब के लिए खेलते हुए उन्होंने मुख्तलिफ डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन में अपनी टीम की मदद की और अपनी कंसिस्टेंसी से कोचेस का एतमाद हासिल किया। कतर की कौमी टीम के लिए भी उनकी मौजूदगी फ्रंट कोर्ट को मजबूत बनाती है और वो मुख्तलिफ एशियन कॉम्पिटिशन में नजर आ चुके हैं। उनका खेल टीम वर्क, हसल और रिबाउंड पर मबनी होता है, जिसकी वजह से वो हर मैच में असरअंदाज होने की सलाहियत रखते हैं। बाबा का डीएन की मेहनत और प्रोफेशनल रवैया उन्हें कतरी बास्केटबॉल के अहम नामों में शामिल करता है और रयान के सपोर्टर्स उनसे हर सीजन बेहतरीन खेल की तवक्को रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स

ले बस बुला रहे बच्चा इधर आ जाओ, वो करो ये करो। तो ये जो एक ये हमने ये टीनेजर और ये वो इस इन मराहिल को ऐसा एक वो तसव्वुर बना लिया है। ओवरऑल ये जो निज़ाम तालीमी है ना, जो उमूमी तौर पर आलमी सतह पर जो तालीम के अब आप 22 साल 25 साल 26 साल तक बंदा सिर्फ वो तालीमाती जो एक मरहला ब मरहला मरहला दर मरहला गुजरता रहता है आगे बढ़ता रहता है, तो अचानक से उसे कही जाती है कि बाद में फरागत के बाद कि भाई अब तो जल्दी तुम्हें शादी करनी है। तो गोया कि यानी ये अचीवमेंट शहादात ये जो सर्टिफिकेट्स के अचीवमेंट है इसके बाद ही शादी का मरहला। हालांकि तालीम के साथ शादी का या बाज़ औक़ात ऐसा भी समझा जाता है कि तालीम अगर मुकम्मल ना हो तो फिर शायद वो शादी के लिए वो बंदा तैयार उस तरह जो है ना उसकी जो कैपेबल नहीं बंदा मैच्योर्ड नहीं होगा ये वो। बात ये है कि सामने कराम निज़ाम तालीमी के हवाले से अगर हम करें बात करें तो यानी आजकल के इस दौर में आप अगर यूरोप की तरफ जाएं वहाँ बाज़ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बच्चों की जो पढ़ाई है स्कूल हाई स्कूल के लेवल में मास्टर्स के लेवल में ऑनर्स के लेवल में वो काफ़ी यानी 15 साल की उम्र में ख़त्म कर रहा है ऑनर्स ख़त्म कर रहा है मास्टर्स में दाखिला ले रहा है यानी 15 साल की उम्र में उसकी पढ़ाई ख़त्म करके बाकायदा 16 साल की उम्र यहाँ तक कि खलीजी ममालिक में भी है कतर में भी एजुकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है यहाँ पर भी जो तालीम निज़ाम तालीम है उसमें तरीक़ा है कि आप बच्चों को एक वक्त 2-3 क्लास उनको वैसे आगे ले जा सकते हैं अगर वो सही से एग्ज़ाम वगैरह दे के नतायज सही लेकर आए। तो यहाँ पर भी वो यानी अब उन्होंने ये दर्जा ये माहौल रखा हुआ है स्पेस दिया है खलीज दूसरे ममालिक में भी है। ओवरऑल यानी ये जो तालीमी निज़ाम है ये फ़्रांस के उस काफ़ी एक तारीख़ी मरहला था उस तारीख़ी मरहले के बाद पूरे आलमी निज़ाम पर इसको यानी सब को मजबूर किया गया सब लोगों को कि भाई ये है एक पैटर्न ये है तरीक़ा अपने बच्चों को ऐसे ऐसे इस मरहले उम्र तक ये मरहला ख़त्म करना है इस उम्र के बाद ये मरहला इस उम्र के बाद ये मरहला। तो इस तरह उन्होंने सब हमारे लिए तय कर दिया अब हम इस जो कहते हैं ना यानी इस गिलाफ़ से नहीं निकल पा रहे। अच्छा अब इस गिलाफ़ से जब नहीं निकल पा रहे तो हमारे जो नौजवान की जो सलाहियतें हैं जो बातें ये उस तरह निखर भी नहीं पा रही वो उन्हें वक्त भी नहीं मिल रहा कि वो अपने आप को सबूत करें मैदानों में अपने आप को साबित करें। तो इस वजह से यहाँ बाज़ जो है ना माहिरीन कहते हैं कि आज की जो जो बाउंडिंग्स हैं शादी की ये रिश्ते तलाक़ ज़्यादा हो रहे हैं इसकी वजह एक ये भी है बाज़ ये कहते हैं निज़ाम तालीमी है कि बच्चा बस किसी भी तरह वो तो जब पढ़ाई के दिनों में मास्टर्स डॉक्टर ये वो डॉक्टरेट ये वो तो पूरे पढ़ाई पर उसका फोकस रहता है उसे तो समाजी उमूर में उसे वक्त ही नहीं मिलता कि कैसे हमें समाज को समझें जिम्मेदारी कैसे संभालें इन तमाम चीज़ों का जो हिस्स है ना एहसास उन्हें होता ही नहीं इस वक्त से पहले। फिर जब वो मुकम्मल फरागत के बाद वो निकलता है बस उसे शादी कराते भाई चलो आ गया तुम्हें शादी का वक्त ख़वातीन हो तो भाई माशाल्लाह अब शौहर के घर में जाओ या फिर अगर बच्चे हों लड़के हैं तो फिर उन्हें कहते हैं भाई आप शादी कराएंगे तुम्हें हालांकि इनको कुछ उस तरह की तैयारी नहीं कुछ पता भी नहीं कि ये समाजी ज़िम्मेदारी चूँकि वो परिवारी जो फैमिली की ख़ानदानी जो उमूर होते हैं ना उसके लिए अलग एक वक्त चाहिए होता है ताकि वो इनको समझें। इसी वजह से इन दिनों में अब रिमोट स्कूलिंग को प्रमोट किया जा रहा है यानी रिमोट स्कूल पर आप आगे पता नहीं अगले 3-4 साल बाद 10 साल बाद क्या दौर आएगा और उसमें शायद अक्सर व बेशतर जो है ना घर से पढ़ेंगे रिमोट स्कूल चूँकि आप वक्त को ज़ाय कर रहे होते हैं यानी ये जो निज़ाम है ना आलमी निज़ाम इसमें बंदा वक्त को काफ़ी ज़ाय कर रहा होता है वो आप अगर हिसाब लगाएं कि भाई 10 साल की जो पढ़ाई वो 2 साल में ख़त्म कर सकता है यानी इस तरह के कहने वाले भी हैं ये मेरी राय नहीं ले ये मैं तो कुछ नहीं कह सकता भाई मैं तो ना माहिर हूँ ना कुछ मैं दूसरों की बात नकल कर रहा हूँ कि ये जो 10 साल की पढ़ाई हम पढ़ते हैं ये बंदा 2 साल में भी ख़त्म कर सकता है अगर सही से पढ़े।
तो

राहत, सब कुछ को आप भूल चुके हैं एक मकसद के लिए। अगर वो मकसद आपके सामने ना हो तो आप किसी दूसरे के मकसद को पूरा कर रहे होंगे, या तो आप अपने मकसद के लिए जी रहे हैं। अगर आपका अपना मकसद ना हो तो आप किसी दूसरे के मकसद को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। माया नफ्सिया तो इतना ही कहते हैं। अच्छा, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने भी कुरान में बंदों से इस तरह खिताब किया है, फहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा, हमने तुम्हें यूं ही पैदा किया बस बग़ैर किसी मकसद के। नहीं नहीं, तो अगर किसी का कुरान जो आपको कामयाबी की शादी की कामयाब शादी के राज जो बताता है वो ये कि जब हम अपना मकसद अल्लाह को बनाएंगे तो उस वक्त काफ़ी सारे मसाइल, काफ़ी चीज़ें हल हो जाती हैं यूं ही अपने आप। लेकिन अगर मकसद हो कि हम खावंद को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, देखें खावंद को खुश करना या फिर बीवी को खुश करना ये बहुत अहम है। हदीस में भी आई है कि इदखालु सुरूर फिल अहल, यानी अहल अहल वयाल को खुश करना, ये भी हदिया के ज़रिए मुस्तकिल उनको आप इधर उधर आउटिंग के लिए लेके जाते हैं, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, ये भी अच्छा। लेकिन गायत कहते हैं, एक है आपको पूरी ज़िंदगी का हदफ और मकसद हयात है बीवी को खुश करना और खावंद को खुश करना। अच्छा, ऐसे काफ़ी हज़ारों मिसालें हम देख चुके हैं कि भाई कह रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी लेकिन आप खुश ना हो पाए, तुम्हें खुश नहीं कर पाया, मैंने पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी तुम्हें खुश, तो ये यहाँ तक कि आखिरी उम्र तक पहुँच कर भी यही बात दोहरा रहे होते हैं। क्यों? अगर ये इसी ज़िंदगी को आप अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बान करें, और ये बातें मिन जुमला यानी दर्ज ज़ैल में हैं कि अल्लाह की, यानी अगर आप खावंद को खुश करने की कोशिश करेंगे तो वो भी अल्लाह की खुशी के लिए, तो असल में आप अल्लाह की खुशी को कस्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें अगर खावंद की खुशी मिल गई तो मिल गई, अगर बीवी की खुशी हो गई मिल गई तो मिल गई, वरना पूरे लोगों की तवक्कात पर उतरना ये नामुमकिन है। आप कभी किसी की तवक्कात पूरी नहीं कर पाएंगे, लोगों की चाहत को, उनकी ख्वाहिशात को आप किस हद तक पूरी करेंगे, ये तो यानी गैर महदूद है, जितना भी करेंगे उतना ही कम है। तो इसका ये मतलब नहीं हम नहीं करें, बल्कि जो भी करेंगे जब हम अल्लाह को, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी को मकसद बनाकर अपनी ज़िंदगी को जिएंगे तो इंशाल्लाह आपको उस सुकून, वो जो सुकून है अल्लाह सुब्हानहु बताया कि अमिनायात खलकलकुम नफ्स वज़वाज लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दा वरहमा, ये सारे टर्म्स ये मायर वजूद में आएंगे। वरना तो फिर देखें आजकल ऐसे काफ़ी हैं यानी जान तोड़ कर कोशिश कर रहे होते हैं अपने शरीक हयात को राज़ी करने के लिए, लेकिन रजामंदी नहीं मिलती। तो इस वजह से अगर हम जितने अल्लाह से करीब होंगे दोनों मियाँ और बीवी दोनों अल्लाह से करीब होंगे तो ये और भी हमारे लिए आसानी होगी कि हम आपस में एक दूसरे को सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करने के हवाले से हमारे लिए और भी ये यानी सहूलत का सबब बनेगी बिज़्निल्लाहि ताला। अच्छा जी, ये एक बात है कि हम जितने अल्लाह से दूर होंगे उतना ही हमारे ये जो बाहमी जो ताल्लुकात हैं ये भी नापायदार होंगे। अब जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू कर रहा था कि हमारे बच्चों को, जो हमारे भाई हैं जो हमें सुन रहे हैं, आप लोगों के पास यानी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास हमारे मकासद अहदाफ जो हमारी अपनी जो एक एम है वो हमारे सामने वाज़ह नहीं, तो इस वजह से सही तौर पर हम शरीक हयात जो आपकी पूरी ज़िंदगी आप यानी ये जो शादी का जो मुआदा है ये काफ़ी मिज़ाकुन गलीस कहा गया कुरान में। कुरान में हिफ्ज़ुन नस्ल के लिए यानी चूँकि नसब की हिफाजत, नस्ल की हिफाजत ये दीन के अहम मकासद में से है, तो इस अहम मकासद के तहफ़ के लिए यहाँ इसको मिज़ाकुन गलीस कहा गया है। अच्छा, मिज़ाकुन गलीस यानी बहुत मज़बूत मुआहदा, मज़बूत मुआहदा। दूसरे जितनी
वो आपस में एग्रीमेंट्स होते हैं, उसका एक मुद्दत होती है ना, एक

और पूछे कहीं हमारा हक इधर से ज़ाय तो नहीं हो रहा, उधर से तो ज़ाय नहीं हो रहा, ये वो, तो यहाँ क्या हुकूक है आपस में एक दूसरे के, इस पर आप क्यों स्टडी नहीं करेंगे? आपको मालूम रहना चाहिए ना कि आपकी बीवी के क्या हुकूक हैं, आप पर शौहर के क्या हुकूक हैं, और इस तरह की क्या सब शरायत हैं, क्या बातें हैं यहाँ पर। तो इस पर अगर मुकम्मल आपका इल्म हो और यानी मिसाल भी आपके सामने हो हमारे सीरत से, जो उलमा हैं सलफ़ सालहीन हैं उनकी हवाले से जो रहनुमाई दी गई है, तो इन रहनुमाइयों को जब आप सामने रखेंगे तो काफ़ी ऐसे ख़तरनाक जो क्या होते हैं तनाव इख्तलाफात, इनसे हम बच सकेंगे बिलाशुबा। ठीक है, आपके पास एक सही इल्म हो ना, सही आपके पास अखलाकी किरदार इन चीज़ों से का आपका सही इल्म हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट करना, देखिए ये बहुत इसकी कितनी अहमियत है शादी के हवाले से, इंफॉर्मेशन ये तमाम अकदार तहजीब इन चीज़ों को सही मालूम हासिल करना, इनकी इसकी क्या अहमियत है, इस पर हम बात करें। एक एक पॉइंट पर काफ़ी मसाइल आएंगे, सिर्फ मैं एक बात कह रहा हूँ। अच्छा, जैसे गाली देना, ठीक है, बातें होती हैं बाज़ औक़ात, बाज़ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि दोनों तरफ से गालियों की भरमार, यानी एक से ऊपर एक जाने की कोशिश रहती है। ठीक है, अच्छा, बाज़ ख़ानदानों में चीज़ें ऐसे ही हैं, यानी बहुत आदि हैं, गाली देना उनके लिए कुछ मसला ही नहीं है, लेकिन बाज़ शरीफ़ नसब ऐसे हैं गाली देना उनके लिए बहुत तकलीफ़ देह बात है। अब अगर शौहर बीवी इनमें से एक गाली देने वाला हो, गाली के आदी हो, और दूसरा उसे वो तो उस माहौल में बड़ा यानी बड़ा नहीं हुआ और इस तरह के तनाव वगैरह की हालत उसे नहीं देखे, कुछ इस तरह के ख़ानदानों जिसमें तलाक़ याफ्ता हैं, तलाक़ देने वाले मर्द हैं, तनाव इख्तलाफात, बच्चा शुरू से इस तरह के हालात सूरत हाल देख कर बड़ा हुआ है, तो वहाँ इस तरह की गालियाँ वगैरह ये वो उनके लिए आदि हैं। कुछ ऐसे हैं नहीं, उनके पास गाली वगैरह ये काफ़ी मैटर करते हैं, ये आदि नहीं है इन चीज़ों का,

वगैरह देखकर दूसरे तरफ को चुप कराना उसके लिए वन टू की बात है। ऐसे गाली वगैरह देकर, ऐसी ऐसी बातों को, ऐसी घाई देकर पूरा अगला बंदा अपने शराफत की वजह से उसका मुंह पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जवाब में अगर इस तरह की हालत पेश आ जाए तो उसके जवाब में क्या करना है? हाँ, अब क्या होता है, वक्त के साथ साथ हम क्या करें, मनफी चीज़ों को हम जल्दी ले लेते हैं, तो वक्त के साथ साथ क्या होता है, जो दूसरा जो उसका साथी है, शरीक हयात है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता गाली का आदि हो जाता है, वो भी आहिस्ता सीख लेता है भाई इस गाली के जवाब में किस तरह और भी बड़ी गाली दी जा सकती है। लिलासफ, यानी बड़ी माजरत के साथ, यानी हालात ऐसी हैं, क्या करें, वो इस तरह सीख लेता है और फिर उसको समझाता है कि इसको मुंह बंद कराने के लिए तो हमें यही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप सही से इस्लामी तहजीब से, इस्लामी अकदार के सामने आगे रखकर, अल्लाह के रज़ा को आगे रखकर, अगर इस मामला में आप पहले से जान लें कि भाई अगर गाली की कोई सूरत हाल पेश आ जाए तो इस सिलसिले में हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए, उसके मंजिले में हम उतरेंगे या फिर वहाँ खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी। बाज़ औक़ात इस यानी अपने आप को जो मुखातब हैं उसकी मंजिले पर उतारने की आदि नहीं बनाना ये ज़रूरी है, आप अपनी जो लेवल हैं उसको बरकरार रखें, ये शराफत का पहचान है, ये शराफत की दलील है। तो बंदा अपने वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है और इस तरह की उस इन चीज़ों में नहीं जाता, वो बस खामोश रहकर उस मरहले से गुज़र जाता है और फिर अपने आप को नापाक नहीं करता। ये एक हिदायत हो सकती है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ बर्दाश्त करते करके चले जाएं, ऐसी भी बात नहीं है, बल्कि आप अगर कोई इकदामात करेंगे तो किस तरह के इकदामात होने चाहिए, क्योंकि गाली को आप गाली से नहीं रोक सकते, गाली पर गाली, उस पर बड़ी गाली, और भी बड़ी गाली, बच्चे क्या सीखेंगे, माहौल क्या होगा वो वाला। तो इस वजह से इस सूरत हाल में किस तरह के इकदामात करने चाहिए, बाज़ औक़ात सिर्फ़ सब्र करना ये भी कोई यानी तरीका नहीं रहता, चूँकि आप सिर्फ़ सब्र करेंगे अपने आप को क़ुरबान करते जाएंगे, अगर वहाँ इस्लाह ना नहीं करेंगे तो बात सही नहीं बनती ना, चूँकि आपने ताहयात ज़िंदगी जीनी है शरीक हयात के साथ, बच्चों को बड़ा करना है तो उनकी तरबियत करनी है, उस जाविये से भी हमें इन चीज़ों को देखना है। तो ये सिर्फ़ एक मिसाल है, अगर कोई गाली दे दे, गाली के हवाले से गाली के आदि हो, इस तरह के और भी कई सारी मिसालें हैं, एक एक पॉइंट है। अगर

0: हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस आज हम एक ऐसे मशरूब के बारे में बात करेंगे जो खास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं उनमें बहुत ज्यादा मकबूल है, यानी एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स ऐसे मशरूबात हैं जो वक्ती तौर पर तवानाई और जो बहुत ज्यादा एक्टिव आप या चुस्ती जो है वो महसूस करते हैं या उसका एहसास पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें उमूमन कैफीन, चीनी, टोरिन और इसी तरह विटामिन बी और बहुत से जो अज्सा उसमें शामिल होते हैं। बहुत से अफराद समझते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स सेहत बख्श होते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक आम पानी, दूध या कुदरती जूस का मुतबादल नहीं हो सकते। इनका बुनियादी मकसद वक्ती तौर पर जागने, अपनी जो तवज्जो है, कंसंट्रेशन है, उसको ज़्यादा करने और जो फटीग या थकन महसूस करते हैं उसको कम करने में मदद देना है। कैफीन एनर्जी ड्रिंक का सबसे अहम जूस है। कैफीन दिमाग को एक्टिव करती है, जिससे वक्ती तौर पर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कैफीन हमारे दिल की धड़कन को तेज़ कर सकती है, इसी तरह बेचैनी पैदा कर सकती है और नींद को बहुत मुतासिर कर सकती है। इसी तरह एनर्जी ड्रिंक्स में चीनी की मिकदार भी अक्सर काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादा चीनी वजन में इजाफे, दांतों की खराबी और डायबिटीज़ के ख़तरे में इजाफा करती है। बहुत से नौजवान इम्तहानों या फिर खेल के दौरान एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, अगरचे उन्हें वक्ती तौर पर तवानाई महसूस होती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव फ्रेश महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा थकन और कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है। लिसनर्स, कुदरती तवानाई का बेहतरीन जरिया मतवाजन ग़िज़ा, मुनासिब नींद और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है, और इसके साथ साथ जो रेगुलर एक्सरसाइज है, ना कि एनर्जी ड्रिंक्स।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं। आइए तलहा अशरफ जमा के साथ सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कससुल कुरान और कुरानी वाकयात के शायखीन का खैर मकदम है, तलहा अशरफ जमा की तरफ से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। आज के प्रोग्राम में हम कौम सबा का वाकया जिक्र करेंगे। सबा और कौम सबा का वो इबरतनाक सानहा और उनके उरूज व जवाल का वो बसीरत अफरोज वाकया, कौमों के उरूज व जवाल के उस दूसरे कानून के ही ज़ेर असर आलम वजूद में आया था और तारीख के सफहात उस हकीकत के शाहिद हैं कि जो कौम खुशैशी और रफाहियत के ऊँचे दर्जे पर

0: कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
3: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ RJ नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
5: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस आज हम एक ऐसे मशरूब के बारे में बात करेंगे जो खास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं उनमें बहुत ज्यादा मकबूल है, यानी एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स ऐसे मशरूबात हैं जो वक्ती तौर पर तवानाई और जो बहुत ज्यादा एक्टिव आप या चुस्ती जो है वो महसूस करते हैं या उसका एहसास पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें उमूमन कैफीन, चीनी, टोरिन और इसी तरह विटामिन बी और बहुत से जो अज्जा उसमें शामिल होते हैं। बहुत से अफराद समझते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स सेहत बख्श होते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक आम पानी, दूध या कुदरती जूस का मुतबादल नहीं हो सकते। इनका बुनियादी मकसद वक्ती तौर पर जागने, अपनी जो तवज्जो है, कंसंट्रेशन है, उसको ज़्यादा करने और जो फटीग या थकन महसूस करते हैं उसको कम करने में मदद देना है। कैफीन एनर्जी ड्रिंक का सबसे अहम जूस है। कैफीन दिमाग को एक्टिव करती है जिससे वक्ती तौर पर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कैफीन हमारे दिल की धड़कन को तेज़ कर सकती है, इसी तरह बेचैनी पैदा कर सकती है और नींद को बहुत मुतासिर कर सकती है। इसी तरह एनर्जी ड्रिंक्स में चीनी की मिकदार भी अक्सर काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादा चीनी वजन में इजाफे, दांतों की खराबी और डायबिटीज़ के ख़तरे में इजाफा करती है। बहुत से नौजवान इम्तहानों या फिर खेल के दौरान एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, अगरचे उन्हें वक्ती तौर पर तवानाई महसूस होती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव फ्रेश महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा थकन और कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है। लिसनर्स, कुदरती तवानाई का बेहतरीन जरिया मतवाजन ग़िज़ा, मुनासिब नींद और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है, और इसके साथ साथ जो रेगुलर एक्सरसाइज है, ना कि एनर्जी ड्रिंक्स।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने के नए स्कैम से बचाने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरा नाम है फजील और आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल स्कैम की दुनिया में एक नए स्कैम के बारे में। वेल, दोस्तों, ये स्कैम है टैप टू पे चैरिटी स्कैम। अर्बन एरियाज और क्राउडेड सिटी सेंटर्स में एक नया कॉन्टेक्ट लेस फ्रॉड सामने आया है जिसे टैप टू पे चैरिटी स्कैम कहा जाता है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स शहर के बिजी लोकेशंस जैसे मेट्रो स्टेशंस, शॉपिंग मॉल्स या फिर टूरिस्ट स्पॉट्स पर खड़े होते हैं। ये लोग खुद को किसी फेक चैरिटी, ऑर्फनेज या एनिमल शेल्टर का वॉलंटियर बताते हैं। लोगों का इमोशनल ट्रस्ट जीतने के लिए इनके पास फेक वाउचर्स, बैनर्स और यूनिफॉर्म भी होती है। ये स्कैमर्स कैश मांगने के बजाय कहते हैं कि वो सिर्फ एक छोटी सी कॉन्टेक्ट लेस डोनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको ऐसे में लगता है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। वो आपके सामने एक हैंड हेल्ड पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीन या स्मार्टफोन आगे बढ़ाते हैं और सिर्फ एक टैप करने को कहते हैं। असल में ये मशीन्स प्रीसेट होती हैं जहां स्क्रीन्स पर छोटी अमाउंट दिखाकर बैकग्राउंड में मोटा अमाउंट चार्ज कर लिया जाता है। कुछ केसेस में चोर इतने शातिर होते हैं कि क्राउडेड बसेस या ट्रेन्स में बिना आपके पूछे आपकी पॉकेट या बैग के पास अपनी RFID या NFC डिवाइस लाते हैं और आपके वॉलेट में रखे कार्ड से कॉन्टेक्टलेस पेमेंट चुरा लेते हैं। अर्बन फास्ट पेस्ड लाइफ में लोग जल्दी में ट्रांजैक्शन थर्मल रिसीट चेक नहीं करते और बाद में बैंक अलर्ट देखकर शॉक हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सॉल्यूशंस भी हैं। यूज RFID वॉलेट्स। कॉन्टेक्टलेस पेमेंट और RFID टेक्नोलॉजी का यूज करते वक्त इन बातों का खास ध्यान रखना है। अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को हमेशा एक RFID ब्लॉकिंग वॉलेट या पाउच में रखें ताकि कोई सिग्नल स्टील ना कर सके, और हमेशा कार्ड टैप करने से पहले रीडर स्क्रीन पर एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन अमाउंट जरूर चेक करें। किसी भी रास्ते पर खड़े अननोन वॉलंटियर को देने के बजाय हमेशा रजिस्टर्ड चैरिटी वेबसाइट पर डायरेक्ट डोनेट करें। उसके अलावा ट्रांजैक्शन की लिमिट भी रखें। अपने बैंकिंग ऐप में जाकर कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट की डेली लिमिट को लो सेट करें या उसे डिसेबल करें। दोस्तों, स्कैम से बचने के लिए ये था एक और एपिसोड और इस तरह के नए स्कैम्स के बारे में मैं आपको हर हफ्ते आगाह करता रहूंगा। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
0: स्कैम अलर्ट।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
3: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं जूनियर जनाब सफा के साथ और ये है वो शो जहां हम मिलाते हैं आपको उन छोटे छोटे स्टार्स से जो अपनी मेहनत से बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी से सबको इंस्पायर करते हैं। भाई छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे भाई, ये बहुत बड़े बड़े काम करते हैं माशाल्लाह से। और मैं आपको बता दूं कि आज हमारे शो की एक छोटी सी सुपर स्टार है जिनका नाम है दुआ। भाई दुआ के बारे में आपको क्या बताऊं, दुआ को सबसे ज्यादा पसंद है आर्ट, जो कि सारे बच्चों को पसंद होता है, कहीं ना कहीं हम बड़ों को भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। वो कई आर्ट कॉम्पिटिशन्स की विनर रह चुकी हैं और अपनी क्रिएटिविटी से सबको ऑलरेडी इम्प्रेस कर चुकी हैं भाई। और गेस व्हाट, दुआ सिर्फ आर्ट में ही नहीं बल्कि स्कूल की को करिकुलम एक्टिविटीज में भी फुल ऑन एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करती हैं। उनका मानना ये है कि भाई ये सारी चीजें साथ साथ चलनी चाहिए, माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड है। तो भाई दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसे फुल ऑन फन ट्रिप पे जाने के लिए दुआ के साथ, जहां हम दुआ के साथ शेयर करेंगे उनकी स्टोरी कि उनको क्या क्या पसंद है, क्या क्या ना पसंद है, कैसे अपने आप को मैनेज करती हैं। तो भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
4: वालेकुम अस्सलाम,
3: कैसी हैं, ठीक ठाक हैं?
4: मैं ठीक, अल्लाह का
3: शुक्र। नर्वस चर्वस तो नहीं हो रही हैं?
4: नहीं, मुझे नर्वस ही नहीं, मैं होती
3: जब बात ही खत्म कर दूं ना, ये नर्वस किस चिड़िया का नाम है। अच्छा दुआ ये बताएं कि पहले तो अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देना कि दुआ कितने साल की हैं।

0: मतलब सेवेंथ ग्रेड में हूँ मैं, और काफी अच्छा स्कूल है, मतलब सारे कोऑपरेटिव है और काफी अच्छा स्कूल है.
1: अच्छा ये बताएं कि दुआ आपको आर्ट में कब इंटरेस्ट हुआ? मैंने मैंने ये आपसे सुना कि भाई आपको आर्ट बहुत पसंद है, ठीक है, तो ये बताएं कि कैसे, हाउ हाउ डिड यू, और या ये बताएं कि कौन सी एट से आर्ट पसंद है आपको? याद
0: मेरी कजन है ना, वो बैठ के करती थी तो मैं उसको देखती थी और काफी मतलब कैलीग्राफी, उसने स्केचिंग भी करती थी तो मैं उससे सीखती थी थोड़ा थोड़ा, उसने सिखाना तो मैं फिर, और मेरी एज आई थिंक 10 या 11 12 की होगी तब सीखा था थोड़ा थोड़ा. अभी भी मुझे मतलब कभी कभार जब छुट्टी हो ना तो मैं कर लेती हूँ.
1: अच्छा कैलीग्राफी का आपने बोला, कैलीग्राफी मुझे बहुत मुश्किल लगती है, पेन उसका होल्डिंग जो है ना वो कुछ ट्रिकी है. मैं आज तक सीखने की कोशिश करी, मैंने गिव अप कर दिया. आपने गिव अप किया कि नहीं किया?
0: गिव अप करना नहीं चाहिए, हर चीज करनी चाहिए,
1: करनी चाहिए. आपके पास टाइम है अभी, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए. मैंने बहुत कोशिश की, फिर मुझे मेरे घर वालों ने कहा बेटा दीवारों की और पेपरों की बस हो गई है, तुमसे ना हो पाएगा. देखो हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन आई एडमायर यू कि आपकी अभी एज है, करें जो चीज आपको अच्छी लगती है ना. मुझे अच्छी लगती थी लेकिन मुझसे ना हो पाई, आई फाउंड डिफरेंट थिंग्स, लेकिन आपको अच्छी लग रही है, आई बिलीव यू कैन डू बेटर इन इट.
0: ये भी है, सबकी कोई ना कोई पर्सनैलिटी होती है, हर चीज इंसान की परफेक्ट नहीं होती.
1: बिल्कुल, नॉट एवरीबॉडी कैन डू एवरीथिंग.
0: यस,
1: चलें भाई ये बहुत अच्छी बात है और समझने वाली बात है. अच्छा ये बताएं कि आप जब आर्ट आर्ट में आप

0: उस पर सर्च करके कभी कभार कर लेती हूँ, या फिर स्कूल में जो फ्री लेक्चर होता है उसमें कर लेते हैं तो हो जाता है।
1: अच्छा मतलब ये बताएं कि आपका जो काम है, जो आप मतलब आपका जो आर्ट है, उसको आप क्या कहेंगी, किस किस से सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड है? ये अपनी क्रिएटिविटी है, कुछ होता है ना, कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ भाई हमने सोशल मीडिया से देखा, हमें वो पेंटिंग अच्छी लगी थी तो आई रिक्रिएटेड इट, वो भी एक इंस्पायरेशन है, आई सॉ इट समवेयर एंड आई, या जैसे आप बोल रही थी आपकी कजन सिस्टर हैं तो उनको आपने देखा, वो भी एक इंस्पायरेशन, या अम्मी अबू में से कोई ऐसा होता है जिसको पेंटिंग ड्राइंग का किसी चीज का शौक होता है, आप उनसे इंस्पायर हो जाते हैं। मैं तो भाई अपनी अम्मी से इंस्पायर थी, मेरी अम्मा की बहुत अच्छी ड्राइंग थी, आई वॉज फैसिनेटेड बाय इट। तो आप किससे इंस्पायर
0: मैं मतलब के अपने फ्रेंड्स से हूँ, मतलब मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी बनाती हैं और मैं उनको भी देखती हूँ ना, तो बैठ के मैं मुझे कहती है करो, मैंने कभी कभी

0: फील मोटिवेटेड विद योर फ्रेंड्स. अच्छा ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि दुआ अपने पास से ना एक वर्ल्ड क्रिएट करें, अपनी इमेजिनेशन का वर्ल्ड अपने आर्ट में, तो वो कैसा दिखता होगा? रिगार्डलेस अब जैसे हमें एक चीज सिखाई जाती है ना कि ट्रीज शुड बी ग्रीन, सन शुड बी येलो. अब बच्चों की कुछ गेम्स हैं उसके अंदर ना, जैसे प्रैक्टिकली अगर देखें तो सन शुड बी राउंड लेकिन उसके अंदर स्क्वायर है. देयर डिफरेंट थिंग्स, मेनी डिफरेंट थिंग्स ना. अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से कोई चीज बनाएं तो वो कैसी दिखती होगी, जरा मुझे बता सकती हैं?
1: पहली बात तो कह लो कि उसको ऐसा बनाना चाहिए, मैं ये बिलीव करती हूँ कि उसको

0: ऐसी चीजें पसंद आती हैं ज्यादातर
1: नेचुरल
0: यस उसमें अच्छा लगता है कलरिंग करके.
1: अच्छा आपको स्पेस बनाना ज्यादा पसंद है या लैंड की चीजें?
0: स्पेस ज्यादातर मतलब लैंड ठीक है लैंड अच्छे से बन जाती है वो इजी भी है.
1: सही. अच्छा मुझे स्पेस ज्यादा इजी लगता है बनाना. आई लाइक ड्रॉइंग स्पेस. अच्छा ये बताएं कि वो कौन सी चीज अभी तक आपने कोई ऐसी बनाई है उसके से अगर आपसे डिस्क्राइब कर सकें थोड़ा बहुत कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा क्रिएटिव बनानी आती है जिसमें आप कहें कि मेरा बेस्ट वर्क था.
0: बेस्ट वर्क तो मेरा एक था मेरा स्कूल में था उन्होंने कहा था कि अर्थ के ना पोल्यूशन वगैरह का तो उसका मैंने काफी अच्छा मुझे लगता है ऐसा और मेरी क्लास के बच्चों को भी और वो बहुत मुझे पसंद था और वो अभी भी मेरे पास है और वो उसपे मुझे पोजीशन फर्स्ट मिली थी.
1: अरे वाह कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था. मेरे ख्याल से वो एनवायरमेंट का होता है ना कोई
0: पोल्यूशन का टाइप था
1: पोल्यूशन वर्ल्ड पोल्यूशन डे या कुछ होगा ऐसा कुछ उसके ऊपर था. ठीक है इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक.
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
1: आप ये बताएं कि रिगार्डलेस आर्टिस्ट तो वही होता है भाई हम कहते हैं कि आर्टिस्ट तो वो होता है जो हर चीज बना लेता है ना. तो एज एन आर्टिस्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई कोई कार्टून कैरेक्टर अगर आप बनाएं तो बना लेंगी?
0: अगर पिक्चर हो तो इजीली बना सकते हैं हेल्प लेके भी और इजीली.
1: अच्छा ठीक है. अच्छा मतलब आप वो कर लेती हैं उसे कॉपी कर लेती हैं. अच्छा
0: नाइस कर लेते हैं.
1: अच्छा अच्छा सही है सही है. अच्छा ये बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा मजेदार चीज ना अभी आप स्कूल जा रही है ना आजकल तो अपने स्कूल में आपको सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है स्कूल जब आप जाती हैं तो आपको क्या मजा देती है
0: स्कूल में? एक तो स्कूल में काफी अच्छा एनवायरनमेंट है रोज ना रोज कुछ सीखने के लिए मिलता है नया और फ्रेंड्स के साथ तो स्कूल पहली बात तो अच्छा ही होता है हर स्कूल अच्छे होते हैं और मुझे मेरी टीचर्स बहुत अच्छी लगती है वो हर हेल्प करती है और कोई चीज मुझे कहती है कि अगर आपको नहीं समझ आ रही पूछो तो मैं मेरे लिए इजी है मैं ट्यूशन ना भी लूँ तो लेकिन काफी अच्छा स्कूल है और हर चीज ही मुझे अच्छी लगती है.
1: अच्छा ये बताएं कि आपका फेवरेट वाला सब्जेक्ट कौन सा अपार्ट फ्रॉम आर्ट?
0: मेरा जो है वो इस्लामियत या फिर इंग्लिश है. इंग्लिश

0: वो मुझे बहुत बुरी लगती है
1: बेटा, मैथ के ऊपर दुनिया टिकी हुई, मैथ गुम कर देनी है इन्होंने। अच्छा मैथ गुम कर देंगी, चलें ये सब्जेक्ट्स में से गुम करेंगी। yes. अच्छा कोई अगर मैं कहूँ डिसिप्लिन में से कोई एक चीज निकालनी हो तो
0: ये होता है ना कि छुट्टी का बड़ा मसला होता है कि दो दिन छुट्टी है सबकी, मेरी भी ये विश है कि
1: हम छह दिन छुट्टी कर देंगे, एक दिन स्कूल।
0: ये भी अच्छा है, सबका प्रॉब्लम होती है।
1: ये भी अच्छा है। अच्छा भाई छह दिन छुट्टी और एक दिन स्कूल, ये अच्छा है, चले भाई ठीक है। अच्छा मुझे पहले भी मैंने पता नहीं, मुझे याद नहीं रहा, किसी बच्चे से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था हम सबसे पहले यूनिफॉर्म निकालेंगे, यूनिफॉर्म नहीं पहनना हमने, हमें बहुत जहर लगता है। अच्छा चले, इन्होंने कहा स्कूल ही एक दिन होना चाहिए। अच्छा भाई ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट खाने में फेवरेट चीज़ कौन सी है,

0: कंफर्ट फूड है.
1: अच्छा गुड गुड गुड. अच्छा ये बताएं कि अभी आपने मुझे बताया था कि आपने पोल्यूशन वगैरह के ऊपर ना ड्राइंग बनाई थी, इट वाज. तो ये बताएं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए ये अपॉर्चुनिटी दी जाए आपको कि आप इस वर्ल्ड में से, यूँ समझ लें जैसे

0: होता है तो लोग हर जगह ऐसे कहीं भी बाहर पब्लिक पे गन फेंक दिया, कूड़ा फेंक दिया, और ये बहुत ज्यादा गंदा करता है अर्थ को और अर्थ साफ नहीं रहने देते कुछ लोग।
1: अच्छा ये बताएं कि गाड़ियां खत्म कर देंगी तो हम लोग इतना इतना खोर तक कैसे जाऊंगी मैं, इतना 50 मिनट तो मेरे घर से जाने में लगते हैं बेटा खोर तक, तो फिर मैं पैदल खोर कैसे जाऊंगी, ख्वाब में जाऊंगी,
0: फिर अब जाइएगा ही नहीं,
1: जाइएगा ही नहीं। इंसान बोल देता है मेट्रो यूज कर लीजिएगा या कुछ कर लीजिएगा या कुछ, चलो कुछ तो नहीं, उन्होंने कहा जाना ही नहीं, उस गली जाना ही नहीं, दुनिया को क्या एक्सप्लोर करना, सारी दुनिया एक जैसी। अच्छा ये बताएं कि आप स्कूल के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स को ज्यादा पसंद करती हैं या आप ये कहती हैं कि नहीं मैं इंडिविजुअली काम करूँ?
0: ग्रुप का अच्छा होता है।

0: स्कूल में एक्टिविटीज वगैरह जब पीटी का लेक्चर होता है ना, मुझे वो बहुत पसंद है. उसमें हम बाहर जाते हैं, हम लोगों ने बैट बॉल खेलना, तो उसमें मुझे मजा आता है, वरना
1: सही. अच्छा ये बताएं कि आपने कभी कोई प्राइसेस वगैरह जीते?
0: प्राइसेस हाँ, मतलब जीते हुए हैं काफी.
1: जीते हुए, तो वो मोमेंट मुझे डिस्क्राइब करें ना, वो आपको कैसा लगा, किसने आपको कैसे ग्रीट किया और किस चीज में था?
0: मेरा था, एक दफा मेरी 5th की थी और मुझे ट्रॉफी दी थी और मैं, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे बुलाना है स्टेज पे. मैं बातें कर रही थी, उन्होंने मेरा नेम कॉल किया, मुझे लगा किसी और क्लास का होगा, मैं गई नहीं. मुझे इतना उन्होंने बाद में कहा कि, उन्होंने कहा कि द्वारिस भी आए, मैं फिर गई. मैं नर्वस इतनी ज़्यादा थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी. और मेरी फ्रेंड्स, एक तो ये होता है ना कि आप लोग देखते हैं जब अपने फ्रेंड्स को, तो मुझे वहाँ पे इतनी ज्यादा वो हंसी आने लग गई थी और मुझे इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी. और बाद में स्टेज से जाकर भी मैं बिल्कुल ही चुप करके बैठी थी, मैंने बोला ही नहीं कुछ भी. और मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि आपको ट्रॉफी मिली है, कुछ खुश हो, कुछ करो, मुझसे नहीं हुआ था.
1: नर्वस हो गई थी. जब हम नर्वस हो जाते ना तो ये होता है, हमें समझ, दिमाग जो ना हमारा फिगर आउट नहीं कर पा रहा होता कि इमोशंस को कैसे रेगुलेट किया जाए.
0: ये होता है सबके साथ,
1: ये हम सब बड़ों के साथ भी होता है अक्सर. का जब सरप्राइजिंगली हमारा कोई नाम ले लेना, तो हम लगे हुए बातों में दूसरों से, अरे 3 दफा टीचर ने बुला लिया, मुझे तो एक्सपेक्टेशन ना थी कि मुझे कुछ मिलेगा. अच्छा ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि लाइफ में जब इंसान कोई मिस्टेक करता है तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और अगर लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो वो क्यों इम्पोर्टेंट लगती है?
0: क्योंकि मिस्टेक्स करने से ही आप परफेक्ट बनते हैं, कोई भी पहले नहीं होता, और करना जरूरी है, उससे हम सीखते हैं.
1: सही सही सही सही. तो आपके अगर पेंटिंग में अगर आपसे कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या करती हैं?
0: पेंटिंग से
1: छोड़ दी, पेंटिंग नहीं मैं नहीं करूंगी, जाओ मैं दूसरा पेपर लूंगी, ऐसा होता है?
0: मैं हाँ, मेरा यही है, मुझे गुस्सा आता है.
1: हाय हाय, मेरा दिल तोड़ दिया. मैं तो कहती हूँ आप जो आर्ट में मिस्टेक्स करते हो ना, वो मिस्टेक्स नहीं होती. मेरा मानना है ये, वो मिस्टेक्स नहीं होती, यू कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट.
0: हाँ ये भी है कि अगर जैसे हमने ड्राइंग बनानी हो, कोई आपको दिया हो, आपसे गलत बन जाए, तो आप उसको ठीक करो ना कि गुस्सा करो. लेकिन मेरे में ऐसा ही है कि मैं गुस्सा कर लेती हूँ बहुत जल्दी, इसलिए भी.
1: अच्छा अगर आपने अपनी किसी बेस्ट अचीवमेंट को डिस्क्राइब करना हो तो वो कौन सी अचीवमेंट होगी?
0: अचीवमेंट मेरी वही थी कि मुझे 5th में जब था, और मेरी अब मुझे है 7th में कि अल्लाह करे कि मैं 1st आऊँ. क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी फ्रेंड्स हैं वो सारी कह रही हैं कि आप अच्छा पढ़ती हो, आप इंशाल्लाह 1st आओगी. तो मुझे अगर अल्लाह करे मैं 1st आऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता खुशी.
1: अच्छा अचीवमेंट, ठीक है ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अच्छा होता ये, द मोर हार्ड वर्क यू पुट इनटू इट, देयर इज नथिंग लाइक लकी. कुछ लोग कहते हैं भाई ये बड़ा लकी सा बच्चा है, ये हमेशा 1st, 2nd, 3rd में आता है पोजीशंस में. तो आपको क्या लगता है, लकी होना इज समथिंग या इट्स योर हार्ड वर्क विच रिफ्लेक्ट्स?
0: हार्ड वर्क, क्योंकि लकी तो होता नहीं, अपनी मेहनत से सब कुछ बनता है.

0: आपको खुद पता होती है।
1: अच्छा ये बताएं, अगर मैं फ्यूचर में कहूँ कि कोई एक ऐसी, क्योंकि हम सबको पता होता है कि हमारे अंदर क्या वीकनेसेस हैं और क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तो ये बताएं कि अगर आपको लाइफ में सीखने का मौका मिले और भी ज्यादा, कोई एक ऐसी स्किल जो आपको सीखने का बहुत शौक हो, तो वो स्किल क्या होगी? इट कैन बी स्विमिंग, इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू लर्न।

0: सकूं शायद.
1: अच्छा मेरे साथ ये था, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ज्वाइन द नेवी. आई लव नेवी. मैंने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जब एक लेडी को देखा था, शी वॉज वेयरिंग अ वाइट, पाकिस्तान में ना वाइट ड्रेस है लेडीज का, इट्स अ सारी काइंड ऑफ थिंग, दे वेयर इट इन नेवी.

0: ड्रीम, इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए. बट इट्स ओके, मैं हाइट में थोड़ा सा, उनका हाइट का क्राइटेरिया अलग है, तो मेरी हाइट का मसला था तो मुझे नहीं उसके अंदर लिया जा सका. दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इफ़ यू लाइक समथिंग गो फॉर इट, डोंट गिव अप योर ड्रीम्स सो इजीली. इजीली नहीं छोड़ना, एटलीस्ट ट्राई फॉर इट.
1: ट्राई करना चाहिए, बार बार ट्राई करने से हो सकता है. ये नहीं कि एक दफा नहीं हुआ मैं नहीं कर रहा, जाओ मुझे नहीं करना. करना चाहिए, करने से ही हर चीज होती है.
0: अगर अगर पॉसिबिलिटी है उसके अंदर. अब तो मेरा तो हाइट का प्रॉब्लम था कुछ, तो वो तो नहीं फिगर आउट. मैं अपने आप को खींच कर लंबा कर तो नहीं सकती थी तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो गया. लेकिन लेकिन अगर कुछ और है जिसको आप कवर अप कर सकते हैं, जो आपकी प्रोग्रेस मांग रही है चीज, तो डोंट गिव अप सो इजीली. इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक.
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
0: अच्छा भाई, ये बताएं कि अगर आपको ये पूछा जाए कि आपका फेवरेट फेवरेट एनिमल कौन सा है, तो कौन सा?
1: मेरा ज्यादातर पांडास है ना, जो बहुत क्यूट होते हैं, तो वो इतने अच्छे लगते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है.
0: अच्छा ये बताएं, ये आपने उधर जाके देखा था सुरैया और सोहेल को, हमारे पास जो पांडा है कतर में, अभी तक देखे
1: नहीं
0: देखी? और जाकर देखना देखना, वो अलखोर वाला जू है ना, उसी की साइड पर है सुरैया एंड उनका नाम है, देयर टू पांडास, उनका नाम है सुरैया एंड सोहेल, सो क्यूट पांडा, सो क्यूट क्यूट. अच्छा ये बताएं कि स्कूल में, अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं, स्कूल में या आपके फ्रेंड्स में ही आपका अपने दोस्तों से कभी झगड़ा होता है?
1: क्योंकि न्यू स्कूल है तो कोई भी नहीं कर रहा.
0: पुराने स्कूल में भी नहीं हुआ?
1: पुराने स्कूल में एक दफा हुआ था.
0: तो हाउ डू यू हैंडल दैट, जो एंगर इशू होता है किसी को या कुछ, जब हमें गुस्सा आ जाता है, तो हाउ डू यू कोप अप विद इट?
1: मेरी जो है फ्रेंड्स की थी लड़ाई, तो इन्वॉल्व मैं भी थी. मतलब हम लोगों का था टेस्ट में चीटिंग नहीं बच्चे करते, तो मैं प्रीफेक्ट थी, तो उसने मुझे बताया, तो उससे वो लड़ाई हो गई थी उनकी के इसने बताया ये हर चीज बता देती है. तो मैंने डायरेक्ट जाके ना प्रिंसिपल से बात की थी.
0: ओए ओए ओए, ये तो बहुत बड़ा मसला था.
1: प्रॉब्लम सॉल्व करें इनकी या इनको समझाएं कुछ, क्योंकि उनकी समझ ही नहीं आई थी, वो इतना ज्यादा लड़ाई, वो बात ही नहीं सुन रहे थे. मैं करती थी और कहती थी आप इसको फेवर करियो, दूसरी कहती थी इसको, तो मैंने बोला ही नहीं. उसके बाद
0: फंस गई थी मैं, दोस्तों के बीच में फंस गए थे हम. लेकिन इंसान की लाइफ में बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें या राइट थिंग का साथ देना होता है या दोस्तों का साथ देना होता है. बी वाइज इनफ टू चूज द राइट
1: ही करना चाहिए,
0: राइट ही करना चाहिए. और कहीं ना कहीं फिर आगे जाके दोस्त समझ जाते हैं कि हाँ भाई इट वाज अ सिचुएशन. अच्छा ये बताएं कि बड़े होकर क्या बनना चाहेंगी?
1: मेरा नेवी में तो नहीं है, लेकिन मेरा जिसमें कहते नहीं है कंप्यूटर वगैरह, उसमें है कि मैं बिजनेस वूमन, आई वांट टू बिकम
0: एंटरप्रेन्योर. अच्छा कहीं जॉब करना चाहेंगी या अपना खुद का बिजनेस?

0: वो शौक था
1: बेटा. अभी तो आप बोल रही थी कि आपको छह दिन की छुट्टी चाहिए.
0: नहीं, लेकिन जब मैं भरी हुई तो मैंने अपनी जगह सोचा कि अगर ऐसी टीचर मुझे मिलती फिर मैंने कहा नहीं टीचर नहीं बन सकते.
1: बच्चों से ना होगा ये ना हो पाएगा बेटा. फिर जो है ना आप टीचर ना बने, मेहरबानी है आपकी. अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं आपका लाइफ का कोई अभी तक का कोई गोल सेट किया है आपने?
0: मेरा गोल तो अभी मतलब सिर्फ है कि स्टडी पे फोकस करें और बाकी एक्टिविटीज पर.
1: अच्छा ठीक है. अच्छा ये बताएं कि स्कूल में सबसे फेवरेट वाली अभी तक की टीचर कौन सी है, कौन सा सब्जेक्ट?
0: मेरे सर है मैथ के, वो बहुत अच्छे हैं. मतलब मैथ नहीं अच्छी, सर अच्छे हैं मेरे.
1: बेटा आपको सब्जेक्ट तब अच्छा लगेगा जब टीचर खुद अच्छे होते हैं. द वे टीचर एक्सप्लेन्स इट ना, इट्स नॉट द सब्जेक्ट विच यू हेट, इट्स जस्ट दैट अनफॉर्चुनेटली वो टीचर्स प्रोवाइड नहीं हुए होते हमें जो हमें राइट मेथड समझा दें चीज का. ये मैंने बहुत बाद में अपनी यूनिवर्सिटी लेवल में जब मैंने बीबीए किया था तब मैंने जाके बात सीखी थी कि इट वॉज नेवर मैथ्स विच आई हेटेड, इट वॉज नेवर द मैथ्स. जब मैंने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी तो मुझे जाके पता चला कि इट वॉज एक्चुअली द टीचर जो के जिसने मेरी हेल्प नहीं की कॉन्सेप्ट क्लियर करने में.
0: सर तो मेरी बहुत जैसे कहते हैं ना समझाते भी हैं लेकिन
1: तो इंशाल्लाह आपका मैथ्स का फोबिया खत्म हो जाएगा.
0: मुझे नहीं समझ आती, मैं बातें करती रहती हूँ या अपनी लगे रहते हैं. वो जब सर समझा देते हैं उसके बाद में कहती हूँ मैंने तो समझना था.
1: तो वो आपका प्रॉब्लम हो गया ना. फोकस फोकस फोकस फोकस नहीं मिस किया करें. बातें बात के लिए रख लिया, पूरा दिन होता है बातों के. छह घंटे होते हैं स्कूल में, देखो इनको चैटर बॉक्स बनी हुई है और फिर इल्जाम किसको दे रही है, मैथ्स को और टीचर्स को इल्जाम दे रही है. वेरी बैड. मैं तो ऐसी ना थी, मैं तो सोती रहती थी क्लास. मेरा सोने का प्रॉब्लम था. मेरा सोने का प्रॉब्लम था.
0: नींद का कोई मसला नहीं है मुझे, बस ये है कि मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठने से मसला होता है टीचर्स की नजर, तो मैं नहीं बैठ सकती.
1: मैं खुद बैक बेंचर रही हूँ बेटा. हम खुद बैक बेंचर हैं. जो बैक बेंचर्स होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाले. और मैं पॉजिटिव नोट बता रही हूँ.
0: लेंस कर लिया पीछे बैठ के, आगे बैठो ना तो वो जैसे कहते हैं सर देख रहे हैं
1: आपको. मुझे
0: अपनी मतलब होती थी कि जैसे सर जाते थे मैं पीछे बैठ जाती थी.
1: जो आगे बैठने वाले बच्चे होते हैं ना उनका हाल ही होता है कि जो काम हमने नहीं भी किए होते ना गलत वो भी हमें याद आ रहे होते हैं. तो ये आगे बैठने वाले बच्चों का ये प्रॉब्लम है. अच्छा भाई ये बताएं, जाने से पहले आपको अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी बच्चों को, जितने बच्चे आपको सुन रहे हैं उनको.
0: अच्छा कि स्टडी कभी भी बुरी नहीं होती अगर उसे अच्छे से समझो. मेरा ये है, मुझे भी यही है कि स्टडी करनी चाहिए. अगर नहीं होती तो बार बार करो, इससे आपके लिए बहुत आसानी होगी कल को आगे जाकर. ये प्रैक्टिस करनी चाहिए.
1: So the thing is, दुआ हमसे कह रही है कि never give up. Things might be difficult, but they're not impossible. It depends on your devotion. अब आज से दुआ ने भी यही कहा है कि दुआ कह रही हैं कि आज से दुआ भी क्लास में जब जाएंगी तो फुल फोकस करके बैठेंगी मैथ्स की क्लास में, ना कि ची ची ची चिड़िया की तरह जो ना दोस्तों से बातें कर रही होंगी जो किसी को समझ में नहीं आ रही होगी. दरख्त बैठी चिड़िया होती है ना, ची ची ची ची ची ची एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं, वैसे तो ना करेंगी. करेंगी
0: नहीं, अब नहीं,
1: अब नहीं. पक्का
0: जी? कोशिश तो कर रही
1: है. रेडियो में बोलकर जा रही है. फिर टीचर को मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग पकड़ा दूंगी, टीचर से कहूंगी टीचर ये बार बार चलाएं इसके लिए. किसने पूरी दुनिया के सामने बोलता है अब ना करूंगी. चले भाई खुश रहें, याद रखें जैसा दुआ ने कहा है. साथियों दुआ ने हमें ये समझाया, क्या समझाया दुआ, के कभी भी गिव अप नहीं करना. थिंग्स माइट बी
0: डिफिकल्ट
1: बट दे आर नॉट इम्पॉसिबल. द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज आई एम पॉसिबल. अगर कोई मुश्किल होती है, मुश्किल हमेशा अपने साथ सोल्यूशन भी लेकर आती है, वो आपका काम बनता है. नन्हे मुन्ने साथियों सुपरस्टार की तरह शाइन करना है ना, तो फिर आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव होकर थोड़ा बहुत हार्डवर्क करके अपना लोहा मनवाना पड़ेगा. तो भाई आपकी लर्निंग है जे, लर्न करते रहे अपनी क्यूरियोसिटी की और लर्निंग की विंडो को कभी भी बंद मत कीजिएगा. हमेशा याद रखें अपने आप को खुश रखें, स्ट्रेस आउट नहीं करें. हाँ मैं कहूँगी कि थोड़ा टाइम ले लेकर ना, गैप्स ले लेकर, जो चीज़ आपको अपनी वीकनेस पता है ना कि जैसे दुआ कहती थी उनको मैथ्स नहीं पसंद, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें. यू विल गेट ओवर इट. अरे इतनी इतना कुछ तो कर रही हैं, कॉम्पिटिशन जीत रही हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छी हैं, आर्ट में भी अच्छी हैं, तो वाई टू डीमोटिवेट योर सेल्फ व्हेन इट कम्स टू स्ट्रगलिंग विद मैथ्स एंड उर्दू. इट्स ओके, यू कैन डू इट, ब्रीथ. मुश्किल है लेकिन कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप ले लेकर कर लेंगे इंशाल्लाह. कर लेंगे ना
0: जी,
1: कर लेंगे
0: आगे
1: जी.
0: जाकर इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह आगे. तो भाई साथियों मुझे दीजिए इजाजत अपना.

0: ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरा और आपका मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। याद रखें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें, और सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखना है दुआ? सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखना है?
1: अपना।
0: हाँ,
1: अपना रखोगे तो दूसरों का खुद ही ऑटोमेटिकली कर लोगे।
0: जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता। यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अपना कप भरा हुआ रखो ना, चाहे कोल्ड ड्रिंक से, चाहे ठंडे पानी से, जो आपको पसंद हो। तो फिर जब मेहमान आएंगे घर के ऊपर तो फिर उनको भी सर्व कर देना बाद में, ठीक है? तो भाई मेरी तरफ से साइनिंग आउट, सफा को दीजिए इजाजत। फ्रॉम जूनियर जनाब, सुनते रहे FM 107 से
1: देसी
0: देसी चीता बच्चा। अल्लाह हाफिज।
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं इको स्विच विद सफा ऑन एफएम 107, जहां हम बात करते हैं उन डेली हैबिट्स की जो एनवायरनमेंट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। तो भाई साथियों, आज का हमारा

टॉपिक है ग्रीन कम्यूटिंग हैबिट्स, यानी सफर करने के एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके। देखें, कतर जैसे मॉडर्न और फास्ट मूविंग कंट्री में कम्यूटिंग डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि ऑफिस जाना, स्कूल ड्रॉप, मॉल विजिट्स या वीकेंड आउटिंग्स हो गई भाई, वो हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। लेकिन हर ट्रिप के साथ फ्यूल कंजम्पशन, ट्रैफिक इमिशंस और कार्बन फुटप्रिंट भी जुड़े हुए होते हैं ना। देखिए, इको स्विच हमें याद दिलाता है कि सफर वही रहता है, बस तरीका चेंज करने से इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। अच्छा भाई साथियों, एक रिलेटेबल एग्जांपल आपको देती हूँ। सोचिए, सुबह का टाइम है, दोहा का बिजी रोड है, ट्रैफिक चल रहा है, यानी कि हर कार में यूजली एक से दो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हर गाड़ी अपना फ्यूल और इमिशन जनरेट कर रही होती है अलग से। अब अगर वही कम्यूट कार पूल, मेट्रो या बस से हो जाए तो एक ही रूट पर मल्टीपल लोग एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। अच्छा, कतर रेल मेट्रो सिस्टम के लॉन्च के बाद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज काफी इम्प्रूव हुआ है, स्पेशली दोहा मेट्रो जो एफिशिएंट और इको फ्रेंडली ट्रेवल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इको स्विच पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई सेम डेस्टिनेशन, स्मार्टर राइड, यही रियल सॉल्यूशन लगता है मुझे तो। अक्सर औकात तो मुझे जब मॉल ऑफ कतर जाना होता है तो भाई मैं तो मेट्रो पकड़ लेती हूँ, फन का फन, ट्रैवल का ट्रैवल। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं आपको कुछ ट्रांसपोर्ट के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बता दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये चीज आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर मैं क्या बात कर रही हूँ। देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्लोबली आप कह लें कि CO2 इमिशंस का लगभग 20-24% कंट्रीब्यूट करता है। एक एवरेज पैसेंजर कार हर किलोमीटर पर अराउंड 120-150 ग्राम CO2 इमिट करती है। साथियों, कार पूलिंग सिर्फ वन एक्स्ट्रा पैसेंजर के साथ इमिशंस पर पर्सन को ऑलमोस्ट हाफ कर सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने पर पर्सन कार्बन फुटप्रिंट प्राइवेट कार के मुकाबले में 50-70% तक कम हो सकता है। साथियों, कतर में लास्ट फ्यू इयर्स में अगर देखा जाए तो ग्रीन कम्यूटिंग ऑप्शन रैपिडली इम्प्रूव कर रहे हैं। दोहा मेट्रो एक मेजर एग्जाम्पल है जो क्लीन एनर्जी और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। साथ ही डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक्स और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली जोन्स भी डेवलप हो रहे हैं, स्पेशली लूसेल, कॉर्निश, ये वाले जो एरिया है इनमें तो है ही है। अच्छा, इको स्विच यहाँ हमें ये बात बताता है कि कतर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, यानी कि अब हैबिट चेंज करना यूजर्स के हाथ में है। कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल हो चुका है जो कि अच्छा खासा है। मैं भी यूज करती हूँ तो मैं भी उसी को प्रमोट करती हूँ भाई कि इट इज ऑसम। यानी कि साथियों, इको स्विच का कॉन्सेप्ट यहाँ सिंपल है, हर ट्रिप को इको कॉन्शियस बनाना। जब हम ग्रीन कम्यूटिंग एडॉप्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली फ्यूल कंजम्पशन और एयर पोल्यूशन रिड्यूस करते हैं। देखिए भाई, एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर एक बंदा वीकली 2-3 कार ट्रिप्स रिप्लेस करे, या आप कह लें कि मेट्रो में चला जाए या कार पूलिंग से ट्रांसपोर्ट कर ले, तो वो एनुअल बेसिस पर सिग्निफिकेंटली कार्बन रिडक्शन कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हर शेयर्ड राइड एक छोटा सा एनवायरमेंटल रिलीफ बन जाता है। अच्छा, जरा सोचिए, अगर आपको एक सिनेरियो दूं कि एक फैमिली है जहां हर मेंबर अलग अलग टाइम पर अलग अलग ट्रिप्स करता है, स्कूल, ऑफिस, ग्रोसरी, जिम, हर ट्रिप पर सेपरेट कार यूज करता है। अब अगर सेम ट्रिप्स कंबाइन कर लिए जाए या प्लान्ड कार पूल हो जाए तो भाई फ्यूल कंजम्पशन और ट्रैफिक दोनों कम हो जाते हैं ना। देखिए, इको स्विच अप्रोच ये कहती है कि प्लानिंग स्मार्ट हो तो कम्यूटिंग हाफ इम्पैक्ट में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे देती हूँ जो कि आप लोग बहुत आसानी से कतर में रहते हुए फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वॉकिंग या साइकिलिंग प्रेफर करें, स्पेशली सेफ एरियाज में। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे जो दोहा मेट्रो और पब्लिक बसेस का ज्यादा यूज करें फॉर डेली कम्यूट। तीसरी बात ये कि कार पूल सिस्टम अडॉप्ट करें कोलीग्स या फ्रेंड्स के साथ। चौथी बात ये कि ट्रिप्स को कंबाइन करें ताकि अननेसेसरी मल्टीपल जर्नीज अवॉइड हो सके। पांचवा ये कि एसी आइडलिंग और इंजन अननेसेसरी रनिंग अवॉइड करें ट्रैफिक में। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि कम्यूटिंग सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं बल्कि चॉइस है। जब हम सोलो ड्राइविंग से स्मार्ट शेयरिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं ना, तो हम सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं बचाते बल्कि कॉस्ट और स्ट्रेस भी रिड्यूस करते हैं। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेगुलरली यूज करते हैं उनका डेली स्ट्रेस लेवल भी रिलेटिवली लोअर होता है ड्यू टू लेस ड्राइविंग प्रेशर। अच्छा भाई, आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है कि हर जर्नी

0: सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का तरीका नहीं बल्कि एनवायरमेंट पर भी असर डालने का जरिया होती है। कतर जैसे मॉडर्न सिटी में ग्रीन कम्यूटिंग ऑलरेडी अवेलेबल है साथियों। अब चॉइस हमारे हाथ में है कि हम क्या करते हैं। तो भाई अगली बार जब आप अपना सफर प्लान करें ना तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। कैन आई मेक दिस ट्रिप ग्रीनर टुडे? एंड यस यू कैन। इसी के साथ मैं थी सफा आपके साथ इको स्विच में ऑन एफएम 107 जहां पर हर राइड सिर्फ ट्रेवल नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल स्टेप होता है। सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी।
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल सड़क के हादसों को बढ़ा देता है। ये सिर्फ आपकी अपनी जान को ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए दरख्वास्त है कि हमेशा एहतियात बरतें, ड्राइव करते वक्त अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी के लिए जिंदगी और मौत का सबब बन सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि जिम्मेदार ड्राइवर बने अपनी और दूसरों की सेफ्टी को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
3: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है तकब्बुर से बचना। तकब्बुर यानी घमंड एक ऐसी बुराई है जो इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। जब कोई शख्स अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है तो वो धीरे धीरे लोगों के दिलों से दूर होने लगता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी औकात को पहचानें और हर चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो कुछ भी हमारे पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है, इसलिए फखर के बजाय शुक्र का रवैया होना चाहिए। तकब्बुर इंसान को हक से भी दूर कर देता है, जबकि नरमी और तवाज़ो उसे सच के करीब लेकर आती है। आज का मल ये है कि अपनी किसी भी कामयाबी पर फखर करने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करें और दूसरों को भी इज्जत दें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी। One step to 2030.
4: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया। One Step to 2030. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे

हवा या पानी, दुनिया भर की कंट्रीज इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल भी। सोचिए अगर आपके घर की बिजली, सोचना क्या है, ऐसा है, आपके घर की बिजली सूरज की रोशनी से आए तो ना फ्यूल की टेंशन ना पोल्यूशन। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली टेक्नोलॉजीज में से एक बन गई है। आज कई कंट्रीज में घरों की छतों पर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। दिन भर सूरज की रोशनी इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील होती है और लोग उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी इतनी मिल जाती है कि वो नेशनल ग्रिड को भी वापस बेच देते हैं। तो देखिए, सोलर एनर्जी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि सूरज हर रोज निकलेगा। हाँ, कभी कभी बारिश भी होगी। खासतर अगर हम बात करें गल्फ रीजन की, तो यहाँ सूरज ज्यादा वक्त तक चमकता है और ऐसी जगहों पे सोलर एनर्जी की बेपनाह अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और अब बात करती हूँ एक और एनर्जी की, जो है विंड, विंड एनर्जी। देखिए दोस्तों, जब हम हवा को महसूस करते हैं तो शायद हमें लगता है कि ये सिर्फ एक नेचुरल चीज है, लेकिन इंजीनियर्स ने इसी हवा को एनर्जी के सोर्स में तब्दील कर दिया है। आपने शायद बड़े बड़े विंड टर्बाइंस देखे होंगे जो दूर से जायंट फैंस की तरह नजर आते हैं। देखे हैं कि नहीं, पहले बीच में मुझे बताइए हाँ या ना। देखो, मैंने तो देखे हैं किताबों में। जब हवा चलती है तो बेसिकली जो टर्बाइंस है ना, वो मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ये मैंने पढ़ा है। वैसे कई यूरोपियन कंट्रीज अपनी बिजली का बड़ा हिस्सा विंड एनर्जी से ही हासिल कर रहे हैं। आने वाले सालों में ऑफशोर विंड फार्म्स यानी समंदर के अंदर लगाए गए टर्बाइंस और भी ज्यादा कॉमन हो जाएंगे। जी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ एनवायरमेंट के लिए नहीं है बल्कि इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद है। नई टेक्नोलॉजीज की मदद से नई जॉब्स मार्केट में आ रही हैं। इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, टेक्निकल स्टाफ है, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट्स हैं और रिसर्चर्स, सब के लिए नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं। 2030 तक दुनिया भर में लाखों लोग क्लीन एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, ये जहन में आता होगा ना। देखो, सबसे बड़ी वजह जो है वो है क्लाइमेट चेंज। कार्बन इमर्शंस की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, आइस कैप्स पिघल रही हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं। सोलर और विंड एनर्जी कार्बन इमर्शंस को कम करने में मदद करती हैं, क्योंकि इनमें फ्यूल जलना या जलाना नहीं पड़ता। इसके साथ साथ बैटरी टेक्नोलॉजी भी रैपिडली इम्प्रूव हो रही है। पहले चैलेंज ये था कि सूरज हर वक्त नहीं चमकता और हवा हर वक्त नहीं चलती। अब एडवांस बैटरीज एनर्जी स्टोर कर सकती हैं और जरूरत के वक्त उसे यूज कर सकती हैं। फ्यूचर में ऐसे स्मार्ट होम्स होंगे जो खुद एनर्जी जनरेट भी करेंगे और स्टोर भी करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इस रेवोल्यूशन का एक अहम हिस्सा है, इस पर आज बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल तो मैं आपको दूंगी। कल तक पेट्रोल स्टेशंस बड़े कॉमन थे, आज चार्जिंग स्टेशंस बढ़ रहे हैं। कल शायद अक्सर व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक ही ज्यादातर हो जाएं। इससे होगा ये कि फ्यूल कंजम्पशन और पोल्यूशन दोनों कम होंगे। वहीं 2030 का जो शहर है वो कैसा होगा? गांव की रूफ टॉप्स पर इमेजिन कीजिए सोलर पैनल्स हैं, रोड्स पर इलेक्ट्रिक बसेस हैं, स्मार्ट बिल्डिंग्स हैं, स्मार्ट होम्स हैं जो एनर्जी को ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि क्लीन एनर्जी पर चलता है, और पार्क जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी से मेंटेन किए जाते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये सब आज की प्लानिंग और इनोवेशन से कल के लिए मुमकिन होगा। लेकिन इस रेवोल्यूशन की सक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट पर तो डिपेंड नहीं करती, हर फर्द अपना रोल अदा कर सकता है। बिजली बचा के, एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस इस्तेमाल करके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करके और एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट्स अडॉप्ट करके। ये इंसानी सोच की कहानी है, ये इस बात की मिसाल है कि जब दुनिया किसी चैलेंज का सामना करती है तो इनोवेशन डिटर्मिनेशन के जरिए उसका हल भी ढूंढ लेती है। हो सकता है 2030 में हम अपने आज की दुनिया को भूल जाएं, ना समझ पाए, लेकिन जो दुनिया होगी वो एक अलग ही दुनिया होगी। और दोस्तों, ये वो वक्त है जब इंसानियत ने
क्लीन, ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ।

आज के लिए दोस्तों बस इतना ही. मुझे यानी नाजिया को और शकीब अहमद हम दोनों की इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
2: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप,
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: वक्त एक अनमोल खजाना है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। गया वक्त कभी लौट कर नहीं आता। वक्त का एक लम्हा एक तोला सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, जबकि आप एक लम्हे को एक तोला सोने की कीमत अदा करके खरीद नहीं सकते। जब से ये दुनिया वजूद में आई है, वक्त एक ही रफ्तार से रवा दवा है। इंसान तमाम चीजों को अपने काबू में कर सकता है, मगर वक्त और मौत को अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता। इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल वक्त बताए बगैर आ जाता है, लेकिन यह इंसान को बहुत कुछ सिखा कर ही जाता है। याद रखिए कि मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आना बहुत बड़ी नेकी है। दुनिया में रहते हुए मुश्किल वक्त सभी पर आता है, किसी का सब्र देखने के लिए और किसी का ज़र्फ़ देखने के लिए।
1: पैगाम ऑन FM 107।

0: मैं सच में जाता हूँ इंट्रो के लिए मैं एक रोबोट रख लूँ और वो रोबोट जो है बोले वेलकम टू टेक इनोवेशन वेलकम टू टेक इनोवेशन वो दुनिया जहां पर टेक्नोलॉजी भाग रही है सरपट दौड़ रही है सरपट इधर से उधर क्या क्या नहीं हो रहा भाई आप बैठे हुए यहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ पहले जैसा ही तो है ना जी ना हर 5 मिनट पे सब कुछ बदल जा रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया ही ऐसी है और क्या क्या खबरें कौन कौन से कोने से आ रही हैं सब बताऊंगा बट उससे पहले कुछ कमाल के टूल्स हैं कमाल की एप्स हैं कमाल के गैजेट्स हैं और आज के गैजेट्स बजट वाले हैं जो आपके काम आ सकते हैं और बजट में है तो मजा ही आ जाएगा आपको उसके बाद हम सीधा कूदेंगे न्यूज में क्योंकि न्यूज में बहुत काम की चीजें हैं और हम गेमर्स का थोड़ा दिल तोड़ा गया है उसके बारे में भी बात करेंगे लेट्स बिगिन विद एप्स दिस वीक
1: ट्रेंडिंग एप्स
0: तो एक ऐप जिसके बारे में सबसे पहले बात करूंगा ये ऐप मैंने रिसेंटली डिस्कवर करी है जी हाँ मैंने डिस्कवर करी है मैं क्रिस्टोफर कोलंबस आई नो सबसे पहले मैंने नहीं करी डिस्कवर लेकिन जिनको नहीं पता है उनके काम आएगी इमेज जनरेशन की बहुत सारी एप्स और एआई टूल्स मैंने पहले आपको बताई थी याद होगा आपको ये जो है अभी ऐप नहीं है दिस इज एक्चुअली एन एआई टूल जो आप फोन में या फिर अपने लैपटॉप्स पे पीसीज पे खोल सकते हैं इसका नाम है REVE AI रेव या फिर रवे जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है REVE AI जब आप टाइप करेंगे तो एक पेज खुलेगा शुरुआत में बिना पेमेंट के यू हर्ड इट राइट बिना पेमेंट के आप बहुत सारी इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं अब एक स्पेसिफिक चीज बताता हूं बहुत सारे इमेज जनरेटर्स जो होते हैं जो AI इमेज क्रिएट करते हैं उनसे ये बेटर है एंड आई एम नॉट लाइंग टू यू क्योंकि जब आप चेंजेस करने बैठते हैं व्हेन यू एडिट बाकी में तो पूरी की पूरी फोटो चेंज हो जाती है ना मान लीजिए आप एग्जांपल देता हूं मैं एक टेबल आपने लिखा कि क्रिएट अ टेबल जिसपे फ्रूट्स रखे हुए हैं राइट अब आपके सामने सेब की एक पूरी बास्केट आ गई है अब उस पूरे फ्रेम में अगर आप एप्पल्स को चेंज करना चाहेंगे इफ यू वॉन्ट पुट बनाना प्रॉब्ली पीचेस और वट एवर वो पूरे के पूरे सीन को बदल सकता है चांसेस हैं कि ना सिर्फ बास्केट बल्कि आसपास का सीन भी थोड़ा सा चेंज हो जाए ये जो है REVE AI ये क्या करता है एक तो इमेज बहुत रिफाइंड वर्जन आपको देता है उसके बाद स्पेसिफिकली चीजों को चेंज करता है तो आपको कोई फ्रेम में कोई स्पेसिफिकली कोई चीज बदलनी है तो पूरे फ्रेम पे फर्क नहीं पड़ेगा ये अलग से उसी चीज को बदलेगा सिर्फ जिसको आप बदलना चाहते हैं पूरी की पूरी फोटो I know it sounds a little complicated, but I'm not lying to you. ये आपके काम आ सकती है अगर आप इमेज जनरेट करना चाहते हैं even if you want to check, आप जाइए खुद ट्राई कीजिए REVE AI ठीक है इस पे आप डाल के देखिए एंड फ्री में बहुत सारी इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं एक पॉइंट के बाद वो आपसे ऑफकोर्स बोलेगा लाओ जी डॉलर दो मेरे हाथ में तब बनाऊंगा अगली लेकिन आप कर सकते हैं इसका जो पेड वर्जन है ये उन लोगों के लिए जो वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो भी इससे जनरेट करवा सकते हैं या अपने फोटोज को एनिमेशन एनिमेट कर सकते हैं ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल AI टूल टू यूज एंड आप यूज करिए खुद बताइएगा मुझे कि आपका क्या इस पर रिव्यू बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव्ड इट तो ये है हमारी लिस्ट में सबसे पहले रैंकिंग वाइज नहीं मगर सबसे पहले इसका जिक्र करना चाहता हूं बिकॉज रिसेंटली मुझे ये AI टूल मिला ओके मूविंग ऑन अगला जो है जी ये बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत काम का है इस AI टूल का नाम है Gamma AI GAMA ठीक है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत सारे AIs हैं आई नो जो लोग बिजनेसेस में हैं या जिन लोगों को प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है वो लोग मुझसे कहीं गुना ज्यादा और कहीं गुना ज्यादा जानते हैं ऐप्स उन्हें पता है उन्हें AI टूल पता है बट अगर नहीं पता किसी को जो सोच रहा है कि प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से कैसे बनाए तो Gamma AI GAMA AI लेट मी टेल यू वाई इट इज बेटर एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर AI टूल्स ये प्रेजेंटेशन तो जनरेट करेगा ही करेगा बहुत सिंपल तरीके से मगर इसके बाद आपको कोई स्पेसिफिक स्लाइड में कुछ चेंज करना है उसको आपको कोई कैजुअल लुक देना है आपको उसमें चार्ट्स बनाने हैं आपको उसमें एक फ्लो बनाना है वट एवर इज देयर ये फौरन चेंज करेगा स्पेसिफिक स्लाइड में जैसे आपने डाला कि चेंज स्लाइड 3 टू बी मोर कैजुअल विद अ फ्लो चार्ट तो बाकी प्रेजेंटेशन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा स्पेसिफिकली वो वाली स्लाइड जिसको जिस पे आपने प्रॉम्प्ट दिया है वो काम करेगी मैं नहीं कह रहा बाकी ये नहीं करते मगर ये जो करता है ना भाई बहुत बढ़िया करता है एंड इसमें जो लेआउट्स जो टेम्पलेट्स हैं वो तो कमाल के हैं वन ऑफ द फास्टेस्ट AI टूल जिससे मैंने प्रेजेंटेशन खुद बना के देखी है मत पूछिएगा किस सब्जेक्ट पे बनाई बिकॉज आपका भाई प्रेजेंटेशन वाला बंदा नहीं है जो लोग हैं प्रेजेंटेशन वाले उनके काम आएगी तो आप सुन रहे हैं भाई साहब इधर तो देखिए Gamma AI GAMA AI ठीक है,
2: ओके मूविंग ऑन।
0: अगली है ऐप बहुत बहुत काम की, अगर ऐप ना मिले वेबसाइट पर चले जाना, फोन में खुलती है, एंड्रॉइड हो iOS हो या आपके पास पीसी हो या लैपटॉप व्हाट एवर। इसका नाम है famelack.com, FAMELACK। मैं डिकोड नहीं कर पाया इसका नाम ये क्यों रखा है, famelack.com। ये क्या करता है, इसमें जब आप खोलेंगे इसकी वेबसाइट को तो ये लाइव टीवी है भाई, दुनिया जहां का कोई सा भी चैनल आप देख सकते हैं। इसका इंटरफेस मुझे इतना बढ़िया लगा, जब आप ये वेबसाइट खोलते हैं तो आपके सामने ग्लोब आता है, उस ग्लोब को आप घुमाइए, जूम कीजिए, जूम आउट कीजिए, जूम इन कीजिए और कंट्री सेलेक्ट कीजिए, कंट्री के बाद आपको सारे के सारे जो उसके टीवी चैनल्स हैं वो नजर आ जाएंगे। ऑफ कोर्स कुछ बहुत सारे चैनल्स होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं आएंगे, मगर मोस्टली जो चैनल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे भाई। बहुत कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है। सो famelack.com, इट इज नॉट लैकिंग फेम एट ऑल, पर नाम में है तो है, ठीक है। विदाउट सब्सक्रिप्शन अगर आप टीवी चैनल्स देखना चाहते हैं ऑन द गो, ये है आपके लिए famelack.com, ठीक है। अब बढ़ते हैं जरा गैजेट्स में, गैजेट्स दिस वीक में, जिसमें बजट वाले गैजेट्स हैं।
3: cool gadgets।
0: तो गैजेट ऑन द लिस्ट, सबसे पहले बात करूंगा मैं एक ऐसी चीज की जिसको देखने के बाद मेरा भाई हमारे ऑफिस में काम करता है शहबाज, वो कह रहा है भाई ये चाहिए, ये तो चाहिए। ये है एसर चार्ज मेट 4-in-1। ये क्या है, एक किस्म का, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस भाई, एक किस्म का कारपेट है, ठीक है, छोटा सा कारपेट है आपके लैपटॉप के लिए, 4-in-1 जैसे मैंने कहा, वायरलेस चार्जिंग देता है ये, वायरलेस चार्जिंग। इसके अंदर सिर्फ वायरलेस चार्जिंग नहीं है, लैपटॉप स्लीव भी है, तो मतलब लैपटॉप अगर आपका 13-16 inches का है, आप आराम से इसमें लैपटॉप को स्लाइड कर सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और वायरलेस चार्जिंग है इसमें। आप वायरलेस चार्जिंग के अलावा आप घड़ी चार्ज कीजिए, आप अपने जो हेडफोन्स है वो चार्ज कीजिए, एनीथिंग, पर आपका लैपटॉप इस पे रख के जब आप काम करेंगे 10 लोग मुड़ के देखेंगे और बोलेंगे यही है भाई बिजनेसमैन, इसी को आवे है काम, मैं बता रहा हूँ, फॉर गुड इंप्रेशन, फॉर गुड क्वालिटी, फॉर चार्जिंग पर्पसेस एंड टू लुक मोर सिक्योर इन योर वर्क प्लेस, ये आपके काम आएगा। बहुत सस्ता है भाई, बहुत ही सस्ता है, इंडिया से अगर किसी से मांगेंगे आप तो और भी सस्ता पड़ेगा। तो एसर चार्ज मेट 4-in-1 अभी अमेजोन पे, ये मैंने चेक किया तो अभी अमेजोन पे नॉट अवेलेबल, लेकिन बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, बट इट इज अवेलेबल एल्सवेयर एज वेल, तो कतर में भी कहीं पर मिले तो मुझे प्राइस बताइएगा इसका क्या है, मैं भी लेने की सोच रहा हूँ। सो एसर चार्ज मेट, ACER वो जो कंपनी है, एसर चार्ज मेट 4-in-1 वायरलेस, इतना टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा, एंड बहुत कमाल का भाई, बहुत ही ज्यादा कमाल का, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब अगला जो है जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, ये भी बड़ा कमाल का है, ये माउस है। मैं इसलिए हिचकिचाया कि आप बोलें ऐसा क्या बताने वाला है। देखो आप, मैं जानता हूँ आप माउस बहुत सारे कतर में ले चुके हैं, लेकिन आपको लगता है ये क्या करूँ मैं इसका, पर ये बजट में है भाई, ये बजट में है। कतर में भी आपको 50-50 रियाल के माउस मिल जाएंगे, लेकिन जो इस माउस के अंदर है वो बाकी में बात नहीं है, ये हाथ में प्रीमियम फील होता है। इसका नाम है MCAT, AMKETTE, MCAT, MCAT प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, मगर मैं स्पेल आउट कर देता हूँ, AMKETTE XS सीरीज, X एज एन एक्सरे वाला और S, ठीक है, एज इन स्नो, तो MCAT स्नो सीरीज फ्लो। ये एक माउस है, एरोगोनॉमिक वायरलेस ब्लूटूथ माउस है ये, इसमें साइड स्क्रोल भी है और साइड स्क्रोल बड़ा अच्छा काम करता है भाई, 7 बटन दिए हुए हैं, मल्टी ओएस, 3200 DPI एडजस्टेबल है, 1000 हर्ट्ज पॉलिंग है और 800 mAh की रिचार्जेबल बैटरी है। बहुत बढ़िया काम का है। कई मरतबा क्या होता है ना, आप जब एक्सेल शीट खोलते हैं तो उसे साइड स्क्रोल करना पड़ता है और फिर आपको लगता है काश कुछ ऐसा हो जाए तो फौरन साइड स्क्रोल कर लेता, तो ये है और बजट में अंडर 1000 है, कई जगहों पे 1200-1100 का पड़ेगा, मैं इंडियन रुपीज में बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई इंडिया से आपके लिए ला सके तो ये मंगा लीजिए, आपकी छुट्टी माउस लेने की जरूरत ही नहीं है इसके बाद आपको, यहाँ पर ही मिल सकता है, चांसेस आर, यहाँ पे आप देख लीजिएगा AMKETTE, मिले तो भाई बताना, हम भी जरा हाथ साफ कर लेंगे क्योंकि काम की चीज तो है भाई, काम की चीज तो है। अब मूविंग ऑन। अच्छा अब देखो, कतर में ना एक चार्जर है, अब मल्टीपल कंपनीज इस किस्म के चार्जर बना रही है, तो मैं इसको कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू, यहाँ पर कतर में एक चार्जर मिल रहा है, उसकी खास बात यह है कि वो जब आप गाड़ी में प्लग इन कर लेते हैं, जहाँ पे लैपटॉप चार्जिंग की जगह होती है, सॉकेट में लगाते हैं, तो उसके रिट्रैक्टेबल वायर्स है ना, वो मिल रहे हैं अराउंड 120 रियाल्स के, आई डोंट नो अभी 140-130 ऐसे चल रहा था. पहले मुझे लगा ये खराब चीज है क्या यार, वो मतलब है कोई तो क्या इस बात का, मैं तो अपनी गाड़ी में चार्ज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वायर लगा है चार्ज हो गया. आई वॉज रॉन्ग. ये आप ट्राई करके देखें, जब आप अपनी गाड़ी में इसे लगाएंगे सॉकेट को, तो रिट्रैक्टेबल वायर्स का बहुत फायदा रहता है भाई. आपने फोन चार्जिंग पे लगाया और आपका चाहे कैसी भी पिन लगती हो भाई आपके फोन में, ये काम करेगा. सी टाइप हो, कैसी भी हो, लाइटनिंग केबल हो, सब लगाइए और काम कीजिए. ये बहुत बहुत बढ़िया है. आपने वायर जैसे हटाया अपने फोन से, ये रिट्रैक्ट होकर चला जाएगा. इसमें जो है सॉकेट्स भी, सो यू कैन ऑब्वियसली चार्ज योर लैपटॉप एज वेल, यू कैन चार्ज एनीथिंग यू वांट. एंड ये गाड़ी के मेन सॉकेट से सोर्स जुड़ा हुआ है, तो बहुत जल्दी चार्ज भी करता है, बहुत काम का है. तो अगर कतर में ये मिले आपको, ऐड आएंगे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोचने का नहीं, ले डालने का. ओके, ठीक है जी, ये हो गई गैजेट गुजेट की बातें. अब एक रिमाइंडर, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर है, FM107 कतर, इस पे आ जाइएगा. कोई गैजेट, कोई ऐप, कोई कुछ भी आपके जहन में आ रहा हो टेक से जुड़ा हुआ, तो हम तक जरूर पहुंचाएं. ठीक है, अब बढ़ते हैं इन टेक न्यूज की तरफ. खबरें बहुत सारी हैं और उन खबरों में एप्पल अभी भी छाया हुआ है. एप्पल जो है रोल आउट करने वाला है iOS 27. आपके पास अगर iPhone 15 से ऊपर है, iPhone 15 से आपका फोन शुरू होता है, तो बढ़िया भाई, इस फॉल में मतलब के कुछ महीनों बाद ही आपको iOS 27 की अपडेट मिल जाएगी. iPhone 15 से पहले वाले फोन्स को नहीं मिलेगी. यस, Apple has said that. उन्होंने बोला कि न्यू असिस्टेंट जो है वो इनिशियली रिलीज होगा एज अ बीटा वर्जन, उसके बाद यूजर्स जो हैं वो मोर और लेस लाइकली ऑप्ट इन करेंगे फॉर सीरी AI, जो कि iOS 27 डेवलपर्स जो हैं वो रोल आउट करेंगे बीटा, उसका टेस्टिंग वेस्टिंग और वो सब अलग चीजें. मगर जो कैपेबिलिटी है इसकी वो आने पर पता लगी. आई विल नॉट जज, पर एक चीज है, एप्पल जब भी अपडेट देता है तो पिछले वाला फोन जो है अगर आप अपडेट करते हैं तो पता नहीं क्यों स्लो हो जाता है, बैटरी यार बहुत जल्दी निकलने लग जाती है, व्हिच इज सैड. तो मुझे अपडेट से डर लगता है. मगर आप करना चाहें, इफ यू हैव अ फोन आईफोन 15 से ऊपर है या आईफोन 15 है, तो आपका हो जाएगा. ठीक है, तो ये सपोर्ट जो है देना चाह रहे हैं iPhone 11 को भी, मगर वो बहुत ही वेगली इन्होंने कहा है, तो आई विल नॉट मेंशन दैट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब गेमिंग न्यूज की तरफ, जिससे मेरा दिल टूटा है.
1: गेम एंड एंटरटेनमेंट.
0: गेमिंग न्यूज में प्लेस्टेशन कम्युनिटी को बहुत बड़ा धक्का लगा है. जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था आपको कि इन्होंने बोल दिया है कि सीडीज अब नहीं आएंगी, नो फिजिकल डिस्क, नो नथिंग. अब ये करने के बाद एक chaotic सिचुएशन क्रिएट हो गई है. जापानीज कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा annoyed है इस चीज से, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर डिसएग्रीइंग, यार क्यों कर रहे हो ऐसा. पर प्लेस्टेशन अभी भी अड़ा हुआ है, उन्होंने बोला नो, जनवरी 2028 के बाद सोनी जो है किसी भी किस्म की फिजिकल डिस्क नहीं क्रिएट करने वाला है. जहां तक मुझे लगता है जो लीक्स बता रहे हैं, जब प्लेस्टेशन 6 आएगा, आई डोंट नो, कह रहे हैं कि 28-29 में आ जाएगा, उसमें पहले ही इन्होंने सेटल कर दिया कि ना भाई कोई डिस्क नहीं है. द सैड पार्ट इज कि बहस छिड़ चुकी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि डिस्क नहीं है चलेगा, पर मैं उनमें से जो कह रहे हैं भाई फिजिकल डिस्क तो दो. If I want to share a game with somebody, I cannot. Online में कर सकता हूँ, online में share कर सकता हूँ, मुझे अपना account देना पड़ेगा, that is another thing. मगर physical disc की बात कुछ और होती है यार, है ना? तो वो चीज खत्म करके इन्होंने बाकियों को भी प्रोवोक कर दिया है. अभी Xbox वाले भी कह रहे हैं ना जी ना, हम भी डिस्क खत्म कर रहे हैं, हटाओ. सो ऐसा करने से कंसोल तो थोड़ा पतला हो जाएगा, कंसोल जो है गेमिंग कंसोल, पर इसका फायदा क्या है? यू आर किलिंग योर फैंस, है ना? I don't know, आपका इस पर क्या कहना है ये आप बता सकते हैं. डिस्क नहीं होगी, I'm just sad. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर है, FM107 कतर. मुझे बताइएगा कि आप फिजिकल सीडीज के हक में हैं या आपको लगता है कि जो ऑनलाइन खरीदे तो चल जाएगा, बिकॉज ऑनलाइन खरीदने पे यू डोंट टेक्निकली ओन इट. सीडीज, या Yes. You're thinking in the right direction. But for now, tech innovation से मैं दो हवाला कभी लेता हूँ इजाजत. अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है. मास्सलाम.
2: आप सुन रहे हैं FM 107.
4: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। सईद अल सुलैती कतर के सबसे नुमाया मोटरसाइकिल रेसर्स में शुमार किए जाते हैं। मैंने पिछले कई एपिसोड्स में मोटर गाड़ियों के बारे में बताया, मोटर कार रेसिंग के बारे में बताया, ऑफ रोड रेसिंग के। इस बार मैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा या कर रहा हूं, वो सईद अल सुलैती है, जो कि मोटरसाइकिल रेसर्स में से वन ऑफ द स्टार्स हैं। उन्होंने अपनी रफ्तार, हिम्मत और मेहनत के जरिए बैन अक्वामी मोटर स्पोर्ट में कतर का नाम रोशन किया है। मोटरसाइकिल रेसिंग दुनिया के मुश्किल तरीन और ख़तरनाक खेलों में से एक है। ये आप लोगों को पता है, टू व्हीलर इज ऑलवेज डेंजरस, बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है, जहां ड्राइवर्स को बहुत तेज़ रफ्तार पर मुकम्मल कंट्रोल और गैर मामूली तवज्जो की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ सईद अल सुलैती ने इन तमाम टैलेंट का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए एक कामयाब करियर तय किया। हिम्मत चाहिए होता है मोटरसाइकिलिंग रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड इट इज़ क्वाइट डेंजरस, क्वाइट डेंजरस। सईद अल सुलैती ने कतर की नुमाइंदगी सुपर बाइक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में की, जो मोटरसाइकिलिंग रेसिंग की दुनिया के सबसे बड़े और मुकाबले से भरपूर टूर्नामेंट्स में से एक माना जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ ममालिक के बेहतरीन राइडर्स शिरकत करते हैं और सईद ने उनके दरमियान अपनी काबिलियत साबित की। इसके अलावा उन्होंने FIM एंड्योरेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हिस्सा लिया, जहां लंबी मुद्दत की रेसेस ड्राइवर्स की जिस्मानी और जहनी सलाहियत का सख्त इम्तिहान लेती है। आज सईद अल सुलैती कतर के मोटर स्पोर्ट के एक रोशन सितारे के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी कामयाबियां इस बात का सबूत हैं कि जज्बा, मेहनत और अज़म के जरिए कतरी एथलीट्स दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

चल बात करें सिर्फ तू और मैं, सवाल सारे जो गलत फहमी में बदल गए वो दूर करें। मोहल्ले में भी शोर है, हो हाय ये कैसा दौर है, सच बता।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट, MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
2: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
2: دل سے دیسی.
3: کنسسٹنسی از دا کی. یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے. اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا. سو سسٹین دا فیوچر آر جے مہوش کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے. صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
4: السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سسٹین دا فیوچر. آپ کا اپنا ریڈیو شو جو بات کرتا ہے ہماری زمین کو بہتر بنانے کی. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے ماہوش اینڈ ٹوڈے وی آر ڈائیونگ انٹو اے سپر ایکسائٹنگ ٹاپک.
5: ٹاپک آف دی ڈے.
4: گرین ٹرانسپورٹ. موونگ وداؤٹ پولیوٹنگ. آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنے ٹریول کو ایکو فرینڈلی بنا سکتے ہیں اور کیسے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بڑے فرق لا سکتی ہیں. سو بکل اپ لیکن ایکو فرینڈلی سٹائل میں. ٹوڈیز شو از آل اباؤٹ ہاؤ وی کین موو اراؤنڈ وداؤٹ ہارمنگ آور پلانٹ. ہم ڈسکس کریں گے پبلک ٹرانسپورٹ، الیکٹرک کارز اور سائیکلنگ کے بینیفٹس. پلس وی ہیو گاٹ سم امیزنگ گلوبل اسٹوریز، پریکٹیکل ٹپس اور ایک فن چیلنج فار آل آف یو. اپنی رائے اور آئیڈیاز شیئر کرنے کے لیے کنیکٹ ود اس آن سوشل میڈیا ایٹ ایف ایم 107 قطر یا ہمیں میسج کریں واٹس ایپ پہ 666-222-107. اب چلیے شو اسٹارٹ کرتے ہیں.
5: سسٹین دی فیوچر.
4: لسنرز آج کا ٹاپک ہے گرین ٹرانسپورٹ، موونگ وداؤٹ پولیوٹنگ. ہماری زمین کے لیے چھوٹی سی بات بھی بہت بڑا اثر کر سکتی ہے. تو سب سے پہلے یہ گرین ٹرانسپورٹ ہے کیا؟ دنیا ایک بہت بڑا کرائسس فیس کر رہی ہے، کلائمیٹ چینج اور پولوشن. شہروں کی ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ، اسموک اور ڈسٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ صحت پر سیریس اثرات نظر آ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اپنی ضروری ٹریولنگ اور کمیوٹنگ اسٹاپ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. سفر تو ہر روز کی ضرورت ہے. پھر سولوشن کیا ہے؟ سولوشن ہے گرین ٹرانسپورٹ. گرین ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے ایسی ٹریولنگ اور کمیوٹنگ جو انوائرمنٹ کو کم سے کم ڈیمیج کرے. یعنی کہ ہم اپنا سفر کمپلیٹ کریں لیکن ہوا کو پولیوٹ نہ کریں، فیول ویسٹ نہ ہو اور ٹریفک اور نوائز پولیوشن کم ہو. اس کانسیپٹ کے اندر ملٹیپل ٹرانسپورٹ آپشنز اور سسٹمز آتے ہیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہوتے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ جیسے کہ بس، ٹرین، میٹرو، الیکٹرک وہیکلز، ای ویز اور ہائبریڈ کارز، سائیکلنگ اور واکنگ، کار پولنگ اور شیئرڈ موبیلٹی، رینیوبل انرجی بیسڈ وہیکلز. یہ سب چیزیں ایک ہی پرنسپل پہ بیسڈ کرتی ہیں، موو کرو لیکن پلانٹ کو ہارم مت کرو. ٹرانسپورٹ سیکٹر دنیا کے ٹوٹل گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کا ایک بڑا حصہ ہے. پیٹرول اور ڈیزل کارز اسموک اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتی ہیں جو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کا کاز بنتی ہیں. گرین ٹرانسپورٹ ان ایمیشنز کو ڈراسٹیکلی کم کرتا ہے. شہروں کی پولیوٹڈ ہوا استھما، لنگ کینسر और हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ाती है। अगर ट्रांसपोर्ट ग्रीन हो जाए तो एयर क्वालिटी बेटर होगी और लोग सेहतमंद रहेंगे। फ्यूल इंपोर्ट करने पर डेवलपिंग कंट्रीज बिलियंस डॉलर्स स्पेंड करती हैं। ईवीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फ्यूल की डिमांड कम हो जाती है, जिससे इकोनॉमी स्टेबल होती है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेफर और क्लीनर एनवायरनमेंट इंश्योर करता है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आने वाली नस्लों को फायदा देती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी हद तक सबसे इफेक्टिव और ग्रीनर मोड है। कैसे ग्रीन है? वो ऐसे कि एक बस 50 पैसेंजर्स लेकर चलती है। अगर वही 50 लोग अलग अलग कार्स यूज करें तो पोल्यूशन 10-15 टाइम्स ज्यादा होगी। ट्रेन और मेट्रो एक ही ट्रिप में थाउजेंड्स लोगों को मूव कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैफिक कंजेशन और फ्यूल वेस्ट दोनों कम होते हैं। अगर कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स देखें तो बोगोटा कोलंबिया में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दुनिया भर में फेमस है। मिलियंस पैसेंजर डेली ट्रैवल करते हैं और कार की डिपेंडेंसी कम हो गई है। इसी तरह लंदन यूके में मेट्रो और बसेस का एफिशिएंट नेटवर्क लोगों को प्राइवेट कार्स के मुकाबले में चीप और फास्ट ऑप्शन देता है। लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो और कराची की ग्रीन लाइन बस सिस्टम ग्रेजुअली पोल्यूशन और ट्रैफिक को रिड्यूस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स और बसेस अब लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन रही है। इनके जो फीचर्स हैं वो है जीरो टेल पाइप इमिशंस, कोई स्मोक या एग्जॉस्ट नहीं, हाई एनर्जी एफिशिएंसी, पेट्रोल कार्स के मुकाबले में 3% ज्यादा एफिशिएंट, लो मेंटेनेंस यानी ऑयल चेंज या इंजन इश्यूज कम, रिन्यूएबल कंपैटिबल, सोलर या विंड से चार्ज किए गए ईवीज और भी इको फ्रेंडली बन जाते हैं। अब इनके चैलेंजेस देखें तो चैलेंजेस हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अभी बैटरी कॉस्ट ज्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज में एडॉप्शन स्लो है। ग्लोबल एग्जांपल्स देखें तो नॉर्वे में 80% नई कार्स इलेक्ट्रिक हैं। सब्सिडीज और पॉलिसीज ने ईवी एडॉप्शन को इजी बनाया है। चाइना के शेंजन सिटी में 16,000 इलेक्ट्रिक बसेस हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बस फ्लीट। दिल्ली इंडिया में ईवी टैक्सीज और ई रिक्शास काफी पॉपुलर हो रहे हैं। कभी कभी सिंपलेस्ट सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होते हैं। वॉकिंग और साइकिलिंग एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल ग्रीन और पॉल्यूशन फ्री है। बेनिफिट्स देखें तो जीरो इमिशंस, हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब वेट कंट्रोल, स्ट्रेस कम, फिटनेस बेटर, अफोर्डेबल जैसे कि साइकिल का मेंटेनेंस मिनिमल है और वॉकिंग फ्री। इसके साथ ही ट्रैफिक रिडक्शन से भी बचा जा सकता है। जब आप साइकिल यूज करें या फिर पैदल चलें तो ये दोनों ही सूरतों में कम स्पेस लेते हैं। ग्लोबल एग्जांपल्स देखें तो नीदरलैंड में साइकिलिंग कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि 60% से ज्यादा लोग अपना डेली कम्यूट साइकिल से करते हैं। फ्रांस में देखें तो कार फ्री डेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं जहां सिर्फ पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट अलाउड होते हैं। कारपूलिंग और शेयर्ड मोबिलिटी के हवाले से देखा जाए तो कारपूलिंग का सिंपल फॉर्मूला है, अगर चार लोग एक ही ऑफिस जाते हैं तो चार अलग कार्स क्यों, एक ही कार शेयर करो। लेस व्हीकल्स लेस एमिशंस, फ्यूल और पार्किंग कॉस्ट कम, सोशल इंटरेक्शन एंड कन्वीनियंस। राइड शेयरिंग एप्स कारपूलिंग सर्विसेज ऑफर कर रही हैं जो इको फ्रेंडली भी हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी। ग्रीन ट्रांसपोर्ट का एक और डायमेंशन है व्हीकल्स को रिन्यूएबल एनर्जी से पावर करना, सोलर पावर्ड कार्स और बसेस, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स व्हीकल्स, ट्राम्स और ट्रेन्स जो रिन्यूएबल पावर्ड ग्रिड से चलती हैं। एग्जांपल अगर लें तो जर्मनी ने हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स लॉन्च की है जो डीजल ट्रेन्स का इको फ्रेंडली रिप्लेसमेंट है। दुबई ने हाइब्रिड वाटर टैक्सीज और सोलर बसेस इंट्रोड्यूस किए हैं। ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिर्फ व्हीकल्स के बारे में नहीं बल्कि शहरों की प्लानिंग में भी होता है। डेडिकेटेड साइकिल लेन्स बनानी चाहिए, वाइड फुटपाथ पेडेस्ट्रियन के लिए हो, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जहां बस ट्रेन और मेट्रो एक नेटवर्क की तरह वर्क करे, कार फ्री जोन्स जहां सिर्फ वॉकिंग और साइकिलिंग अलाउड हो। एग्जांपल के तौर पे देखें तो डेनमार्क ने साइकिलिंग लेन्स और कार फ्री स्ट्रीट ने इस शहर को सबसे इको फ्रेंडली सिटीज में शामिल कर दिया है। सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉकिंग के लिए डेडिकेटेड प्लानिंग ने कार डिपेंडेंसी को काफी कम कर दिया है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट अब एक लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल प्रायोरिटी बन चुका है। यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs में भी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को हाईलाइट किया गया है। SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज ग्रीन ट्रांसपोर्ट अर्बन पोल्यूशन और कंजेशन रिड्यूस करता है। CDG 13 यानी क्लाइमेट एक्शन कार्बन इमिशंस को कम करने का एक मेजर सॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो हमारे शहरों लाहौर कराची इस्लामाबाद में पोल्यूशन क्राइसिस वर्स्ट हो रहा है। स्मोक सीजन हर साल सीवियर होता जा रहा है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट के बिना इस इशू को सॉल्व करना मुमकिन नहीं। BRT सिस्टम्स एक पॉजिटिव स्टेप है। इलेक्ट्रिक बसेस पायलट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन साइकिल लेन्स और कारपूलिंग कल्चर प्रमोट करना अभी बाकी है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक फैंसी आइडिया नहीं बल्कि सर्वाइवल की जरूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट EVs, साइकिलिंग वॉकिंग और रिन्यूएबल पावर्ड सिस्टम्स हमारी इकोनॉमी हेल्थ और एनवायरमेंट के लिए बेस्ट सॉल्यूशंस हैं। सोचें अगर हम सब कलेक्टिवली ग्रीन ट्रांसपोर्ट अडॉप्ट करें तो हवा साफ होगी ट्रैफिक मैनेजेबल होगा फ्यूल डिपेंडेंसी कम होगी और फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेफर प्लैनेट होगा। ग्रीन ट्रांसपोर्ट का सिंपल मैसेज है मूव करो लेकिन पोल्यूट मत करो।
5: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर RJ महविश के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: आखिर में एक दफा फिर नजर डालते हैं ग्रीन ट्रांसपोर्ट पे। ये वो तरीका है जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कम करते हैं। For example, using public transport like buses or trains, driving electric vehicles, या फिर cycling and walking. कतर में देखें तो we are seeing some great examples of green transport और आज हमने इन्हीं के बारे में बात भी की। जैसे दोहा मेट्रो ये एक शानदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो ना सिर्फ कन्वीनियंट है बल्कि इको फ्रेंडली भी। दोहा मेट्रो चलने से रोड्स पर काफी ट्रैफिक कम होता है और फॉसिल फ्यूल्स का यूज भी घटता है। एक स्टडी के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लाइक मेट्रोज कैन रिड्यूस कार्बन इमिशंस बाय अप टू 50% कंपेयर्ड टू प्राइवेट कार्स। ये है असली गेम चेंजर। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिक व्हीकल EV टैक्सीज। यू माइट हैव सीन सम शाइनी न्यू EV टैक्सीज अराउंड दोहा। ये बैटरी पावर्ड होते हैं और इनका जीरो टेल पाइप इमिशन होता है मतलब नो हार्मफुल स्मोक कमिंग आउट व्हाइल यू ट्रेवल। एक रिपोर्ट के मुताबिक EVs कैन कट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय 30-40% ओवर देयर लाइफ टाइम कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल कार। ये है फ्यूचर का ट्रांसपोर्ट। और तीसरा एग्जांपल है साइकिलिंग। दोहा में अभी साइकिलिंग कल्चर ग्रो कर रहा है स्पेशली इन एरियाज लाइक एजुकेशन सिटी या अलविदा पार्क। साइकिलिंग इज नॉट जस्ट गुड फॉर द प्लैनेट बट आल्सो फॉर योर हेल्थ। जीरो इमिशंस जीरो फ्यूल और फुल फिटनेस इससे बेहतर क्या हो सकता है। अब थोड़ा रियलिटी चेक। कतर में वी लव आवर कार्स राइट लेकिन कार कल्चर का एनवायरनमेंट पे बहुत असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल जब हम अननेसेसरीली बड़े व्हीकल्स चलाते हैं या सिंगल ऑक्यूपेंसी कार यूज करते हैं वी आर एडिंग टू एयर पोल्यूशन एंड ट्रैफिक कंजेशन। एक एवरेज पेट्रोल कार हर साल लगभग 4.6 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती है एंड सीरियसली दैट्स ह्यूज। तो हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Why does sustainability matter? क्योंकि ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हमारी फ्यूचर generations के लिए भी है। Green transport reduces air pollution, saves natural resources और climate change के effects को कम करता है। अगर हम आज छोटे steps लें we can ensure a cleaner, healthier planet for our kids. जिनिस्टर्स और अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपने ग्रीन फ्लैश सेगमेंट के साथ सुनते रहें एफएम 107 दिल से देसी

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 पे सस्टेन द फ्यूचर विद आरजे माविशाल। अब चलिए दुनिया भर की कुछ एक्साइटिंग सस्टेनेबिलिटी अपडेट्स के लिए, ये है हमारा ग्रीन फ्लैश सेगमेंट।
1: ग्रीन फ्लैश।
0: पहली खबर आती है ओस्लो नॉर्वे से। ओस्लो इज एमिंग टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार फ्री सिटीज बाय 2030। दे आर एक्सटेंडिंग साइकिलिंग लेन्स, इम्प्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सिटी सेंटर में प्राइवेट कार्स को बैन कर रहे हैं। रिजल्ट, क्लीनर एयर और हैप्पियर रेजिडेंट्स। दूसरी खबर है कोपेनहेगन डेनमार्क से। वहाँ 62% लोग डेली साइकिल से काम पे जाते हैं। सिटी ने डेडिकेटेड बाइक ब्रिजेस बनाए हैं और अब वहाँ की कार्बन इमिशंस पहले के मुकाबले में बहुत कम है। तीसरी स्टोरी आती है बोगोटा कोलंबिया से। हर संडे बोगोटा के रोड्स कार्स के लिए बंद हो जाते हैं और लोग साइकिलिंग, वॉकिंग या स्केटिंग के लिए निकलते हैं। इस इनिशिएटिव ने ना सिर्फ पोल्यूशन कम किया है बल्कि कम्युनिटी स्पिरिट को भी बूस्ट किया है। ये थी दुनिया भर से ग्रीन ट्रांसपोर्ट के बारे में खबरें। अब बात करते हैं एक कटिंग एज आइडिया की जो ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर को शेप कर रहा है।
1: ग्रीन इनोवेशन।
0: आज हम स्पॉटलाइट डाल रहे हैं हाइपर लूप टेक्नोलॉजी पे। ये एक अल्ट्रा फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो पॉड्स को वैक्यूम ट्यूब्स में 700 माइल पर आवर तक चला सकता है। इसमें फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत नहीं और ये सोलर एनर्जी से पावर हो सकती है। दुनिया भर में इस पे काम चल रहा है और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। इमेजिन दोहा से दुबई सिर्फ 30 मिनट में। दैट्स अ गेम चेंजर फॉर सस्टेनेबल ट्रेवल। अब बारी आती है हमारे इको लिविंग टिप्स की।
1: इको लिविंग टिप्स।
0: चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं टू मेक योर ट्रांसपोर्ट ग्रीनर। हफ्ते में एक बार दोहा मेट्रो या बस का यूज करें इंस्टेड ऑफ योर कार। इट्स अफोर्डेबल, कन्वीनियंट और प्लैनेट के लिए बेहतर। अगर आपकी डेस्टिनेशन 1-2 किलोमीटर के अंदर है तो वॉक या साइकिलिंग करें, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ऑफिस या स्कूल जाते वक्त दोस्तों या कोलीग्स के साथ कारपूल करें, ये फ्यूल और इमिशंस दोनों कम करता है। स्मॉल स्टेप्स, बिग इम्पैक्ट। ट्राई दीज टिप्स और देखें कैसे आप फर्क ला सकते हैं। और अब बारी आती है हमारे सेगमेंट वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट की।
1: वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट।
0: वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट में आज हम आपको सुनाएंगे एक यंग कतरी एनवायरमेंटलिस्ट जो कि पैशनेटली बात करेंगे साइकिलिंग के बारे में और कैसे इनका पर्सपेक्टिव सस्टेनेबल लिविंग के बारे में चेंज हुआ। तो आइए सुनते हैं।
2: ايكو ترانزيت شركه خاصه تشتغل في مجال النقل والمواصلات في دوله قطر. احنا الحمد لله في هذا المؤتمر لوزاره المواصلات اعلنا عن الوكيل الحصري لمنتجات شركه ايكو ترانزيت من الحافلات 6 متر الى 18 متر والمركبات الكهربائيه اللي موجوده حاليا. الوكيل الحصري راح يكون الحمد للسيارات ان شاء الله. جميع حافلاتنا فيها امكانيه الوصول لاخواننا من ذوي الاعاقه، وطبعا هذه الميزه احنا ركزنا عليها وقت تصميم الحافلات اللي موجوده حاليا. وغير المنتجات اللي ذكرتها عندنا شواحن كهربائيه بعد السريعه والبطيئه راح تكون موجوده في قطر. في 2030 كل قطاع النقل العام راح يكون عن طريق الطاقه النظيفه. فهذا طبعا شجعنا ان ندخل في هذا المجال لان خطتنا تتوافق مع رؤيه قطر 2030 للاستدامه والبيئه النظيفه.
0: جي زبردست، ایک بہت ہی انسپائرنگ وائس ہم نے سنی اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر چھوٹا قدم کاؤنٹ کرتا ہے۔ آپ بھی اس مشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔
1: ویکلی چیلنج۔
0: तो लिसनर्स, ये रहा आपका टेक अवे चैलेंज इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते ट्राई करें कि एटलीस्ट एक दिन आप कार के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल या फिर वॉक करें। फॉर एग्जाम्पल दोहा मेट्रो लेकर ऑफिस जाए या शाम को पार्क में साइकिलिंग करें। अगले हफ्ते हमें बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे पूरा किया। मैसेज करें व्हाट्सएप पे 6622107 पे या फिर सोशल मीडिया पे @FM107 कतर। लिस्टनर्स, बहुत शुक्रिया आपका साथ देने के लिए। आज हमने सीखा ग्रीन ट्रांसपोर्ट के बारे में और कैसे हम सब अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगले हफ्ते हम बात करेंगे ओशियंस इन क्राइसिस के बारे में, ओवरफिशिंग, कोरल ब्लीचिंग और पोल्यूशन जैसे सीरियस टॉपिक्स पर। We will also share tips like avoiding overfished seafood and joining beach cleanups. So don't miss it. Apni rai share kare at FM107 Qatar ya WhatsApp pe 6622107. Tab tak ke liye, stay green, stay sustainable aur apni zameen ka khayal rakhein. Main hoon Mavish, ab aapse waqt ho gaya hai kehne ka. Allah Hafiz and take care.
1: Sustain the future.
3: Number one hits music station.
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
6: Bas, bahut ho gaya routine. Need an escape. Ek mind blowing adventure chahiye. To lock ho jao FM 107 ke saath. क्योंकि आ गया है escape room, the ultimate mind workout as pure fun. यहाँ traffic नहीं, tricky wordplay है, boring meetings नहीं, brain teasing riddles है, जहाँ contestants navigate करेंगे audio challenges around the clock. ये है आपका weekly escape into a world of puzzles and excitement.
7: Unlock your mind. Tune into Radio का unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi se, desi.
8: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
9: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
10: टॉप 10 काउंटडाउन।
9: सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोस्तों लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है स्टे सेफ ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि जिंदगी में हम सब मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हैं और अच्छे और बुरे वक्त दोनों से हमारा वास्ता पड़ता है। वक्त के समझाने का अंदाज उमूमन सख्त और तकलीफ दे होता है, मगर इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि वक्त की समझाई हुई बात हतमी होती है, जो पूरी जिंदगी के लिए काफी होती है। अच्छा वक्त तो अच्छी तरह से गुजर जाता है, लेकिन बुरे वक्त में भी एक अच्छाई जरूर होती है, क्योंकि जैसे ही बुरा वक्त आता है मतलब ही और फालतू लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। याद रखिए कि इस दुनिया में रहते हुए मुश्किल वक्त हर किसी पर आता है, जिसके नतीजे में कोई तो संवर जाता है तो कोई बिखर जाता है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हर किसी को बुरे वक्त से महफूज रखे।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आप सुन रहे हैं FM 107।

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं, पर reviews वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप interval से पहले ही घर पे होते हैं. But don't worry, भरोसेमंद review देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर review of the week rolling, ताकि every movie experience बने Absolute Cinema. Assalamualaikum दोस्तों, FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का. ये शो एक बार फिर से लेकर आपके लिए आ गया हूँ जिसका नाम है रिव्यू ऑफ द वीक. हर हफ्ते एक ऐसी मूवी के बारे में हम बात करते हैं जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में वो मशहूर हो. और आज एक ऐसी ही मशहूर मूवी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो भीड़ करने वाले भी हैं. उसका दो रीज़न है. पहले, ये मूवी अच्छी हो या ना हो, रिलीज़ होने के बाद इसके फैंस ही सिर्फ थिएटर पहुंच जाएंगे और थिएटर पहुंचने के बाद ही लाइन लग जाएगी. ये तो हो गई पहली बात. दूसरी बात ये है कि ये फिल्म ऑलरेडी इतना ज़्यादा हाइप बना चुकी है कि इस मूवी को जो बहुत पहले ना भी देखे हो, इस मूवी के फैन ना भी हो, वो भी आसानी से इस मूवी को देखने के लिए चले जाएंगे. टिकट के पैसे इकट्ठा कर लीजिए, बिल्कुल सही वक्त पे ये मूवी रिलीज होती है क्योंकि तब तक सैलरी भी आ जाती है. 35-40 कतरे रियाल अगर खर्च करके आप एक मूवी देख पा रहे तो बढ़िया है. अगर आपके घर में 3-4 लोग हैं तो आसानी से आप जा सकते हैं. बच्चों के साथ मत जाना यार, जो बच्चे 3-4 साल के लेकर जाते हैं ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है भाई ऐसे लोगों पर. अरे क्यों आए यार, उनको नहीं समझ में आ रहा है कुछ. अरे घर पे रह लो ना भाई, किसी के घर छोड़ के बच्चों को तब आ जाओ मूवी देखने. लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं, कोई कोई कोई

0: हैं इस मूवी के बारे में, जिसका नाम है स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे.
1: हाय, माय नेम इज पीटर पार्कर. I have something to tell you that's gonna sound crazy. But it's the truth.
2: You're the Spider-Man.
3: I can't tell anybody about this. Gotta keep it a secret.
2: Okay.
3: Thank you.
0: ये ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी है जो बहुत ज़्यादा यू नो हाइप पर चल रही है. हर जगह इसका प्रीमियर हुआ है ना, उसके अलावा प्रेस टूर में इसकी क्लिप्स भी दिखाई गई. बहुत लोगों ने, क्रिटिक्स ने तभी इसको अच्छी खासी रेटिंग्स कह ले तो दे दी, या कहें क्रिटिक्स ने इसकी तारीफ की पुल जो है वो बांध दी. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं FM 107 के इस शो यानी कि रिव्यू ऑफ द वीक में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में. और सबसे पहले अगर हम बात करें इस फिल्म के मूड के बारे में, तो इस फिल्म का मूड शुरू से आखिर तक बहुत ज़्यादा गमगीन, सीरियस और बिल्कुल डार्क है, जो कि पुरानी फिल्मों से बहुत अलग लगता है. जब आप फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल में बैठते हैं, तब आपको एक ऐसा दबाव एहसास होता है इस मूवी को देखते हुए जो पीटर पार्कर के दिमाग और दिल पर चल रहा है. तो ऐसे में आपको लगता है कि यार ये फिल्म शुरुआत में ही इतनी तगड़ी बना दी है, और आपको शुरुआत से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी लगेगा और आप पीटर पार्कर से कनेक्ट कर पाएंगे. पीटर पार्कर के दिमाग और दिल में बहुत कुछ चल रहा है, ये आप मूवी में देखेंगे, शुरुआती वक्त में देखेंगे. अब उसके पास कोई दोस्त या सहारा भी नहीं है. हर एक फ्रेम में एक अजीब सन्नाटा और तन्हाई साफ झलकती है इस मूवी में शुरुआत में ही, जो ऑडियंस को अंदर से हिला कर रख देती है. इस फिल्म में कोई हंसी मजाक या हल्ला फुल्ला हरकतें नहीं है ज़बरदस्ती की, है ना, वो माहौल देखने को नहीं मिलता है. बल्कि एक टूटे हुए इंसान के दर्द, उसके वल्नरेबिलिटी, इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है और बहुत ही रॉ लगती भी है ऑडियंस को. अगर हम इस मूवी के हाइप की बात करें तो मार्केट में इसका क्रेज पूरी दुनिया में एक तूफान की तरह चल रहा है. प्रेस टूर से ही इसका बहुत ज़्यादा नाम हो गया था, और जब से लोगों को पता चला है कि ये मूवी नो वे होम के मेमोरी वाइप इवेंट के बाद पीटर पार्कर की बिल्कुल अकेली जिंदगी को दिखाएगी, तब से हर फैन इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहा था.
1: वी यूज्ड टू नो ईच अदर. We were together. But something bad was gonna happen.
0: मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के फेज 6 को शुरू करने वाली इस फिल्म ने एडवांस टिकट बुकिंग में ही सारे पुराने रिकॉर्ड्स पीछे छोड़ दिए हैं, और सोशल मीडिया पे हर तरफ सिर्फ इसी के चर्चे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं. मेरी तरफ से इस फिल्म की कमाल या इस फिल्म के सिनेमेटिक एक्सपीरियंस को देखते हुए, इवन ट्रेलर को देखते हुए, मैं कह दूं भाई इसको तो मैं 4.5 दे दूंगा 5 में से. और क्योंकि ये मूवी बगैर किसी फालतू मल्टीवर्स के तमाशे के सिर्फ एक कैरेक्टर की असली कहानी पर फोकस करती है जो दिल को छू लेती है. इस फिल्म का हर सीन जस्टिफाइड लगता भी है, और ये फैंस को एक ऐसी इमोशनल राइड पर ले जाती है जहां हर कोई खुद को पीटर पार्कर के दुख से, दर्द से, सैडनेस से, पीड़ा से जोड़ पाता है. और ये फिल्म की सबसे जरूरी चीज भी होती है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होना चाहिए कि कैरेक्टर से अपन कनेक्ट तो कर पाए उस तरह से. लेकिन अब तो हमने मूड के बारे में बात कर ली, मूवी के हाइप के बारे में बात कर ली, स्टार रेटिंग के बारे में बात कर ली. अब जरा शुरू करते हैं फन फैक्ट से. अब नेक्स्ट सेगमेंट में, यानी कि अब हम बात करेंगे फन फैक्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे डायरेक्टर का विजन क्या रहा इस मूवी को बनाते हुए, फिल्मिंग लोकेशन क्या रही, एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, सिनेमाटोग्राफी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बगैर साउंड के फिल्म अधूरी है क्योंकि हर फिल्म चार्ली चैपलिन थोड़ी होती है. उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में, और फिर डिस्कशन होगा परफॉर्मेंस को लेकर कि क्या इतनी उम्दा परफॉर्मेंस दी है कि ये मूवी वर्थ इट है पैसे लगाने के लिए, और फिर क्रिटिक्स का क्या कहना है, एंड देन फाइनल हम वर्डिक्ट के बारे में भी बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले प्रोडक्शन को लेकर क्या फन फैक्ट्स रहे इस मूवी की. प्रोडक्शन के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प फन फैक्ट्स हैं जो हर फैन को हैरान कर देंगे और फिल्म की मेहनत को जाहिर भी करेंगे. पहला जो फन फैक्ट है वो ये है कि इस फ्रेंचाइजी के पूरे विजुअल लुक और पुराने स्टाइल्स को बदलने के लिए डायरेक्टर जॉन वॉट्स की जगह अब डेस्टिन डेनियल क्रिटन ने डायरेक्शन का पूरा जिम्मा अपने कंधों पर, अपने हाथों पर लिया, जिससे फिल्म को एक नया इंडी ड्रामा फील मिला.

0: you're gonna forget who I am.
1: What?
0: What are you talking about?
1: I'm gonna come and find you. And I'll explain everything.
0: You better. I love you.
2: दूसरा जो फैक्ट है वो क्रिटिकल है. क्रिटिकल प्रोडक्शन फैक्ट ये है कि मार्वल के प्रोड्यूसर्स ने शुरू से ही ये टारगेट सेट कर रखा था टॉम हॉलैंड को इस बार किसी एडवांस्ड टेक सूट या टोनी स्टार्क के पुराने गैजेट के बगैर एक आम स्ट्रीट लेवल हीरो की तरह लड़ते हुए दिखाया जाए ताकि उनका स्ट्रगल रियल भी लगे. क्योंकि ऑब्वियसली जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा सैड है, बहुत अकेला है, तो अकेला आदमी बहुत ज्यादा ताकत से भरा हुआ, पावरफुल, एनर्जेटिक नहीं होगा. तो ये चीज का भी बड़े मतलब छोटी छोटी डिटेल्स का भी एमसीयू ने खास ख्याल रखा है. एक और मजेदार फैक्ट ये है कि कास्टिंग के वक्त ही जॉन बर्थल का फ्रैंक कासल यानी पनिशर और मार्क रुफालो का ब्रूस बैनर यानी हल्क का नाम सीक्रेटली लॉक कर दिया गया था ताकि उन्हें कैरेक्टर से मूवी के डार्क थीम को मजीद बूस्ट दिया जा सके उनके कैरेक्टर से. एक और फैक्ट ये कि लीक्स के बारे में है. लीक्स और स्पॉयलर्स से बचने के लिए पूरी फिल्म की शूटिंग बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के साथ अगस्त से दिसंबर 2025 के दरमियान एक जबरदस्त ही या कहें नहायत ही खुफिया स्केड्यूल्ड में मुकम्मल की गई थी. एक और फैक्ट ये है कि इस फिल्म की पूरी स्टोरी लाइन और इसका टाइटल दरअसल मार्वल की मशहूर 2008 की कॉमिक बुक ब्रांड न्यू डे से मेजर कंपोनेंट्स लेकर अडेप्ट किया गया है ताकि कैरेक्टर को ग्राउंड लेवल से एक नई पहचान दी जा सके जो बिल्कुल फ्रेश और अलग है. कई ऐसे लोग हैं जो असल में इस मूवी से सिर्फ इसलिए नहीं कनेक्ट करेंगे कि उसमें पीटर पार्कर है, इसलिए भी कनेक्ट करेंगे क्योंकि 2008 की ब्रांड न्यू डे कॉमिक बहुत फेमस भी थी और ऑब्वियसली ये जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं ये कॉमिक्स के ही हैं और एक ज़माने में अठन्नी के एक एक रुपए के ये कॉमिक बुक्स जो हैं वो हमें मिला करती थी. क्या ही दिन थे यार, उनको पढ़ने में भी मज़ा आता था क्योंकि आप इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाते थे. और साबू के बाद अगर किसी कॉमिक ने सबसे ज़्यादा छोटी जनरेशन को, छोटे बच्चों को लुभाया है तो वो इन सुपर पावर वाले इंसानों ने ही लुभाया है. वेल, अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विजन के बारे में जो डायरेक्टर का विजन था. डायरेक्टर डेस्टिन डेनियल क्रेटन है जो कि आपको पता है. उनका आसान लफ्जों में अगर विजन कहें तो ये है कि वो इस बार एक आम सुपर हीरो मूवी नहीं बल्कि एक ऐसी इंसानी कहानी बनाना चाहते थे जहां जज्बात को सबसे ऊपर रखा जाए. उनका साफ एक मकसद था कि दर्शकों को, ऑडियंस को सिर्फ एक्शन या तबाही ना दिखाई जाए बल्कि पीटर पार्कर के दिमाग में चल रहे या दिमागी ट्रॉमा और उसके अंदर के दुख को भी बहुत ही गहराई से स्क्रीन पर लाया जाए ताकि हर इंसान उसकी तकलीफ को महसूस करे. क्रेटन जो डायरेक्टर हैं वो चाहते थे लोग देखें कि जब एक मशहूर हीरो अपना सब कुछ खो देता है तो वो बिना किसी मदद के खुद को दोबारा कैसे खड़ा करता है. और ये एक मैसेज भी है क्योंकि हर बार बॉलीवुड तो अलग है, हॉलीवुड एक मैसेज के साथ आता है, वो सोसाइटी के मैसेज के साथ आता है, वो वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में भी कभी कभार एक छोटा सा मैसेज छोड़ देता है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर ये काम करता है. और ये मैसेज के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया और ये साफ दिखता भी है इस मूवी में और कैसे जब एक मेन लीड को आप यानी कि ऑडियंस खुद कनेक्ट करता है और जब मेन लीड कुछ करके दिखाता है तो ऑडियंस भी ये समझती है, उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि अपन भी कुछ कर सकते हैं, हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ भी बुरा हो जाए हम भी कुछ कर सकते हैं. खैर मूवी पर आते हैं. जब दोबारा से बेहतर इंसान बनता है या बेहतर एक पावरफुल स्पाइडरमैन बन के उभरता है न्यूयॉर्क के खतरनाक गलियों से, कैसे सर्वाइव करता है वहां पर ये दिखाता है. और उन्होंने यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने सभी फाइट सीन्स को डिजाइन करते हुए बहुत ही रॉ वॉयलेंस और हाथ से लड़ने वाले फिजिकल कॉम्बैट का भी यूज किया है ताकि हीरोज की वल्नरेबिलिटी भी साफ नजर आए. उनका डायरेक्शनल इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर था कि स्केल को छोटा रखा जाए और साइकोलॉजिकल प्रेशर को फ्रंट लाइन पर लाया जाए ताकि लोग स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे छुपे असली पीटर पार्कर से कनेक्ट हो सके.
0: Like a coffee. Is there anything else?
3: Maybe I'll never read this to you.
0: No.
3: Maybe I'm just writing this for me. And maybe that's my responsibility, to live alone with the truth.
2: उन्होंने मल्टीवर्स

के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को साइड पर रखा कि बस बहुत हो गया भाई, और फिर एक आम लड़के की इंडिपेंडेंट सर्वाइवल की जंग को दुश्मन बनाया जो इस फ्रेंचाइजी को एक बहुत ही बेहतरीन और नई पहचान देता है। उनका ये अलग और बेहतरीन विजन ही इस फिल्म को पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे यूनिक और एक क्लासिक स्टैंड अलोन मास्टरपीस बनाता है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिल्मिंग लोकेशन। इस मूवी की फिल्मिंग लोकेशन क्या रही? दोस्तों एक हाई स्टेक मूवी है और इस हाई स्टेक मूवी का रियल और ऑथेंटिक स्ट्रीट लेवल सीन्स की मेजर प्रोडक्शन शूटिंग ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड के बहुत ही क्राउडेड और पुराने अर्बन लैंडस्केप्स पर कंट्रोल की गई हैं जो न्यूयॉर्क की ग्रिटी मूड को टेक्सचर वाइज बहुत सपोर्ट करती है। ऑब्वियसली डायरेक्टर ने ग्लासगो को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ की

0: रियल लुक देती है। इसके अलावा बहुत सारे अहम चेजिंग सीक्वेंसेस और इंटेंस एक्शन पार्ट्स भी इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जो पूरे इंग्लैंड के अलग अलग रियल लोकेशन पर लाइव एनवायरनमेंट के अंदर बिना बड़े आर्टिफिशियल सेट्स के शूट किया गया था, जो फिल्म में रियलिज्म का एक नया लेवल भी जोड़ता है। बाकी का जो भी जितना भी हाईली कॉम्प्लेक्स ग्रीन स्क्रीन वर्क है, डिफिकल्ट इंडोर फाइट्स जैसे हैवी स्पेशल इफेक्ट्स का काम था, वो यूनाइटेड किंगडम के बहुत से अलग अलग स्टूडियोज़ में हुआ है, जैसे मशहूर पाइनवुड स्टूडियोज़ के बड़े साउंड स्टेजेस पर मुकम्मल भी किया गया है, ताकि बाहर ये सब शूट ना करना पड़े, क्योंकि कुछ कुछ सीन तो ऐसे होते भी हैं जो इंडोर ही शूट हो पाते हैं ग्रीन स्क्रीन पर, ताकि टेक्निकल क्वालिटी में भी कोई कमी ना रहे। ये जो हैवी लोकेशन स्ट्रक्चरल प्लानिंग मूवी को एक अलग लुक भी देता है, ग्राउंडेड फील देने में भी पूरी तरह मदद करती है, जहां बैकग्राउंड्स हमेशा थोड़े डल मेटलिक और पुराने लगते हैं। हर एक सेट पीस न्यूयॉर्क की डायनेमिक स्ट्रीट वाइब्स को एग्जैक्ट ऑथेंटिक डेप्थ देता है, जिससे स्पाइडरमैन का वेब स्विंगिंग रियल फिजिकल लेआउट के अंदर बहुत ही टाइट और कन्विंसिंग फील होता है, जिसे देखकर ऑडियंस हैरान भी रह जाती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात कर लेंगे एक शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में, कि क्या है इस मूवी का प्लॉट, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट क्रिटिक्स का क्या कहना है, भाई आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है, डिस्कशन कर लेंगे परफॉर्मेंस पे कि परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है कि देखी जाए या फिर छोड़ दिया जाए। ठीक है, एक फिलहाल छोटा सा ब्रेक, FM 107 पे वापस कुछ ही देर में, दिल से देसी
1: Absolute cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से।

0: कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: Absolute Cinema।
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो चल रहा है रिव्यू ऑफ द वीक। बाकी अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में इस फिल्म ने सबको हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये तब्दीली सिर्फ लुक्स तक महदूद नहीं है बल्कि एक्टर्स की एक्टिंग और उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ महसूस भी होती है। सबसे पहले बात करते हैं टॉम हॉलैंड की, जिन्होंने इस रोल के लिए अपना पुराना चॉकलेटी बॉय वाला जो इमेज है ना, वो कंप्लीटली खत्म कर दिया है। अब उनको पूरा नहीं, जैसे अभी इवन आप एंड गेम में देख लो, इन्फिनिटी में देख लो, तो कैसे वो ऐसा बात करते हुए, चिल्लम चिल्ली करते हुए, हाई करते हुए और फनी वे में आपको पीटर पार्कर दिखेंगे, वो स्पाइडरमैन फनी दिखेगा। लेकिन अगर आप इस मूवी में देखेंगे वो पूरा उलट हो गया है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि यार एक यूनिकनेस होनी चाहिए, कि एक जिस कैरेक्टर को मैं जानता था जो फनी था वो सीरियस हो गया। अरे क्या हो गया, पहले तो अडेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन अगर सही एक्टिंग की हो तो फिर ऑडियंस ना अडेप्ट कर भी लेती है। और ये काम पीटर पार्कर ने, टॉम हॉलैंड ने करके दिखाया इस मूवी में। जब वो स्क्रीन पर आते हैं ना, तो कैसे कनेक्ट करना है लोगों से, ये बहुत ही अंदाज से उन्होंने किया है, बहुत ही लाजवाब तरीके से किया। उन्होंने इस रोल की डिमांड के मुताबिक अपना फिजिकल वेट भी काफी लूज किया है, जिसकी वजह से उनका जो चेहरा है वो बहुत ही ब्रोकन, फिजिकली वीक लगता है। उनकी आंखों में एक परमानेंट थकान साफ कैप्चर होती है, जो पहले कभी दिखी नहीं। उनके कैरेक्टर में हमेशा फन था, लेकिन वो फन इस बार नहीं दिखा। तो ऑडियंस के लिए सबसे पहली चीज थी चौंकना, है ये क्या हो गया इसको, फिर यहां से मूवी शुरू होती है। उसके अलावा दूसरी तरफ सैडी सिंह है, कंप्लीटली डार्क परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्मेशन इस मूवी का उनका सबसे बड़ा और अनएक्सपेक्टेड शॉकर एलिमेंट भी बनकर सामने आता है। सैडी जो दूसरी मेन लीड है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सैडी ने अपनी पुरानी मासूम लड़की वाली स्क्रीन इमेज को पूरी तरह तोड़कर एक पावरफुल, मिस्टीरियस और स्पाइन चिलिंग मेंटल मैनिपुलेटर एंटागनिस्ट का रूप जो है वो अपनाया, जो स्क्रीन पर बिल्कुल जबरदस्त है। उनकी प्रेजेंस स्क्रीन पर बिल्कुल लाजवाब है और वो डोमिनेट करती हुई नजर आई है। तो ये कभी कभार टॉम के लिए भी हो गया कि यार ये तो मुझसे ज्यादा बेहतरीन एक्टिंग कर रही है, तो इसलिए दोनों बहुत ही जबरदस्त लगते हैं, दोनों का काम जबरदस्त है, लाजवाब है। अच्छा, इन लोगों ने बहुत लंबे वक्त तक क्लासेस भी ली हैं एक्टिंग की। बाकी सैडी का जो फेशियल एक्सप्रेशन शिफ्ट है, डर पैदा करने वाली बॉडी लैंग्वेज जो उनकी है, वो इतनी टेरिफाइंग है कि वो हॉलैंड के कैरेक्टर पर इजिली डार्क शेडो कास्ट कर देती है। दोनों ही मेन जो एक्टर्स हैं, उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के साइकोलॉजिकल और फिजिकल डायनेमिक्स को इतने गहरे तरीके से चेंज किया कि जिससे स्क्रीन पर चलने वाला जो कन्फ्लिक्ट है वो आर्टिफिशियल लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सच में ये हो रहा है, वो आप कनेक्ट कर पाए।
4: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
3: जो थ्रेटनिंग और जो डीपली स्ट्रक्चरल एक इंटेंस परफॉर्मेंस होती है, हैवी एसेट बन जाती है ना, वो देखने को मिला है, और जिससे जो ऑडियंस है वो देखकर बहुत ज्यादा

कुछ भी हो जाएगी उनके काम से और कनेक्ट बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिनेमाटोग्राफी और साउंड के बारे में। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मूवी का जो साउंड है, जो सिनेमाटोग्राफी है, वो इस मूवी को और भी ज्यादा ऊपर पहुंचा देता है और यही वजह है कि इस मूवी को 5 में से 4.5 रेटिंग मिलती है। दोस्तों सिनेमाटोग्राफी और साउंड के डिपार्टमेंट में इस फिल्म ने एक बिल्कुल नया और अनोखा बेंचमार्क सेट किया है जो ऑडियंस को हैरत में डाल देता है। सिनेमाटोग्राफर हैं ब्रेट पॉलक। उन्होंने फिल्म के विजुअल्स को स्टैंडर्ड ब्राइट और कलरफुल एमसीयू स्टाइल से दूर रखकर काम किया और ज्यादा कंट्रास्टिव, टाइट और क्लास्ट्रोफोबिक पॉइंट ऑफ व्यू ट्रैकिंग कैमरे शॉट में लॉक किया है उन्होंने, जो फ्रेम्स को बहुत ऑथेंटिक बनाते हैं। उसके अलावा कैमरा हमेशा पीटर के इतने पास में रहता है, इतने करीब में रहता है चेहरे के, कि आप उसकी सांस लेने की रफ्तार को भी स्क्रीन पर आसानी से फील कर सकते हैं और हर एक शेडो ऑडियंस को तनाव का एहसास करवाता है। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आप ऐसा समझे कि आप कार में चल रहे हैं, आपको सिर्फ आपकी कैबिन की आवाज थोड़ी आती है, जो बगल से गुजर रही कार है उसके टायर की भी आवाज है, उसके हॉर्न की भी आवाज है। फिर कभी कभार जब कोई साइकिल दूर से गुजर रही होती है उसकी भी आवाज है, उनकी ट्रिंग ट्रिंग की आवाज है, किसी बाइक की आवाज है। तो छोटी छोटी डिटेलिंग आपके कार के कैबिन में आ रही होती है। लेकिन बॉलीवुड में अगर आप देखें या आम मूवीज में देखें जिसमें शॉर्ट डिटेलिंग नहीं रखी जाती है, उसमें सिर्फ कार के केबिन की आवाज, कार के चलने की आवाज, हॉर्न की आवाज और कार में ही बैठे लोग जो बात कर रहे हैं उनकी आवाज होती है। तो जब ये डिटेलिंग मिस हो जाती है ना, तो साउंड सिनेमा थोड़ा हल्का पड़ जाता है। लेकिन इस मूवी में बिल्कुल नहीं। सिनेमाटोग्राफर ब्रेट पॉलक ने और माइकल ने जबरदस्त काम करके दिखाया। कैमरा हमेशा पीटर पार्कर के बहुत करीब रहता है, सांस भी आपको एहसास होती है। म्यूजिक ब्लॉक की जो बात करें तो वेटरन जो कंपोजर हैं माइकल, उनका जो स्कोर लेआउट है वो कम्प्लीटली लाजवाब है। मतलब उस पर तो कोई शक भी नहीं है, रॉ और स्लो पेस्ड रखा गया है उनकी तरफ से। बाकी माइकल का बैकग्राउंड ट्रैक और ओवरऑल जो साउंड डिज़ाइन है वो ज़बरदस्त है। लो फ्रिक्वेंसी साउंडस्केप्स और मिनिमल स्ट्रिंग एलिमेंट्स का बेहतरीन यूज़ किया गया है, जो डार्क स्ट्रीट एक्शन को एक हैवी रियलिस्टिक डेंसिटी और सीरियस डेप्थ डिलीवर करता है। अल्टीमेट सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली जब आप मूवी देखेंगे तो एक एक डिटेल आपको समझ में आने लगेगी, अगर आप छोटी छोटी डिटेल देखते हैं। बाकी आप वो वाले अगर हैं, कई बार मैं ऐसे मूवी देखता हूँ कि बस मेरे को दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा मूवी देख रहा हूँ तो देखना दो, वो छोटी छोटी डिटेलिंग ना अपने आप कनेक्ट होती रहती है। बट क्रिटिक्स ऐसे देखते हैं कि हाँ मूवी में ये भी डिटेलिंग है, ओ किनारे वो भी है, अच्छा ये नई चीज़ है, अच्छा ये भी इसमें टीज कर दिया गया है अगली फिल्म को लेकर। तो क्रिटिक्स ऐसे देखते हैं, कभी कभार मैं भी देख लेता हूँ। बाकी हर एक ऑडियो क्यू जो सीन के मेंटल प्रेशर को डबल एम्पलीफाई भी करता है और वेब स्विंगिंग सेगमेंट्स में डायनेमिक विंड कट्स, बिल्डिंग के बीच होने वाला नेचुरल इको और रियलिस्टिक सिटी नॉइज ऑडियो, ये सारे विजुअल्स एक्सपीरियंस आपको लाजवाब लगेंगे, हाईली इमर्सिव और थ्रिलिंगली डीप जो है मूवी को बनाते हैं, सिनेमाटोग्राफी को बनाते हैं, सिनेमा को बनाते हैं। जब स्पाइडरमैन इमारतों के बीच से तेजी से गुजरता है तो साउंड डिजाइन की वजह से आपको सच में ऐसा लगता है कि आप उसके साथ हवा में मौजूद हैं और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी टेक्निकल कामयाबी है जो थिएटर्स में मजा दिलाती है। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में ऑडियंस इंतजार कर रही होती है, और ये है शॉर्ट छोटा सा स्पॉइलर फ्री प्लॉट कि मूवी तो हम देख लेंगे। भाई साहब ये बताइए मूवी की कहानी है क्या, हवा हवा में बात कर लेते हैं मूवी की कहानी क्या है। शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में अगर हम बात करें तो कहानी नो वे होम के उन बड़े और दर्दनाक सेक्रीफाइस इवेंट के एग्जैक्ट 4 साल बाद शुरू होती है, जब सब लोग पीटर पार्कर को भूल चुके हैं। अब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर कोई भी सिंगल इंसान उसके ट्रू एग्जिस्टेंस या उसके पास्ट को नहीं जानता और वो बिना किसी फैमिली, स्टार टेक या सपोर्ट सिस्टम के एक एब्सोल्युटली बेसिक और छोटी सी अपार्टमेंट में जिंदगी अपनी गुजार रहा है। स्पाइडी ड्यूटीज उसकी लाइफ में फुल टाइम चल रही हैं, पर मैसिव ऑनगोइंग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और सीवियर मेंटल एग्जॉशन की वजह से पीटर की फिजिकल बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा बदलाव आने लगता है। उसकी बायोलॉजिकल पावर्स के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड और टेरिफाइंग म्यूटेशन ट्रिगर हो जाता है जो उसकी खुद की जान को बड़े खतरे में डाल देता है और उसे बिल्कुल हेल्पलेस कर देता है। सिचुएशन तब कम्प्लीटली आउट ऑफ हैंड हो जाती है जब एक एक्सट्रीमली डेंजरस और इनविजिबल क्रिमिनल पार न्यूयॉर्क के स्ट्रक्चरल फैब्रिक पर डायरेक्टली स्ट्राइक करती है,
जिसे नॉर्मल मींस

कॉम्पैक्ट करना नॉर्मल हीरोज के लिए भी एंटायरली इम्पॉसिबल हो जाता है। पीटर के बिना किसी एडवांस्ड रिसोर्सेज, बिना किसी टेक सूट और बिना किसी दोस्त की मदद के इस भयानक और दिमागी खेल खेलने वाले दुश्मन से अकेले ही लड़ना पड़ता है पीटर को। कहानी में हर मोड़ पर यह देखना बड़ा मजेदार दिलचस्प होता है कि कैसे एक अकेला लड़का अपनी गर्मियों की रातों में बिना सोए पूरे शहर को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, जबकि शहर को पता भी नहीं कि एक उनका रखवाला कौन है, ये कौन बंदा है जो उनके लिए लड़ रहा है। और अब इसी में आगे बढ़ते हुए परफॉर्मेंस पर भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। परफॉर्मेंस के ऊपर अगर डिस्कशन किया जाए तो टॉम हॉलैंड ने अपने पूरे करियर का एब्सोल्यूट फाइनेस्ट और डीपेस्ट परफॉर्मेंस इस फिल्म में डिलीवर किया है, जो उनकी एक्टिंग लिमिट्स को नए लेवल पर ले जाता है। उनका हाईली फ्रेगमेंटेड एक्टिंग पोस्चर, उनकी आंखों का दर्द और उनका टूटा हुआ बिहेवियर देखकर स्ट्रक्चरल मार्वल फैंस थिएटर में इमोशनल ब्रेकडाउन्स फेस करने पर मजबूर हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब आप ये इस मूवी के ट्रेलर भी देखेंगे ना तो उसमें फर्क दिखाया गया कि पहले वाला पार्कर कैसे है। बार बार वो दिखाना जरूरी होता है ना कि ये जो इस मूवी में चेहरा है पार्कर का, वो टूटा हुआ थोड़ा दुबला लड़का है, थोड़ा परेशान हाल है, थोड़े से बाल बड़े हैं, लेकिन पहले वाला पार्कर देखो कितना यार फनी जॉली नेचर था। तो वो फर्क ट्रेलर में भी ऑब्वियसली दिखाया गया है क्योंकि उनका काम सच में दिल को छू लेने वाला है। दूसरी तरफ जॉन बर्थल का फ्रैंक कासल यानी कि पनिशर, उनके एग्जैक्ट कंट्रास्ट में एक रूथलेस वायलेंट और हाई ऑक्टेन रॉ पावर स्क्रीन पर इंट्रोड्यूस करता है, जिससे दोनों के बीच का फिजिकल इंटरेक्शन कंप्लीटली इलेक्ट्रिक हो जाता है। दोनों लेजेंड्स फ्रेम में जब भी आमने सामने आते हैं तो स्क्रीन प्ले की टेक्स्ट वैल्यू और पूरे सीन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा शूट अप हो जाती है और उनकी आपसी बहस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाती है। इसके साथ ही जिंदा का शॉर्ट पर हाईली टेक्टिकल और इमोशनल स्क्रीन प्रेजेंस बिना किसी पुरानी मेमोरी कनेक्शन के भी उनके और पीटर के बीच के डायनेमिक रिलेशनशिप को काफी हैवी प्योर और कंप्लीटली हर्ट ब्रेकिंग एलिमेंट बनाकर मेंटेन करता है। जब भी एमजे स्क्रीन पर आती हैं तो पीटर को पहचान नहीं पाती। हाँ ये है कि टॉम हॉलैंड के फेस पर जो एक्सप्रेशन आते हैं वो सच में एक्टिंग का एक अनमैचेबल लेवल पेश करते हैं जो हर किसी को रोने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब रोने का एहसास हो जाता है कि दिल का यार ये तो कनेक्शन था इन दोनों में। फिल्म का आखिरी संघर्ष और पीटर पार्कर का अकेले बिना किसी एडवांस टाक टक के अपनी जंग खुद जीतना, ये साफ प्रूफ करता है कि फ्रेंचाइजी को वापस सही रास्ते पर लाने के लिए सिर्फ एक मजबूत इमोशनल कोर और बेहतरीन स्क्रीन प्ले की ही जरूरत होती है। अगर आप स्टैंडर्ड मार्वल एक्शन के साथ साथ एक सच्ची दर्द भरी और एक्टिंग हैवी आसान कहानी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक एब्सोल्यूट मस्ट वॉच मास्टर क्लास है, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों ओवरऑल बात यही है कि इस मूवी को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जिसका सिनेमा, जिसका साउंड, जिसकी एक्टिंग आपको लाजवाब लगने वाली है। और वैसे भी एमसीयू की बात है तो ये तो बस उन लोगों के लिए है, उन 10% लोगों के लिए है जो मूवी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि आज का रिव्यू ऑफ द वीक आमतौर पर 90% लोगों ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा कि यार मूवी तो मैं देखने जाऊँगा ही जाऊँगा। रिव्यू आए नहीं आए, अच्छा है बुरा है खराब है वो बात की बात है, अपन तो स्पाइडरमैन के फैन है तो अपन तो जाएंगे ही जाएंगे। और फिर 90% इसलिए भी क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो आप कहें ना कहें उन्होंने कभी भी ना देखी हो फिर भी वो स्पाइडरमैन के फैन। तो अगर ये बच्चे जो 10 साल के 12 साल के हो गए जिनको स्पाइडरमैन मूवी से मोहब्बत प्यार होने लग गया 15 17 18 साल के, तो ये तो मूवी देखने जाने ही वाले हैं, तो आप भी इसमें शामिल हो लीजिए। आज का रिव्यू ऑफ द वीक स्पेसिफिकली उन 10% को कन्विंस करने के लिए है जो मूवीज को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, बस अगर आ गई तो देख लिया थोड़ा बहुत। लेकिन असली मूवीज क्या होती हैं, असली मूवी क्या होती है, सिनेमाटोग्राफी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, डायरेक्टर का विजन क्या है, ये समझाने के बाद आपको इस मूवी को इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि ये कुछ अलग आपको एक्सपीरियंस कराती है, एक्सपीरियंस दिलाती है। सो ऑब्वियसली मतलब ये तो अगर आपने नहीं देखी तो आप 35 रियाल भले बचा ले 40 रियाल, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ यूनिक देखते हैं, आप कुछ नया देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार इस तरफ अपन कभी लौटे क्यों नहीं, इस तरफ अपन कभी आए क्यों नहीं, वो 2000 की मूवीज या अपने बचपन में जो मूवीज देख ली उसके बाद हमने मूवी देखी क्यों नहीं। अगर आप मूवी के फैन नहीं भी हैं तो भी इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए मूवी के बारे में बात करते हुए, क्योंकि वो मूवी भी होगी लाजवाब अगर

0: मूवी ने इतना कुछ करके दिखाया जितना एमसीयू के इस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने करके दिखाया है, तो ऑब्वियसली उस मूवी के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आज बहुत बातें हो गई क्योंकि ये मूवी ने तो यू नो धमाल मचाया हुआ है हर तरफ, और स्पाइडरमैन जिसको 4.5 रेटिंग मिल गई है 5 में से, हमने फन फैक्ट के बारे में बात करा, डायरेक्टर के विजन के बारे में, फिल्मिंग लोकेशन, एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन, सिनेमाटोग्राफी से लेकर एक स्पॉइलर फ्री प्लॉट, और फिर क्रिटिक्स के साथ साथ वर्डिक्ट के बारे में भी बात किया। सुनते रहे एफएम 107, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। दिल से तैसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to the show called Qatar Business 360, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कतर के डायनामिक बिजनेस लैंडस्केप की इंस्पायरिंग स्टोरीज, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के सफर और उनकी वो बातें जो आपको इंस्पायर करे और उन इंडस्ट्रीज के इनसाइट्स जो मुस्तकबिल को शेप कर रहे हैं। आज का हमारा फोकस है एक बहुत ही अहम सेक्टर पर और ये है बेवरेज इंडस्ट्री, खास तौर पर वाटर बिजनेस, जो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक जरूर

0: And now coming to the closing question, finally, what advice would you give to the aspiring entrepreneurs and of course the marketers looking to make an impact here in Qatar?
1: Yeah, I think at the heart of it is you need to solve a problem, and you need to be a serious problem. You really need to attack a problem, and don't get so hyped up about all of this AI and all of the, you know, things that are happening around us. I think that look at a serious problem in society, in our culture, in our technology, and really and try to solve it. I think the most successful businesses are the ones that have that really address like a genuine need, and they create real value, like SkyDrop has. So I think that if an entrepreneur does that, they're going to be successful. So, and just leave the hype out, you know, forget about all these buzzwords and just try to solve a problem.
0: Wow, that's such a meaningful advice. Really, really, truly appreciable. Thank you so much, Ms. Rana, for joining us on Qatar Business 360. And I believe it's truly a pleasure having you with us and gaining such valuable insights about the industry, sustainability and the brand building in Qatar. Thank you once again.
1: Thank you.
0: वेल दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में कतर बिजनेस 360 में हमने बहुत ही इंसाइटफुल और इंस्पायरिंग बातचीत की. सीईओ थी हमारे साथ स्काई ड्रॉप सस्टेनेबल वाटर टेक्नोलॉजी की मिस राना. आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, सिखाई, बताया कि किस तरह से बेवरेज इंडस्ट्री काम करती है, कैसे सस्टेनेबल वाटर इंडस्ट्री में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पहचान बनाई जा सकती है. मैं कह सकती हूँ कि यहाँ इंटरव्यू करते करते मैं भी एटलीस्ट 5% ग्रो कर गई हूँ. ये इंटरव्यू ना सिर्फ एक बिजनेस डिस्कशन था बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था, जहां इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और ब्रांड बिल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो है वो बन के सामने आते हैं. इंटरव्यू का आगाज जब हमने किया तब हमने उनसे उनकी कंपनी के बारे में जानना चाहा कि कैसे उन्होंने शुरुआत की. उन्होंने बताया कि उनका मिशन सिर्फ एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना नहीं था बल्कि एक ऐसे मीनिंगफुल इनिशिएटिव क्रिएट करना था जो लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए. उनकी इंस्पिरेशन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और हाई क्वालिटी सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करनी थी. ये उनका विजन ही था जिसने उन्हें कॉम्पिटिटिव मार्केट में आगे बढ़ने में मदद की. फिर हमने और भी चीजें जानने की कोशिश की कि कतर जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में उनका ब्रांड कैसे स्टैंड आउट करता है. तो आपने हमें बताया कि क्वालिटी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर आता है ट्रस्ट और फिर इनोवेशन. ये सारी चीजें इनके ब्रांड के स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स हैं. उनका फोकस सिर्फ वाटर सप्लाई पर नहीं बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल ब्रांड क्रिएट करना है जो हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है. जी हाँ, सस्टेनेबिलिटी के हवाले से आपने बताया कि उनकी कंपनी जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशंस पर काम कर रही है और स्काई ड्रॉप सस्टेनेबल जो है वर्ड का इस्तेमाल ऑलरेडी है उनके नाम में. तो ये क्लियर कट है कि बहुत सारे फ्रेंडली सॉल्यूशंस पर काम किया जा रहा है जिससे कि रिस्पॉन्सिबल वाटर सोर्सिंग और वेस्ट रिडक्शन हो. आपने हमें ये भी बताया और इस बात पर भी एम्फसाइज किया कि आज के कंज्यूमर्स एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं, इसलिए ब्रांड को भी रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी हो जाता है. वहीं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करते हुए हमें पता चला कि कतर का मार्केट जो है वो एजुकेटेड और क्वालिटी कॉन्शियस है. लोग अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसकी वैल्यू, पैकेजिंग और इम्पैक्ट पर भी फोकस करते हैं. इसी वजह से उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी मॉडर्न और कस्टमर सेंट्रिक है. वहीं इनोवेशन के रोल पर आपने हाईलाइट किया कि हर सक्सेसफुल ब्रांड के लिए कॉन्स्टेंट इनोवेशन बड़ा जरूरी है. ये वो फैक्टर है जो ब्रांड को रेलेवेंट और कॉम्पिटिटिव रखता है, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या फिर कस्टमर एक्सपीरियंस. इनोवेशन उनकी स्ट्रेटजी का कोर हिस्सा है. वहीं हर बिजनेस में चैलेंजेस तो आते ही हैं. चैलेंजेस के बारे में आपने हमें बताया और शेयर किया कि ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब मार्केट सैचुरेटेड हो. लेकिन कंसिस्टेंसी, स्मार्ट मार्केटिंग और स्ट्रॉन्ग विजन की वजह से उन्होंने अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश की और स्ट्रॉन्ग बनाई. आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारे साथ शेयर की कि उनका ब्रांड सिर्फ वाटर नहीं है, प्यास बुझाने का काम नहीं करता, इट्स अ लाइफस्टाइल चॉइस. उनका एम है कि लोग उनके प्रोडक्ट को हेल्थ अवेयरनेस और सस्टेनेबिलिटी के साथ एसोसिएट करें. वहीं पर मार्केट ट्रेंड्स पर बात करते हुए उन्होंने हमें बताया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ब्रांड स्टोरी टेलिंग को हाईलाइट करना आज के टाइम में जरूरी है. उन्होंने बताया कि मॉडर्न मार्केटिंग में ऑथेंटिसिटी और इनकरेजमेंट और एंगेजमेंट हर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है. वहीं अगर फ्यूचर प्लान्स के हवाले से कुछ जानना चाहा तो हमें समझ में आगे बहुत सारे एक्साइटिंग एक्सपेंशंस हैं. कुछ न्यू प्रोडक्ट इनोवेशंस का भी हमें इशारा मिला जो कि ब्रांड को और भी ग्रो करेगा. आखिर में एक अच्छी सी एडवाइस जो हमें मिल सकती थी वो यही कि सबसे पहले अपने पैशन पर फोकस कीजिए, लाइफ में कंसिस्टेंट रहिए और चैलेंजेस से कभी भी नहीं घबराना है. तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि ये इंटरव्यू एक क्लियर मैसेज देता है. जी हाँ, कि अगर विजन स्ट्रांग हो, स्ट्रैटेजी क्लियर हो और इंटेंशन पॉजिटिव हो तो बिजनेस सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं बनता है बल्कि सोसाइटी में बहुत ही पॉजिटिव और मीनिंगफुल चेंज भी लेकर आता है. दोस्तों, मैं कह सकती हूँ कि ये इंटरव्यू जो है वो सिर्फ बिजनेस या फिर वाटर इंडस्ट्री तक महदूद नहीं था बल्कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी देता है कि कैसे लीडरशिप और विजन मिलकर साथ में सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं. वहीं पर हमें हमारी सीईओ से पता चला जिन्होंने अपने बारे में बताते हुए कहा, बार बार इस बात पर जोर भी दिया कि आज के दौर में कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि एनवायरमेंट और कम्युनिटी के लिए जिम्मेदारी उठानी चाहिए. उनकी बातों से ये भी सामने आता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग सिर्फ मार्केटिंग से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से, ट्रस्ट से और रियल वैल्यू क्रिएट करने से होती है. उनकी अप्रोच एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक सिंपल प्रोडक्ट को इनोवेटिव और इम्पैक्टफुल बनाकर मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल की जा सकती है. वेल, ओवरऑल ये इंटरव्यू एक इंस्पायरिंग रिमाइंडर था. एक डेडिकेशन, क्रिएटिविटी और क्लियर पर्पस के साथ जब इंसान मार्केट में कदम रखता है तो वो अपने फुटप्रिंट्स जो है वो आसानी से छोड़ पाता है. और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कतर जैसे फास्ट ग्रोइंग और कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो यस, आपको जो है वो मार्केटिंग के साथ साथ मॉरल वैल्यूज का भी ख्याल रखना है. वेल, बहुत ही कमाल का इंस्पायरिंग इंटरव्यू रहा हमारी गेस्ट के साथ एंड वाज रियली रियली अ वेरी इंस्पायरिंग मोमेंट इंडीड. कि बहुत सारी चीज़ें कई बार हम जो है वो ओवरलुक कर जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं और हम सबको ये लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करना इज नॉट एन ईजी थिंग. लेकिन हाँ, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड पर छोटी सी शुरुआत तो करनी होती है. व्हाट आई फेल्ट, हर जर्नी इज नॉट ओनली inspiring but also a powerful reminder that businesses today can create both economic value and positive social impact. Well, I truly wish her continued success and really look forward to seeing her brand grow even further. Well, to my viewers, stay tuned for more inspiring stories and business insights. Of course, if you have interest in business, only on Qatar Business 360. Until next time, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी. हम दोनों को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज.
2: प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
3: आज नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107.
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
4: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, दी अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
5: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi.
6: Number one hits music station.
7: Anytime, anywhere.
8: Yes, anytime, anywhere.
7: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
1: टॉप 10 काउंटडाउन।
2: हाँ भाई, एफएम 107 सुनने वाले जवानों, अटेंशन, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड वेलकम टू टॉप 10 दिस वीक। इस हफ्ते भी बहुत कर्री लिस्ट बनाई है हमने, एकदम कर्री लिस्ट भाई साहब। इतनी रिसर्च तो हमने अगर असल जिंदगी में कर ली होती तो चांद पे पहुंचने के 2-3 और रास्ते निकाल लेते। पर गानों की लिस्ट तैयार है, बहुत शानदार लिस्ट है। इस बार भी कुछ ऐसे गाने हैं जो आए मार्केट में, आए बिल्कुल, आई एग्री, पर वो लिस्ट में जगह नहीं बना पाए क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी बहुत सॉलिड है। मगर फिर भी आप जो है जो सुन रहे हैं, आप भी बता सकते हैं कोई ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि लिस्ट में आना चाहिए और नहीं आया, प्लीज बताइएगा। कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, क्या रे तुमने तो ये वाला गाना नहीं डाला। वो क्या है कि कई मरतबा हमसे भी गलती हो जाती है, मैं कोई दुआ के 12 हाथ थोड़ी हूँ, तो कई मरतबा मिस हो जाते हैं गाने। मगर फिलहाल ये लिस्ट थोड़ी सी रिफ्रेश करी है और ये एकदम फ्रेश लिस्ट आपके सामने है। जो नए नए गाने इस हफ्ते आए हैं वो भी इसमें इंशाल्लाह आने वाले लिस्ट में अपडेट मिलेंगे आपको, खूब मजा आएंगे आपको। ठीक है जी, मैं आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आपको इन्वाइट करना चाह रहा हूँ भाई, हमारे उस पे क्या कहते हैं, उस पे फेसबुक पे और इंस्टा पे और टिकटॉक पे। सो FM 107 कतर, FM 107 कतर इस नाम से हर जगह मौजूद है, प्लीज हमसे जुड़िए। लिस्ट शुरू करते हैं सबसे पहले 10, 9, 8 और उसके बाद हम इस सांप सीढ़ी की सीढ़ी पे चढ़ते चले जाएंगे। कोई सांप नहीं है, सिर्फ सीढ़ी सीढ़ी। सो 10, 9, 8 तो शुरू करते हैं गाना नंबर 10 से। तो ये गाना जो है फसल के 9 से 10 पे आ गया है। इसे पता नहीं कब तक मैं रख पाऊंगा लिस्ट में, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसा एम्प्लॉय हो गया कि मैं उसे बार बार कह रहा हूँ, देखो ज्यादा

दिन मैं तुम्हें रख नहीं पाऊंगा, मुझे तुम्हें रिलीज करना ही पड़ेगा। तो अभी 10 पे आ गया 9 से, पता नहीं कि अगले हफ्ते ही लिस्ट में होगा नहीं होगा। फिलहाल इट इज एट नंबर 10, वेलकम टू जंगल का ये गाना, क्योंकि इसका म्यूजिक थोड़ा पेपी है, मैं क्या करूं। हालांकि गाना रीमेक है, 2.0 है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ऊंचा लंबा कद अभी भी लिस्ट में बना हुआ है, गाना नंबर 10। दो तीन रीजन है इसके 10 पे बने रहने की, जो वजह है उसमें से एक वजह है कि गाना थोड़ा पैपी है, बढ़िया म्यूजिक है, नॉस्टैल्जिया है, वापिस अक्षय कुमार हैं, तो ये सब की वजह से इसको यूँ समझ लीजिए कि एफर्ट के मैंने नंबर दे दिए हैं। तो अभी इस बार मुझे लगता है कि लिस्ट में शामिल रहेगा, अगले हफ्ते की कोई गारंटी नहीं है। तो ऊंचा लंबा कद दूजा सोनी नी तो हद अभी भी है लिस्ट पे एट नंबर 10। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला गाना जो नंबर 9 पे आ चुका है, इस गाने को मैं लिस्ट से निकालना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि इसका भी दिन आ रहे हैं, पर गाना जब भी अच्छा है। ये गाना लिस्ट में इसलिए नहीं है कि बस मुझे कोई गाना रखना था रख दिया, नहीं, वजह है इसकी बड़ी सिंपल कि गाना एवरग्रीन है, ये आगे भी चलता रहेगा, ये उन गानों में है जो अगले आने वाले 2-3 सालों तक तो लोगों को याद रहेगा। ये गाना एट नंबर 9 इसलिए आया है, आप कहेंगे इतनी तारीफ करके 9 पे क्यों रखा, तो उसकी भी वजह है क्योंकि ऊपर इससे बहुत बढ़िया बढ़िया गाने आ चुके हैं जो फ्रेश हैं। तो गाना नंबर 9 जो है आरजू, जिसको गाया असीम अजहर साहब ने। ये बहुत टाइम से हमारे लिस्ट में है, एक टाइम पे 5 पे भी रहा है, 6 पे भी रहा है, 7 पे भी रहा है, सो सारी रैंकिंग इसने देख ली है, मतलब सारे दिन देख लिए हैं, घाट घाट का पानी पी लिया है, और अब 9th पोजीशन पे आ चुका है। बट आई डोंट थिंक ये लिस्ट से बाहर होगा, अभी भी इसकी वैल्यू, अभी भी इसकी कदर है। आसिम अजहर साहब की आवाज में आरजू एट नंबर 9। एंड अगेन, मैं क्योंकि इनके गाने का जिक्र कर रहा हूं तो मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगा, मैंने पिछले सारे एपिसोड्स में करा है, अगर आप भी एक सिंगर हैं, अगर आप अपने शौक को पूरा करना चाहते हैं, इस वक्त आपको अपॉर्चुनिटी की कोई जरूरत नहीं है कि आप ढूंढे तलाशे, अब अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बनाइए, जाइए गानों के कवर बनाइए। भाई साहब, ये जो ट्रेंड शुरुआत में चला था कि हम गानों के कवर अपलोड करेंगे, लोगों ने वो बंद कर दिया, और अब इसीलिए मार्केट ओपन है। आई वुड सजेस्ट जितने लोगों की आवाज अच्छी है, गाते अच्छा है, सिर्फ महफिलों में बर्थडे पार्टी से मत गाओ, अपना गाना कवर गा के डालो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपको। और आसिम अजहर से जुड़ी हुई क्यों बात करी मैंने, क्योंकि इनका करियर ग्राफ बहुत बहुत मेहनत दिखाता है, एंड यू कैन ऑल्सो डू इट। ऐसे आर्टिस्ट से इंस्पायर होना चाहिए, और असीम अजहर साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हालांकि मेरी बात उन तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे कि वो दूसरी तीसरी बात है, बट आई होप कि पॉप सिंगर्स भी एल्बम निकालें, क्योंकि एक टाइम था जब ऐसा हो रहा था, शान की एल्बम आती थी, के साहब की एल्बम आती थी, सोनू निगम साहब की एल्बम्स आती थी, तो वो एल्बम का दौर चला गया है। अभी तो रैपर्स की तो भर भर के एल्बम्स आती हैं, EPs आती हैं, LPs आती हैं, मगर पॉप सिंगर्स की एल्बम नजर नहीं आ रही है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि एक आसिम अजहर की एल्बम भी आ जाए। बट क्योंकि गाना है, गाना बहुत शानदार है, आसिम अजहर की आवाज में आरजू एट नंबर 9 ऑन आर लिस्ट। ओके जी, अगला गाना नंबर 8। ये गाना भी एक 2.0 मूवी का है, पता नहीं कब बॉलीवुड बाज आएगा, मगर फिलहाल धमाल 4 जिन्होंने देखी है उन्हें पता है कि धमाल कितना मचा है कितना नहीं मचा है। आई वुड नॉट गेट इनटू इट, क्योंकि मूवी के रिव्यूज मैंने सिर्फ पढ़े हैं, तो मैं ऐसे जज नहीं करूंगा, हालांकि रिव्यू कुछ खास नहीं है। गाने ठीक ठाक गए, बहुत सारे गाने हैं जो लिस्ट में हो सकते थे, लेकिन ये वाला गाना, ये अभी जो 8 नंबर पे बताने जा रहा हूँ, कहर गुरु रंधावा का। कहर इस पे इसलिए भी है क्योंकि गुरु रंधावा के इस गाने ने अभी तक रीलों पे भाई साहब मचा दिया। कोरियोग्राफी इतनी जबरदस्त है कि जो हुक स्टेप है उसकी पता नहीं कितनी रीलें बन चुकी हैं, और ये खासियत है गुरु रंधावा की, कहने को वो सिंगर हैं लेकिन उनके वजह से कोरियोग्राफर्स की दुकान में और जान आ जाती है। और कहर कड़े मैंने कड़े बहुत बढ़िया गाना है, एट नंबर 8 ऑन द लिस्ट, काफी पैपी नंबर है। मुझे इसके बारे में सिर्फ ये लगता है कि आने वाले वक्त में जब कहर कहीं चलेगा तो लोग ये नहीं याद रखेंगे कि धमाल का गाना है, लोग यही याद रखेंगे कि गुरु रंधावा का गाना है। तो ये अपने आप में इसकी एक बहुत बड़ी तारीफ है, एंड कुडोस टू गुरु रंधावा। बट उनसे भी रिक्वेस्ट है, भाई ये सब परफेक्ट, ऐसे गाने मत बनाओ, ये वाला बनाओ, ये बढ़िया बनाया आपने, ये बढ़िया बनाया है। सो ये है कहर एट नंबर 8। बिफोर आई प्ले दिस ट्रैक, मैं एक बार रिविजन करा देता हूँ। सो नंबर 10 पे है ऊंचा लंबा कद, वेलकम टू जंगल, नंबर 9 पे है आरजू आसिम अजहर की आवाज में, और नंबर 8 पे है कहर धमाल 4 से। बाकी लौट के आएंगे, उसके बाद फिर लिस्ट में आगे बढ़ेंगे 7, 6 और 5। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड सोशल मीडिया

0: हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, प्लीज हमसे जुड़िए। अगर आपके पास कोई लिस्ट है, कोई गाना है जो आपको लगता है कि FM107 पर आपने सुना है और वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो बता सकते हैं, प्लीज बताइए। आप भाई सब इक्वल क्या ज्यादा भागीदार हैं हमारे शो में, एंड 80-90% आपका ही शो है, 10% हमारी आवाज है बस, यूं समझ लीजिए। सो आई नीड योर हेल्प विद दिस। आपके जहन में कोई गाना है जो लिस्ट में जगह बना सकता है, सेंड मी योर लोकेशन, गाना भेज देना, ठीक है? मिलते हैं कुछ देर में, जाना नहीं, स्टे ट्यून्ड।
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 10।

FM 107 Top 10, number 8.

0: FM 107 Top 10.
1: Welcome back. Assalamu alaikum. मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे. This is Top 10 this week. तो अभी तक हमारी लिस्ट जो है वो आठवें नंबर पे तक पहुंची है, तो हमने अभी टोल नाका क्रॉस नहीं किया, यूं समझ लीजिए भाई साहब. तो नंबर 10 पे है ऊंचा लंबा कद, वेलकम टू जंगल से. नंबर 9 पे है आरजू आसिम अजहर की शानदार आवाज में, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स दिस डेज. और नंबर 8 पे है
2: कहर कड़ी
1: गुरु रंधावा फ्रॉम द मूवी धमाल 4. अब आगे बढ़ेंगे 7, 6 और 5 की तरफ. नंबर 7 पे जो गाना है, मेरा थोड़ा दिल ऐसा दुख रहा था, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सो रख देते हैं नंबर 7 पे. बट आई थिंक दिस सॉन्ग विल क्लाइंब दिस लिस्ट, मुझे ऐसा लगता है. गाने की डिमांड भी आ रही है, गाने की रिक्वेस्ट मेरे पास पर्सनली अब मेरे शाम वाले शो में भी आ चुकी है. बट फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट एट नंबर 7, सेफ खेल रहा हूं मैं. गाना नंबर 7 है डांडा न्योली वाला का, और गाने का नाम है दिल दे बैठी. भाई इसकी हुक लाइन बहुत प्यारी है, बड़ी सोनी है भाई, बहुत सोनी हुक लाइन है. दिल दे बैठी एक छोरे ने. तो दिल दे बैठी जो गाना है, इसके बारे में मैंने इंटरव्यू देखा था ढांडा न्यूली वाला का, और उन्होंने कहा कि वो बहुत टाइम से सोच रहे थे कि एक क्लब के लिए गाना बनाया जाए, एक ईडीएम म्यूजिक पे ट्रैक पे

तैयार किया जाए और वो बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे थे. सो सिंस ही हैज डेवलप्ड एन अमेजिंग ईपी जो इन्होंने लॉन्च करी, आई थिंक 4 या 5 गाने हर हफ्ते वो वीडियो के साथ ड्रॉप करें, कंसिस्टेंसी लाजवाब है. उसी ईपी का ये भी गाना हिस्सा है, दिल दे बैठी, एब्सोल्यूट बैंगर ऑफ अ ट्रैक मैन, क्या गाना है भाई. एंड इसीलिए मुझे लगता है ये लिस्ट पे चढ़ेगा. आई लव्ड इट. मुझे ना सिर्फ गाने का ऑडियो पसंद आया, लिरिसिज्म पसंद आया, मगर गाने का जो वीडियो है वो भी बड़ा कमाल का है, बहुत कमाल का है. स्पेशली जो उनकी शायरी है गांडन न्यूलीवाला की, जो एज एन हिप हॉप आर्टिस्ट अपने गानों में रखते हैं, वो बड़ी कमाल की है. समटाइम्स यू नो वट, जब लोग रैप करते हैं तो क्या होता है उसमें कि अपनी तारीफ कर देते हैं उसमें रैप में, या थोड़ा फ्लैक्स कर देते हैं कि वेरी गाढ़ी ऊंची काले शीशे वाली, वो सब ठीक है, इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ डूइंग रैप. मगर जब रैप में राइमिंग चल रही हो, राइमिंग के साथ साथ स्टोरी चल रही हो, या इमोशंस बिल्कुल ट्रैक पे बैठ रहे हो, और कोई ऐसी लाइन आ जाए कि आप बोले भाई यार रिवाइंड करो यार क्या बोल दिया यार, दैट इज हाउ डांडा न्यूलीवाला इज गोइंग इन दिस हिप हॉप कल्चर. एंड बहुत जबरदस्त जा रहा है उनका करियर. आई विश हिम ऑल द बेस्ट. ही इज वन ऑफ माई फेवरेट रैपर्स फॉर श्योर. एंड दिल दे बैठी इज एन अमेजिंग अमेजिंग ट्रैक. अगर आपको हरियाणवी समझ में आती है तो आपको ये गाना बहुत ही बढ़िया लगेगा, और नहीं समझ में आती है तो आप समझ लेंगे, इतनी मुश्किल है नहीं. 2-3 वर्ड्स हैं जो आप किसी से पूछ सकते हैं, आपको कोई जाट दोस्तों मेरे से पूछ रहे ना, कोई टेंशन को नहीं भाई. दिल दे बैठी डांडा न्यूलीवाला एट नंबर 7 ऑन द लिस्ट. अब नंबर 6 पे आ जाते हैं. नंबर 6 पे आसिम अजहर फिर से आ गए. आसिम अजहर जो है इस लिस्ट पे 6 पे बने हुए अपने एक शानदार गाने की वजह से, क्योंकि इस गाने के कुछ बोले हैं जो मैं बोलूंगा नहीं, वो आपको गाने में मिल जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि वो वायरलिटी की वजह से गाना टिका हुआ है. और सिर्फ वायरलिटी क्यों, गाना है भी अच्छा. तू है वही गाने का नाम है, आसिम अजहर की आवाज है. गाने के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कि बस प्यार मोहब्बत दिखा दिए कि हाँ हो गया चलो, बट गाने के अंदर कहानी है, कहानी बड़ी खूबसूरत है. इसका जो आर्ट वर्क कहते हैं, यस आर्ट वर्क, तो वो भी बड़ा कमाल का है. एंड यू विल एब्सोल्युटली लव. तो ये गाना अगर आपकी कभी होता ना, कभी आप ऑक्स केबल लगा के सुनते हैं, या आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा खेला हूँ तो मुझे अभी कुछ नहीं सुनना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, एंड यू काइंड ऑफ रिमाइंड योर सेल्फ अबाउट समवन, दिस इज द ट्रैक जो आपको गाड़ी में प्ले करना चाहिए. ये गाना क्या है, ये अकेले सुनने वाला गाना है, ये सही बता रहा हूँ मैं. ये हालांकि है प्यार मोहब्बत गाना, बोलेंगे यू आर पार्टनर हो तो चल, नहीं, वो ठीक है, वो पार्टनर्स का सुनने वाले अलग गाने. इससे पहले वाला जो गाना दिल दे बैठी, वो पार्टनर के साथ सुनो बढ़िया. लेकिन ये जो गाना ना भाई, तू है वही आसिम अजहर की आवाज में, दिस इज अ ट्रैक आप लेट नाइट ड्राइव कर रहे हैं, यू वांट टू प्ले समथिंग जो आपको याद भी कराए, जो आपको नॉस्टैल्जिक भी फील कराए, जो आपको आज में भी रखे, और जो आपको एक कहानी भी सुनाए. ये गाना टोटल पैकेज है. तू है वही आसिम अजहर की आवाज में, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली रिटन ट्रैक. सो ये है गाना नंबर 6 ऑन आवर लिस्ट दिस वीक. अब गाना नंबर 5 पर जाते हैं, जो हमारी लिस्ट को छोड़ने के लिए राजी नहीं है. हमने बहुत कोशिश करी कि इस गाने को नीचे रखे, ना जी ना, यो गाना ना माने भाई, गाना बहुत बढ़िया है. और गाने को गाया है चरणप्रीत ने, मेरे लिए उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, ये उनके करियर का बेंचमार्क है. प्रॉब्लम क्या है विद बेंचमार्क म्यूजिक, जब आप एक ऐसा ट्रैक दे देते हैं कि इंसान मजबूर हो जाए उसी को सुनता रहे. आप यू रिमेम्बर रियार नाम उनका, रियार जो डिवाइन के ग्रुप के हैं, उन्होंने एक गाना बनाया था गड्डियां ऊंचियां रखियां, उसके अलावा दूसरा गाना बताओ उनका, नहीं बता पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, अंडर अनलेस यू रिसर्च ऑन हिम. ये होता है प्रॉब्लम क्या है, गाना बहुत बढ़िया है, रियार साहब बहुत बढ़िया है रियार साहब, और उसके अलावा उन्हें अगर अगला गाना बनाना है तो वो गड्डियां ऊंचियां रखियां ऑब्सेस जो गाना है उससे ऊपर ले जाना पड़ेगा. एंड ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए. अब आर्टिस्ट चाहता भी है कि बेंचमार्क सेट करे. वैसा ही सीन चरणप्रीत के साथ अभी बन चुका है. जो गाना है बन जा तू मेरी बन जा बन, सॉरी फॉर माई सिंगिंग, आई एम रियली रियली बैड एट इट, लेकिन यू गेट द जिस्ट राइट. तो चरणप्रीत और बादशाह ने मिलकर इस गाने को बनाया है, और बादशाह भाई ने रैप किया है इसमें. ये गाना चरणप्रीत के लिए इट्स लाइक अ बेंचमार्क. अब चरणप्रीत को अगला गाना हल्का नहीं डालना चाहिए, बिकॉज अगर वो अगला गाना हल्का डालेंगे तो भी लोग इसी गाने के पास आएंगे और फिर उनको बोलने लग जाएंगे अरे ये वाला सिंगर है बन जा तू मेरी. सो जब आपके ऊपर ये वाला टैग लग जाए कि आप एक ही गाने से पहचाने जाए तो शुरुआत में तो अच्छा लगता है कि यार क्या लेजेंडरी ट्रैक दिया, पर फिर बाद में चुभने लगती बात हो कि यार एक ही चीज के लिए थोड़ी जानता हूं मैं तो जाना जाता हूँ और

गाने दिए मैंने, वो आर्टिस्ट को बहुत चुभती है बात। सो आई रियली होप कि चरणप्रीत जो अगला गाना लेकर आए वो उतना ही बड़ा हो जितना ये वाला गाना हुआ है। आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट कंसिस्टेंट, बट आई जस्ट होप कि उनके करियर में अगला गाना भी उतना ही बड़ा हो जितना ये गाना हुआ है। बिकॉज ये गाना लिरिकली अमेजिंग, कोरियोग्राफी अति उत्तम, इसमें जो जो मॉडल है आसी, उन्होंने जो बढ़िया भाई साहब डांस किया है, इसके कोरियोग्राफर जो है दिव्या गोयल नाम है शायद उनका, शी हैज आउटडन हरसेल्फ। उनका भाई करियर रॉकेट हो लिया, रॉकेट। उन्होंने अपने कोरियोग्राफी का, डांस का जो पूरा स्टूडियो है वो तैयार किया था, उसमें स्टूडेंट्स जा के ये वाला डांस स्टेप सीख रहे हैं जो इस गाने में है। ना सिर्फ वहां पे जाके सीख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इस गाने की वजह से काम मिला है। आई एम नॉट किडिंग, आप जाके देखिए, कई सारे लोग स्लो मोशन में सिखा रहे हैं कि स्टेप कैसे करना है, बिकॉज वो डांस का जो हुक है वो बहुत मशहूर हो चुका है। सो बढ़ जा तू मेरी फॉर ऑल द गुड रीजंस इज एट नंबर 5 and I think it's going to make it far in our list aur aage bhi chalta rahega. So Charanpreet Badshah with this amazing banger of a track at number 5. अब देखो आगे बढ़ने से पहले क्या है, मैं आपको बता दूं कि लिस्ट में कौन कौन से गाने हैं। सो नंबर 10 पे है ऊंचा लंबा कद, वेलकम टू जंगल। नंबर 9 पे है आरजू असीम असर की आवाज में। नंबर 8 पे कहर धमाल 4 से बाय गुरु रंधावा। नंबर 7 पे है दिल दे बैठी ढांडा नेवली वाला। और नंबर 6 पे है भाई यो गाना तू है वही आसिम असर की आवाज। और नंबर 5 पे है बन जा तू मेरी बादशाह और चरणप्रीत की आवाज में। अब लौटेंगे तो फिर बहुत बहुत मुश्किल पढ़ाव आने वाला, 4-3-2-1। ये जो पोजीशंस हैं बाबा, बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है मामला। तो क्रिटिकल मामला कुछ देर में सुनाते हैं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल जैसे मैं रिमाइंड कराता रहता हूँ, प्लीज हमसे जुड़िएगा, FM 107 Qatar FM 107 Qatar। और मुझे भी ढूंढ सकते हैं आप, दोहा वाला कबीर FM 107। कबीर की स्पेलिंग लोग गलत लिख देते हैं, आप जरा ध्यान रखिएगा प्लीज, EER नहीं भाई, KABIR। ठीक है, जाना नहीं, भी लौट के आते हैं। 4-3-2-1 ये वाली सीढ़ी बाकी है, सीढ़ियां, सॉरी, स्टे ट्यून्ड। FM 107 Top 10 नंबर

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है. एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है. इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे.
4: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
5: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं. MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ.
4: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी. दिल से देसी.
6: FM 107 टॉप 10 नंबर 6.

0: FM 107 Top 10.
1: Welcome back. Assalamu alaikum. मैं दुहा वाला कबीर and this is Top 10. सिर्फ FM 107 पर और पर हम आ चुके हैं चार पर, तीन पर, दो पर और एक पर. अब ये जो गाने हैं टॉप फोर सॉन्ग्स ऑफ दिस वीक, ये बड़े क्रिटिकल हैं भाई. इसमें रैंकिंग पे किसी भी गाने को रखना बिल्कुल आसान नहीं होता हमारे लिए. तो मैं रिवीजन करा दूंगा कुछ देर में अभी तक कहां पे आ चुके हैं. लेकिन नंबर चार पे जो गाना है, ये गाने ने हलचल मचाई है भाई. इस गाने ने हलचल मचाई. ये जिस पिक्चर का गाना है उस मूवी से बड़ा हो गया भाई. उस पिक्चर से बड़ा ये गाना बन चुका है. गाना है कॉकटेल 2 से, माशूका गाने का नाम है. और बिना किसी हुक स्टेप, कैसे नहीं, आजकल गाने वायरल तभी होते हैं ना, हुक स्टेप होता है ना जी. ना गाना वायरल हो रहा है अपने लिरिक्स की वजह से, अपने हुक स्टेप की वजह से नहीं, अपनी हुक लाइन की वजह से. जिस तरीके से माशूका बोला गया भाई, भाई साहब आग ला दी, गति आग ला दी. तो कॉकटेल 2 से यो गाना भाई माशूका यो है हमारे लिस्ट में नंबर चार पे. बहुत बढ़िया गाना भाई, और मौज आ जाएगी आपको जब सुनेंगे आप. तो ये गाना फॉर ऑल द गुड रीजंस एंड आल्सो बहुत सारे लोगों को, जेंजीज को, इवन मिलेनियल्स को मौका मिला है कि अब जब वो सुंदर सुंदर बनके अपने फोटोज डालें, अपलोड करें, तो बैकग्राउंड में ये गाना लगा सकें. सो ये गाने ने बहुत बहुत लोगों के सेल्फ लव को बूस्ट किया है. सो आई टोटली टोटली रिस्पेक्ट दैट. देखो जब गाना मूवी से बड़ा हो जाए तो अल्टीमेटली हेल्प मूवी की ही होती है. तो एटलीस्ट मूवी को याद रखने की वजह ये गाना जरूर बने, क्योंकि मूवी के अंदर कुछ भी नहीं है याद रखने लायक. आई डोंट नो व्हाई दे मेड पार्ट टू ऑफ कॉकटेल, दैट देयर वाज नो नीड ऑफ मेकिंग अ सीक्वल टू कॉकटेल. बट इवेंचुअली मैं कोई प्रोड्यूसर, मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, तो मैं कोई नहीं होता, बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ. बट द सॉन्ग फ्रॉम कॉकटेल इज अ बैंगर ब्रो. तो माशू का कॉकटेल का ये गाना एट नंबर 4 ऑन आवर लिस्ट. अब आ जाते हैं जी नंबर 3 पे भाई. नंबर 3 पे ये तो मेरा फेवरेट है. मैं भाई बायस्ड हूँ, आप मेरे को जितना क्रिटिसाइज करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है. लोग गाने को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, लोग कह रहे थे अरे वो वाली बात नहीं, वो वाली बात. भाई है बात, आप ध्यान तो दीजिए. अब आप सोचें कि आपको वही वाले गाने मिले तो मेरा तेरा मेरा रिश्ता, वो हमेशा नहीं होगा ना.

पर इस बार भी जो फ्रेशनेस है गानों में, जो लिरिसिज्म है, जो आवाजें हैं, बड़ी कमाल की हैं। नंबर तीन पे आप समझ गए किसके बारे में बात कर रहा हूं, आवारा पन टू, इमरान हाशमी। सबसे पहले तो वीडियो में क्या लग रहा है भाई, यार क्या लग रहा है भाई, जबरदस्त लुक है, जबरदस्त लुक। आई कैन नॉट वेट टू वॉच द मूवी इन थिएटर्स भाई। रात पहले दिन का लास्ट शो रात वाला या पहले दिन का पहला शो, मेरा तो बुक है, डन है मामला। ये गाना जब रिलीज हुआ तो मुझे नाम लिखा आया आगे, अरिजीत सिंह ने गाया, वो कहा भाई साहब ये गाना तो फटेगा, और गाना सच में बहुत बढ़िया गाया है यार, क्या गाता है अरिजीत यार। मैं सिंगर नहीं भी हूं तब भी मुझे जलन हो जाती है, ये बंदा यार कैसे करता है। आवारापन गाने का नाम है, और आवारापन टू से ये गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में, क्या गाया है भाई, मजा आ जाएगा आपको। सो लिसन टू दिस वन, इट्स एट नंबर थ्री ऑन द लिस्ट। आज ही आ गए हम टॉप टू पे। अब गाना नंबर दो, गाना नंबर दो, ये गाना डिस्पाइट नॉट बीइंग फ्रॉम अ बॉलीवुड मूवी, कोई पॉप गाना नहीं, और ये गाने को लेके मुझे बायस होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गाने ने हलचल मचाई है। ये गाना बहुत जल्दी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज पा रहा है अभी भी यूट्यूब पर, एंड इट इज गेटिंग ऑल द प्रेजेस दैट इट डिजर्व्स। वीडियो बहुत चंगा सीगा और गाना कति चंगा सीगा, बहुत बढ़िया गाना है। ढांडा न्यूलीवाला की आवाज में भाई साहब जगाने मार रहे कोई ना ठिकाने, बढ़िया गाना भाई। नंबर दो पे भाई ने आग ला दी। इसमें बहुत सारी लाइनें हैं जो कैप्शन के तौर पे यूज किया सकती हैं, स्पेशली द लाइन विच इज वन ऑफ माय फेवरेट, के बेटी चाहे दुश्मन की हो मारे घर महफूज मिलेगी। भाई वो लाइन जो इस गाने में जिस टाइम पे आती है, एंड द वे ही हैज स्ट्रक्चर्ड द ट्रैक, कमाल है भाई। देखो गाने का ना एक स्ट्रक्चर होता है, जो हुक लाइन होती है उसका कोई मतलब होना चाहिए, जो हुक लाइन होती है वो बिल्कुल ब्लेंड होनी चाहिए लिरिक्स के साथ, तब मजा आता है। और हिप हॉप में ये करने वाले लोग बहुत कम है। ढांडा न्यूलीवाला हैज डन इट अगेन, जगाने एट नंबर टू ऑन द लिस्ट बाय ढांडा न्यूलीवाला। अब नंबर वन पे लिस्ट पे बरकरार रहते हुए, सिंहासन पे गद्दी पे, ये गाना वो जो धीरे धीरे लोगों के जहन पे चढ़ा है, ये धीरे धीरे गाना जो है लोग जा जाके चुपके चुपके सुन रहे हैं और किसी को याद कर रहे हैं। नहीं आई विल नॉट ट्रिगर यू, बट आवारापन टू से जो ये गाना है, वे जुनू भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई, बहुत खूबसूरत गाना है। शुरुआत में आपको लगेगा नहीं यार मजा सा नहीं आ रहा, फिर आप दो बार सुनेंगे, तीन बार सुनेंगे, आप बोलेंगे कुछ तो हो रहा है मुझे, फिर चौथी मरतबा सुनने से पहले पहले आपको लगेगा भाई हमारा पंडु का वो गाना लगा दो। तो वे जुनू हैज वन ऑफ द मोस्ट डीपेस्ट लिरिक्स एवर, सैयद कादरी साहब आपको सलाम, क्या लिखते हैं आप। तो ये गाना लिखा बहुत बढ़िया गया है, फिल्माया बहुत बढ़िया गया है, लोगों को शिकायत थी दिशा पाटनी क्या कर रही है इसमें, भाई मौका दो ना उसको ही मौका दो। हम तो भाई इमरान भाई के लिए देखेंगे पिक्चर, बाकी वे जुनू फ्रॉम आवारापन टू, ये है हमारे लिस्ट का गाना नंबर वन उनो। तो ये गाना सुनिए, बाकी इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। गाने के जो मैं बता रहा था आपको कि लिस्ट में आप भी अपना गाना शामिल करवा सकते हैं 666-22-107 पर, 666-22-107 पर प्लीज हमें मैसेज कर सकते हैं, या आप सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जुड़िए, FM 107 Qatar इस नाम से हर जगह मौजूद है। और मुझसे जुड़ना चाहें तो दोहा वाला कबीर FM 107, एंड कबीर की स्पेलिंग रहेगी KABIR। दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। Ma salam. FM 107.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आप सबका फेवरेट शो मेरी पहचान। वैसे अक्सर हम मौसम की बात करते हैं, है ना, कि ये मौसम कैसा है, बाहर क्या हो रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस मौसम की, या यूं कहें उन मौसमों की जो हमारे दिलों के अंदर सदियों से ठहरे हुए हैं। आज का एपिसोड मेरा सबसे पर्सनल और शायद सबसे जरूरी एपिसोड है। आज हम बात करेंगे जनरेशनल हीलिंग की। हम बात करेंगे उस साइकिल की जो शायद हमारे दादा दादी, या यूं कहें हमारे नाना नानी, इनसे शुरू हुई थी, हमारे पेरेंट्स तक आई और अब हमारे सामने एक सवाल बनकर खड़ी है। तो ब्यूटीफुल लेडीज, कभी सोचा है आपने कि हम कतर में, हम दोहा की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, कभी अगर अपने वेस्ट बे या लुसेल के खूबसूरत घर में बैठे हैं, डिनर टेबल पर बच्चों के साथ बैठकर उन्हें किसी बात पर डांट रहे हैं, और अचानक ये करते हुए हम खामोश हो जाते हैं। क्यों, क्या हो जाता है ऐसा? क्योंकि हमें लगता है, हमें याद आ जाता है अपना बचपन, वो जुबान से निकले हुए अल्फाज जो हमारे नहीं, हमारी अम्मी के थे, वही लहजा, वही गुस्सा, उफ। या शायद जब आप अपने बेटे के आंखों में वो खौफ देखते हैं तो आपको 30 साल पुराना अपना बचपन याद आ जाता है कि भाई वी कैरी आर पेरेंट्स इनसाइड। हाँ, मतलब वो हमारे साथ ही हैं, उनका बेशुमार प्यार हमारे साथ चल रहा है, लेकिन उनके अनहील्ड वोंड्स भी चल रहे हैं भाई, उनके

वो जख्म जो कभी भर नहीं पाए वो भी हमारी विरासत का हिस्सा बन गए। हमारे कल्चर में डिसिप्लिन अक्सर डर का दूसरा नाम होता है। इज्जत का मतलब है खामोशी। वेल, सिद्रा मेडिसिन और विश कतर की रिसर्च बताती है कि आज का जो बच्चा है एक ग्लोबल वर्ल्ड में पल रहा है, उसे डर नहीं कनेक्शंस चाहिए। तो सवाल ये है कि हम अपने खूबसूरत ट्रेडिशंस को बचाते हुए उन पुरानी बेड़ियों को कैसे तोड़े। हाँ, तो आज इसी बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन होने वाला है हमारे इस खासम खास शो मेरी पहचान में। तो आपने क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ ऑन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन. मैं हूं अमिता आपके साथ और आप हैं मेरे साथ मेरी पहचान में. वेल, आज की सोचना बड़ी सीधी और बहुत भारी है. हाँ, यू कैन नॉट हील व्हाट यू रिफ्यूज टू एक्नॉलेज. मतलब जिस जख्म को आप तस्लीम नहीं करते, जिस चोट को आप छुपाते हैं, वो कभी ठीक नहीं होती, वो नासूर बन जाती है. हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ी दीवार है जो हमें सच्चाई दिखाने से या सच्चाई को देखने से रोकती है, और उस दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, लोग क्या कहेंगे. पता है हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो चार लोग जो आज तक किसी ने नहीं देखे, मगर जिनका डर हमारे हर फैसले पर हावी होता रहता है.

एक जुमले ने कि लोग क्या कहेंगे, हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ से ज्यादा लोगों के दिखावे को अहमियत दे दी है। तसव्वुर कीजिए कि आप हमारे कतर के बड़े ही फेमस मॉल्स में हैं, कोई भी मॉल पकड़ लीजिए, ठीक है, आपका बच्चा किसी बात पर रो रहा है, शायद उसे कोई तकलीफ हो रही है, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या आप उसे गले लगाकर पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, या आप घबरा कर चारों तरफ देखते हुए कि कोई देख तो नहीं रहा आप ये सोचते हैं? हम बच्चों को चुप करवाते हैं क्योंकि हमें अपनी इमेज की फिक्र होती है, हम उन्हें खामोश कर देते हैं ताकि कोई हमें बैड पेरेंट ये ना समझ ले। हमने बाउंड्रीज नहीं बनाई क्योंकि हमें लगा था कि नो कहना बदतमीजी है। ओए होए, पर हमारी लेगेसी में रिस्पेक्ट का मतलब अक्सर खामोशी रहा है। अगर बच्चा सवाल पूछे तो वो आर्ग्यू कर रहा है, अगर बच्चा अपनी पसंद बताए तो वो जिद्दी हो गया है। तो जनाब, हीलिंग का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अपने माँ बाप की तौहीन या यूं कहें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने वही किया जो उन्हें सिखाया गया था, अब उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं थी, है कि नहीं? बट ब्रेकिंग द साइकिल इज अ गिफ्ट। इट सिंपली मीन्स कि भाई आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और अगर आप थोड़ा सा कुछ चेंजेस ले आए आज के जमाने को देखते हुए तो इसमें गलत कुछ नहीं है। आप उन्हें वो माहौल या यूं कहें वो एनवायरमेंट देना चाहते हैं जहां उनकी आवाज सुनी जाए। इट्स अबाउट चूजिंग कनेक्शन ओवर कंट्रोल। अब आप एक पुल हैं, ठीक है, आपके एक तरफ पुरानी रिवायतें हैं, वो डिसिप्लिन जो डर पर कहते ना बेस्ड था, और दूसरी तरफ एक नया सवेरा है, एक नया तरीका जहां बच्चा महफूज महसूस करे। ब्रेकिंग दिस साइकिल इजंट अ बिट्रेयल। ऐसा नहीं है कि हम अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं या हम उनकी बात को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं और हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नो, इट्स अ गिफ्ट जो उन्होंने हमें दिया, लेकिन हम अब उसे थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। सोचिए आज आप किस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, एक ऐसी राह में जहां लोग क्या कहेंगे कि अहमियत खत्म हो जाए, और मेरे बच्चे को क्या चाहिए कि शुरुआत हो, क्या करेंगे? तो सोच के बताइए अमिता को। हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग की, ठीक है, और आजकल अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर एक टर्म बड़ा मशहूर है, जेंटल पेरेंटिंग। उफ, इसका जिक्र हर जगह है, चाहे वो सोशल मीडिया की रील्स हो, उसके ब्लॉग्स हो, या फिर स्टोरीज हो, ये हर जगह पर काफी हिट हो रहा है। सुनने में बड़ा सुकून मिलता है, मगर सच बताऊं इट इज एब्सोल्युटली एग्जॉस्टिंग। भाई देखो, हमारे कतर में जब हैवी ट्रैफिक होता है तो हम वेस्ट में की गर्मी और ऑफिस के काम के बाद जब थके मांदे घर आते हैं और घर पर बच्चा खाना गिरा दे या रोने लगे या शोर मचाए, तो उस वक्त जेंटल रहना वाकई में इट्स अ चैलेंज, किसी इम्तिहान से कम नहीं लगता। गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना आसान है क्योंकि हमने वही देखा है, मगर आपने अपने जज्बात पर काबू पाना है। ये करना बहुत मुश्किल होता है, पर किया जा सकता है। वेल, जो बड़े बड़े मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं उनके मुताबिक जब हम अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाकर बच्चा पालने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। इसे हम हाई अलर्ट स्टेट में चले जाते हैं। जी हाँ, आपको पता है कि वो जो आपको अक्सर बैक पेन रहता है ना, या वो माइग्रेन जो हर वीकेंड पर आपको हो ही जाता है, या पेट की तकलीफ, ये सिर्फ थकान नहीं है, ये वो स्ट्रेस है जो आपकी बॉडी स्टोर कर रही है। हम इतना डरते हैं कि हम अपने पेरेंट्स जैसे ना बन जाएं, कि हम हर वक्त परफेक्ट बनने की कोशिश करते रहते हैं और हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट पेरेंट बने, और इसी चक्कर में पैदा होता है मॉम गिल्ट। यस, ये गिल्ट एक दीमक की तरह है जो हमारी खुशी को अंदर से खा जाता है। हम बनते हैं पीपल प्लीजर्स। यस, हम चाहते हैं बच्चा खुश रहे, हस्बैंड खुश रहे, इन लॉज खुश रहे, मगर हम भूल जाते हैं कि भाई हमारा अपना इनर कप भी तो है ना, उसका क्या, क्या वो खाली रह जाएगा? Well, listen to me carefully. You cannot pour peace into your child. ठीक है? अगर आपका कप भरा नहीं है तो आप प्यार मोहब्बत और वो कहते हैं ना कि एक पीस अपने बच्चे को नहीं दे सकते। अगर आप अंदर से थके हुए हैं, गुस्से में हैं, तो आप चाहे जितने जेंटल अल्फाज बोल लें,

चाहे आपकी वाइब और आपकी एनर्जी को कैच कर ही लेगा, ठीक है। बैलेंस तब आएगा जब आप ये समझेंगे कि एक कॉन्शियस पेरेंट बनने के लिए पहले एक कॉन्शियस ह्यूमन बनना जरूरी है और हमें वो इंसान बनना पड़ेगा। सेल्फ केयर सेल्फिशनेस नहीं है, ये एक जरूरत है, ठीक है। तो आज जब आप घर जाएंगे या अगर आप घर पर ही हैं, तो एक पल के लिए रुकिए और अपने जिस्म से या अपनी बॉडी से ये पूछिए कि भाई अभी कैसा महसूस कर रहे हो। कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कोई बोझ फील हो रहा है, या उस बोझ को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो उस बोझ को कम कीजिए। जरूरी नहीं है हर चीज आज ही ठीक हो जाए, हीलिंग एक प्रोसेस है, मंजिल नहीं। अगली बार जब आपको गुस्सा आने लगे ना, तो याद रखिए आप थके हुए हैं, आप बुरे इंसान नहीं है, जस्ट ब्रीद। हाँ जी, और अपनी बातों को अभी हम और आगे बढ़ाते हैं। कुछ स्पेशल चीजें हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ आज के हमारे शो में, तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें अपनी अमिता के साथ ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर आप हैं मेरे साथ मेरी पहचान पर तो जनाब इस वक्त अब सबसे पसंदीदा सेगमेंट है जिसका हम जिक्र करेंगे एंड दैट इज छुपी हुई मैं तो ब्यूटीफुल लेडीज हम सब एक मास्क पहन कर ना जीते हैं ये आप बात मानेंगी आई नो कुछ अग्री करेंगी कुछ नहीं करेंगी लेकिन एवरेज यही कहेंगी पर दुनिया के लिए हम एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल है कि नहीं एक जिम्मेदार माँ है एक बेटी है एक बीवी है लेकिन इन सब के बीच हम कौन है वो कौन

सी शख्सियत है हमारी जो छुप गई है. पल आज की छुपी हुई मैं आपके अंदर की वो नन्ही सी बच्ची है, वो बच्ची जो शायद आज भी वहीं खड़ी है जहां उसे 30 साल पहले छोड़ा गया था. हमारी परवरिश या यूं कहें हमारी अपब्रिंगिंग में अक्सर हमें सिखाया गया कि जज्बात का इजहार करना एक कमजोरी है. रोना नहीं है, गुस्सा दिखाना बदतमीजी है, लोग क्या कहेंगे अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी. इन जुमलों से, इन सेंटेंसेस ने हमारे अंदर की उस लड़की को ना खामोश कर दिया है. वो छुपी हुई मैं आज भी आपके अंदर सांस ले रही है, इंतजार कर रही है कि कोई उसे देखे, कोई उसे समझे. सो ब्यूटीफुल लेडीज, तसव्वुर कीजिए कि शाम का वक्त है, आप अपनी थकान में हैं, लेकिन आप कहीं बाहर से घर लौटी हैं. आपका बच्चा घर में शोर मचा रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है या किसी बात पर एकदम टैंट्रम्स दिखा रहा है. अचानक आपके अंदर एक आग सी लग जाती है, उफ, एक ओवरवेलमिंग अर्ज होती है कि आप चीख पड़े या शायद आपका हाथ उठ जाए. उस पल क्या करेंगे आप? आई शुड से उस पल में रुकिए, पॉज लीजिए. वो गुस्सा आपके बच्चे की वजह से नहीं आया, वो आपके बच्चे का बिहेवियर आपको ट्रिगर नहीं कर रहा है, बल्कि आपके अंदर की उस छोटी बच्ची की चीख है जिसे उसके बचपन में कभी सुना नहीं गया था. जब आपका बच्चा रोता है तो आपके अंदर की वो रिप्रेस्ड बच्ची डर जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि जब वो रोती थी तो उसे डांटा जाता था और ये कहा जाता था कि अरे इस तरह से बिहेव मत करो, रोना बंद करो. एंड अब आपका रिएक्शन उन्हीं सब चीजों को देखकर आगे बढ़ रहा है. वैसे द बर्डन ऑफ परफेक्शन बहुत बड़ा बर्डन है. हम सब परफेक्ट मदर बनने की रेस में ना एकदम दौड़ रहे हैं. हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो सब बने जो हम नहीं बन पाए, लेकिन इस चक्कर में हमने खुद पर एक भारी बोझ रख दिया है. हमारे कल्चर में माँ का दर्जा खुदा के बाद आता है और इस दर्जे ने हमें इंसान बनने की इजाजत ही नहीं दी है. हमने सोचा कि अगर हम थक गए, अगर हमें गुस्सा आ गया, अगर हम रो पड़े तो हम नाकाम हैं. नहीं ब्यूटीफुल लेडीज, द हिडन यू, आपके अंदर की वो लड़की है, उसे ये बताने की जरूरत है कि इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट. हीलिंग स्टार्ट्स विद यू. जब तक आप उस बच्ची को गले नहीं लगाएंगे, तब तक आप अपने बच्चे को वो इमोशनल सेफ्टी नेट नहीं दे पाएंगे जिसकी उसे जरूरत है. तो चलिए आज एक छोटा सा काम करते हैं. जब आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो या किचन में हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, बस कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लीजिए. अपने बच्चों की किसी ऐसी याद को याद कीजिए जहां आपने खुद को अकेला महसूस किया था. शायद जब आपके मार्क्स कम आए थे या जब आप गिर गए थे और किसी ने कहा रोना बंद करो. आज एक एडल्ट माँ के रूप में अपनी उस नन्ही बच्ची के पास जाइए, उसे कहिए मैं देख रही हूं तुम्हें, परेशान मत हो, मैं तुम्हारा डर समझती हूँ और आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ. जब आप अपने इनर चाइल्ड को वैलिडेट करती है ना, तो आपका गुस्सा ठंडा होने लगता है. आपके बच्चे का टैंट्रम अब आपको दुश्मनी नहीं बल्कि एक बच्चा लगने लगेगा जिसे सिर्फ थोड़ी सी हेल्प चाहिए. हीलिंग का सफर आसान नहीं होता. पुरानी आदतें, ओल्ड हैबिट्स बहुत सख्त होती हैं, मगर याद रखिए कि जब आप खुद को एक परफेक्ट माँ बनने के बोझ से आजाद कर देती हैं, तभी आप अपने बच्चे को एक खुला आसमान दे पाती हैं. हमारी माओ ने शायद हमें वो नहीं दिया जो हमें चाहिए था, क्योंकि उनके पास भी वो नहीं था. ये एक एवरेज चीज बता रही हूँ जो अक्सर हर एक घर में होती है, इसे गलत ना समझिएगा. उन्हें भी कभी किसी ने नहीं बताया था कि वो काफी है, दे आर इनफ. आज हम इस साइकिल को ना तोड़ रहे हैं. वी आर द जनरेशन दैट हील्स. अपने आप को माफ करना सीखिए. अगर कल आपने बच्चे पर गुस्सा किया था तो आज खुद को एक मौका और दीजिए.
कि यू आर डूइंग

ग्रेट जॉब. भले ही आपको अच्छा नहीं लगता, भले ही आपकी हेल्थ जवाब दे देती है, पर आप अपने ऊपर जब प्राउड फील करेंगे ना कि आप कमाल के पेरेंट हैं, आप कमाल की माँ हैं, तो डेफिनेटली चीजें आसान होंगी. हाँ, तो मेरी पहचान पर कुछ और ऐसी बातें होंगी जो हमारे दिल को सुकून पहुंचाएंगी. हाँ, तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है अपनी अमिता के साथ मेरी पहचान सुनते हुए. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107। मैं हूं अमिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं मेरी पहचान। वेल, आज हमने बात की जनरेशनल हीलिंग की, उस सफर की जो हमारे बचपन से शुरू होकर हमारे बच्चों के फ्यूचर तक जाता है। हमने देखा कि कैसे हमारे पेरेंट्स का डर और उनकी खामोशी हमारे अंदर आज भी ना बोलती है। हमने बात की लोग क्या कहेंगे कि दीवार की और उस छुपी हुई मैं की जो आज भी सिर्फ एक बार गले लगने का इंतजार कर रही है। ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, और अगर हम अपने कतर की बात करें तो कतर फाउंडेशन के फैमिली डेवलपमेंट सेंटर और सिद्रा मेडिसिन के एक्सपर्ट्स जो बातें कहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि पेरेंटिंग बच्चों को सुधारने का नाम नहीं है, पेरेंटिंग खुद को संभालने का नाम है। हम अपने बच्चों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर हमारे अंदर सुकून है तो घर में सुकून होगा। अगर हमारे अंदर तूफान है तो हम चाहे जितनी जेंटल पेरेंटिंग की किताबें पढ़ लें, बच्चा उस तूफान को महसूस कर ही लेगा। तो चलिए, अब वक्त है उन

प्रैक्टिकल सीड्स ऑफ हीलिंग का जो आज अपने साथ आप घर लेकर जाएंगे. सबसे पहली और सबसे ताकतवर चीज द पॉज प्रैक्टिस. यस, अगली बार जब आपका बच्चा कोई ऐसी गलती करे जो आपको आग बबूला कर दे, गुस्से मिला दे, शायद उसने आपका महंगा फोन तोड़ दिया हो, उफ, दैट्स अ वेरी बिग एग्जांपल, या स्कूल से कोई शिकायत आई हो, तो रिएक्शन देने से पहले सिर्फ 10 सेकंड रुकिए, जस्ट 10 सेकंड्स. इन 10 सेकंड्स में एक गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये गुस्सा इस वक्त की गलती पर है या ये गुस्सा उस बचपन की याद पर है जब मुझे गलती करने पर मारा गया था. अक्सर हमारा गुस्सा करंट सिचुएशन से ज्यादा हमारे पास्ट से आता है. हम डरते हैं कि अगर हमने आज सख्ती नहीं की तो बच्चा बिगड़ जाएगा. ये डर हमारा है, बच्चे का नहीं. तो इन 10 सेकंड्स में, ये 10 सेकंड्स का पॉज जो मैंने आपको बोला लेने के लिए, आपको एक रिएक्टिंग मशीन से एक लविंग पेरेंट बना देता है. और ये आपको एक पावर देता है टू चूज लव ओवर फियर. हाँ जी, दूसरा है कि थोड़ा सा डीप डाइव करें, वैलिडेट डोंट फिक्स. ठीक है, तो ये है कि जो शायद हमारी पूरी जो नस्ल है, जनरेशन है, उसको बदल सकती है. वैलिडेट करें, डोंट फिक्स. यानी कि हमारी परवरिश में हमें सिखाया गया था कि अपने जज्बात को दबा दो, रोते नहीं है, बड़े हो जाओ, ठीक है, इतनी सी बात पर रोना. हमने सीखा कि रोना बुरा है, लेकिन हीलिंग का रास्ता वैलिडेशन से होकर गुजरता है. जब आपका बच्चा दुखी हो, परेशान हो या गुस्से में हो, तो उसे सल्यूशन मत दीजिए, उसे ये मत कहिए इट्स नथिंग, बल्कि उसकी आंखों में देख कर कहिए, मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें दुख हो रहा है, और मैं यही हूँ तुम्हारे साथ. सो ब्यूटीफुल लेडीज, जब आप ये कहती है ना, तो आप दरअसल ये कह रही होती हैं कि तुम्हारी फीलिंग्स गलत नहीं है, तुम जैसे हो ठीक हो. दिस वन सेंटेंस, आई सी यू एंड आई एम हियर, ब्रेक्स डेकेड्स ऑफ इमोशनल सप्रेशन. हाँ जनाब, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वो सदियों की जो इमोशनल सप्रेशन है, वो एक चुटकी में टूट जाती है. ये उन्हें सिखाता है कि उन्हें अपने इमोशन से डरना नहीं है. हाँ जी, तीसरी चीज मुझे लगती है कि करेज टू अपोलोजाइज, यानी कि माफी मांगने की जो क्षमता है, जो हिम्मत है, वो इतनी आसान नहीं है. शायद सबसे मुश्किल है, मगर सबसे जरूरी है. एंड द पावर ऑफ एन अपोलॉजी. हमारे कल्चर में एक गलत फहमी है कि अगर माँ बाप ने माफी मांगी तो उनकी अथॉरिटी, उनका रुतबा कम हो जाएगा, इज्जत घट जाएगी. बिल्कुल नहीं, मगर सच इसके बिल्कुल उल्टा है. जब आप अपने बच्चे से माफी मांगते हो तो आपकी इज्जत उनकी आंखों में 100 गुना बढ़ जाती है. अगर आपने किसी दिन थकान में बच्चे पर चीख दिया या बेवजह डांट दिया, तो बाद में उनके पास जाइए, कहिए, बेटा अम्मी ने गलत कर दिया, आई एम सॉरी, मेरा मूड ऑफिस की वजह से खराब था और मैंने तुम पर गुस्सा निकाला, आई एम सॉरी, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट. जब आप माफी मांगते हैं तो आप बच्चे को दो बहुत बड़ी बातें सिखाते हैं. पहली कि रिस्पेक्ट एक टू वे स्ट्रीट है, और दूसरी कि इंसान से गलती होती है और उसे सुधारा जा सकता है. तो आप ये उसे सिखा रहे हैं कि भाई, अकाउंटेबिलिटी बाय मॉडलिंग इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बस ये छोटी मोटी चीजें जब हम अपनी लाइफ में, वो कहते हैं ना, इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो शायद धीरे धीरे जब हम अपने माइंड में बड़े हो रहे होते हैं, हमारे बच्चे हमें देखकर बहुत कुछ सीख रहे होते हैं. वेल, इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है विरासत का इंतखाब. अक्सर हमें लगता है कि हीलिंग का मतलब है कि हम अपने पेरेंट्स की हर एक बात को ना इनकार कर दें, मगर ऐसा नहीं है. हीलिंग का मतलब है सिलेक्टिव इनहेरिटेंस. आप एक छलनी लीजिए, ठीक है, अपनी परवरिश की अच्छी चीजें, जैसे उनका मेहनती होना, उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनके खानदान को साथ लेकर चलना, उसे अपने पास रखिए, मगर उनका डर, उनकी रिजिडिटी, उनकी शेमिंग वाला तरीका, उसे वहीं छोड़ दीजिए. ठीक है, आस्क योरसेल्फ, मैं अपने पेरेंट्स की कौन सी खूबी अपने बच्चे को देना चाहती हूँ और कौन सी बुराई यही खत्म करना चाहती हूँ.

आप अपनी विरासत के मालिक हैं, गुलाम नहीं, तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखने की जरूरत है। एक और चीज है, वो है जज्बात की बारीकी को समझना। हमारी पुरानी जनरेशन में सिर्फ दो या तीन इमोशंस होते थे, हाँ, गुस्सा, खुशी या खामोशी। हमने कभी नहीं सीखा कि गुस्से के पीछे क्या छुपा है। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो सिर्फ मैं गुस्से में हूँ मत कहिए, उसे एक नाम दीजिए, लेबल इट कि मैं थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ, या फिर क्या मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, या शायद आप इंसल्टेड महसूस कर रही हैं। जब आप अपने इमोशंस को ना बारीकी से समझती हैं, तो आपका बच्चा भी वही सीखता है। उन्हें सिखाएं कि इट्स ओके टू फील सैड, एंग्री एट समटाइम्स। इमोशंस जो होते हैं ना, वो हमारे दुश्मन नहीं है, बस मैसेज देने का तरीका सही होना चाहिए। और उसके बाद भाई, लोग क्या कहेंगे वाली स्क्रिप्ट अपनी कहानी खुद लिखें। लोग क्या कहे को हमको एडिट करना पड़ेगा। हाँ जी, हमने सेगमेंट टू में बात की थी कि मगर इसे तोड़ने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, वो है वैल्यूज और ओपिनियंस। एक पेपर पर लिखिए कि आपके लिए एज अ पेरेंट सबसे जरूरी वैल्यू क्या है, क्या वो काइंडनेस है या ऑनेस्टी। जब आपका बच्चा मॉल में शोर मचाए और लोग आपको देख रहे हो, अरे, तो उन लोगों की नजरों से ज्यादा अपनी वैल्यूज पर ध्यान दे। अगर आपकी वैल्यू कंपैशन है, तो आप बच्चे को डांटेंगे नहीं, बल्कि उसे समझाएंगे। लोगों की राय, ओपिनियन हर मौसम की तरह बदलती रहती है, मगर आपका बच्चा और आपका साथ उसके साथ, ये रिश्ता उम्र भर का है। तो अपने इस लॉन्ग लाइफ रिलेशन को, उस बॉन्ड को, चार लोगों की वजह से चेंज मत होने दें, ठीक है? उसके बाद खेल में शिफा, या यूं कहें खेल में हीलिंग। ट्रेडिशनल एशियन होम्स में पेरेंटिंग बहुत सीरियस होती है। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। डिसिप्लिन का मतलब ये बड़ा ही सीरियस हो जाता है, मतलब कि सीरियस ही रहना। मगर ब्यूटीफुल लेडीज, रिसर्च कहती है कि प्लेइंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हीलिंग। जब आप अपने बच्चे के साथ जमीन पर बैठकर खेलते हैं, तो आप उनके इक्वल बन जाते हैं। खेलने से डर खत्म हो जाता है, सेफ्टी पैदा होती है, और अगर आपने दिन में बच्चों को डांटा है, तो शाम को उनके साथ थोड़ी मस्ती कीजिए, थोड़ा हंसी मजाक कीजिए। ये प्लेफुल रिएक्शन पूरे जख्मों पर मरहम का काम करता है। एंड लाफ्टर इज द साउंड ऑफ हीलिंग एट होम। हाँ जी। एंड देन कम्स सेल्फ कंपैशन। हाँ जी, खुद पर रहम कीजिए। ये सबसे ना गहरी टिप है। हम अक्सर अपने पेरेंट्स को तो माफ कर देते हैं, मगर खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। हम ये मॉम गिल्ट में जी रहे होते हैं। याद रखिए, आप एक ऐसी चीज करने की कोशिश कर रही हैं जो आपके खानदान में किसी ने नहीं की। यू आर ब्रेकिंग अ साइकिल जो कि 100 सालों से चल रहा है। गलतियां तो होंगी ना, कभी आप चीखेंगी, कभी आप फेल होंगी। उस वक्त अपने आप से वही बात कीजिए जो आप अपने सबसे अच्छी दोस्त से कहेंगी। जैसे कि मैं कहूंगी, अमिता, तुमने आज एक गलती की, मगर तुम एक बुरी माँ नहीं हो, तुम सीख रही हो, और कल एक नया दिन होगा। वेल, जब आप खुद पर रहम करती है ना, तभी आप अपने बच्चों को वैसे ही काबिल बना पाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है जब हम अपने पेरेंटिंग हीलिंग कर रहे हो, अपने माइंड को एकदम रिफ्रेश कर रहे हो, है कि नहीं? वेल, अब वक्त है जाने का, तो मैं कहूंगी जाते जाते एक छोटी सी टिप, और वो ये है, योर चिल्ड्रन डोंट नीड अ हीरो, दे नीड अ ह्यूमन। हाँ जी, हम सबने सुपर मॉम और सुपर डैड बनने की ना कोशिश में अपनी रातों की नींद हराम कर ली है। हम चाहते हैं हम परफेक्ट दिखें, मगर बच्चों को परफेक्शन से डर लगता है। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो कभी कभी हक जाता हो, जो कभी गलती करता हो, कभी उनके साथ बैठकर कुछ बातें कर ले, कुछ गेम्स खेल ले। यस, बी रियल विद देम, बी वल्नरेबल। जब आप उनके सामने ह्यूमन बनते हो ना, तो आप उन्हें भी ह्यूमन बनना सिखाते हो, वो भी चीजों को समझ पाते हैं। वेल, वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का, तो मुझे जाना होगा, इजाजत दीजिए। और ये जो जनरेशनल हीलिंग की आज हमने बात की थी, इसको सिर्फ आज मेरी पहचान तक सीमित ना रखें। कोई चीज जो आपको अच्छी लगी है, उसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल जरूर करें।
और यही बातें इन्हें हम आगे बढ़ाएंगे हमारे अगले एपिसोड में, जो कि अगले हफ्ते सेम टाइम में लेकर आऊंगी एफएम 107 पर मेरी पहचान में। ये शो आपको कैसा लगा आप बेशक मुझसे शेयर कर सकते हैं 666-22107 पर, 666-22107 पर अपने नाम के साथ, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एफएम 107 के उस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आरजे मीता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। और कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मुद्दा जो आप चाहते हैं कि मेरी पहचान में उठना चाहिए, मेरी पहचान के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो वो भी सजेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अब आप और मैं मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 Qatar. दिल से देसी.

दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश।

0: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा शो जहां पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन एफएम 107। दिल से देसी।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ खो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो शो जहां हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया की उन इंटरेस्टिंग लेकिन साथ साथ फैसिनेटिंग राजों को जो नेचर ने हमसे छुपाए हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं वो हमसे आंख मिचोली खेल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक लिटरल सेंस में हिला देने वाला है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उन पौधों की जो कि मूव करते हैं। जी बिल्कुल साथियों, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं बल्कि असल जिंदगी का बोटैनिकल एडवेंचर है। कभी आपने ये सोचा है कि एक पौधा आपके टच करने पर हिल जाए, या कोई ग्रीन लीफ अपने शिकार को ट्रैप करके खा जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कोई डायनासोर या कोई हंटर हो। और कुछ पौधे तो एक्टिंग के उस्ताद भी निकले हैं भाई, बिल्कुल बॉलीवुड के मिमिक्री स्टार्स की तरह। साथियों, नेचर के इस शो में आज हम जानेंगे 3 सुपरस्टार्स के बारे में, यानी सेंसिटिव प्लांट्स जो टच करने पर फौरन फोल्ड हो जाते हैं। यूं समझें कि आपके टच करने पे ऐसे जैसे शर्मा गए हों। कार्निवोरस प्लांट्स जिन्हें फास्ट फूड का नहीं मूविंग फूड्स का शौक है, ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि कह रहे हों भाई हमारा तो बग एपिटाइट है। और उसी के साथ साथ तीसरे नंबर पर है हमारे पास जानने को मिमिक्री इन नेचर, जहां पौधे अपने आप को दूसरे प्लांट्स, पत्तों या एनवायरनमेंट जैसा बना लेते हैं ताकि प्रेडेटर्स को कंफ्यूज कर सकें। वाह भाई, ये भी क्या मजे की एक्टिंग है। जरा सोच के देखिए साथियों, हम ह्यूमंस अपने फिटनेस गोल के लिए मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ये पौधे तो बिना जिम जाए ही, बिना ट्रेडमिल किए ही अपने मूव से दुनिया को अमेज कर देते हैं। तो तैयार हो जाइए भाई एक ऐसे ग्रीन एडवेंचर के लिए जहां हर पत्ता एक मिस्ट्री है, हर फ्लावर एक ट्रिक और हर मूवमेंट एक स्टोरी कहती है। आज हम खोलने जा रहे हैं नेचर के मूविंग मिरेकल्स का चैप्टर, वो भी पौधों से रिलेटेड, जहां पौधे भी इंसानों की तरह रिएक्शन, एक्शन और इमोशन दिखाते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं ये बोटैनिकल सफर जहां प्लांट्स सिर्फ

ग्रो नहीं करते, परफॉर्म भी करते हैं भाई। और हम इनके लिए कह सकते हैं लाइट्स, कैमरा, क्लोरोफिल। साथियों, कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप किसी पौधे को टच करें और वो एकदम से आपके टच पर रिएक्ट कर जाए? बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे नेचर ने अपने एक्टर्स रेडी कर लिए हों भाई। और उनमें से सबसे ज्यादा ड्रामेटिक रोल निभाता है मिमोसा पुडिका, जिसे हम प्यार से लाजवंती भी कहते हैं, या कई लोग इसे टच मी नॉट के नाम से भी जानते हैं। नाम से ही ये काफी पोएटिक है ना, शर्मीला सा, नाजुक सा, और ऐसा लगता है जैसे दिल से बहुत ही इमोशनल हो। साथियों, टच मी नॉट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पौधा है जो असल में साउथ अमेरिका से ताल्लुक रखता है, लेकिन अब दुनिया के कई हिस्सों में मिलता है, यानी एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक। इसका इंग्लिश में नाम है सेंसिटिव प्लांट या टच मी नॉट, और साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका, जिसे अक्सर लोग हिंदी में लाजवंती भी कहते हैं। और अगर उर्दू में लिटरल इसका मतलब लें तो बनता है शर्मीली या नाजुक मिजाज। लैटिन वर्ड पुडिका का मतलब भी मॉडेस्ट या शाय है, यानी दोनों जबानों में इसका मतलब लगभग एक ही है, एक ऐसा पौधा जो छूने पर शर्मा जाए भाई। अब आप पूछेंगे कि ये पौधा करता क्या है? तो भाई, जब आप इसके पत्तों को छूते हैं तो ये फौरन से अपने पत्ते बंद कर लेता है, फिर कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुपचाप हो जाता है, और जब सब कुछ सेफ फील होने लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर से अपने पत्ते खोल लेता है, जैसे हमें ऐसे कह रहा हो, हाँ भाई अब सब कुछ ठीक है, अब नॉर्मल है, अब मुझे कोई शौक नहीं। और इसका ये पूरा सीन इतना नेचुरल और मेस्मराइजिंग लगता है, इसको देखकर हमें लगता है कि जैसे हम किसी बोटैनिकल परफॉर्मेंस को देख रहे हों, लेकिन इस परफॉर्मेंस के पीछे एक जबरदस्त साइंस छुपी है भाई। ये रिएक्शन एक्चुअली स्टिग्मोनेस्टी कहलाता है, यानी मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच। जब टच मी नॉट के पत्तों को छुआ जाता है तो उसके सेल्स के अंदर पानी का प्रेशर एक साइड से दूसरी साइड मूव करता है, और ये प्रेशर डिफरेंस उन पत्तों को फोल्ड कर देता है। प्लांट के जॉइंट्स जैसे स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम बुल्विनस कहते हैं, वो इस हाइड्रोलिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे मसल्स रिएक्ट करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि ये मसल मूवमेंट नहीं करते, बस वाटर प्रेशर मूवमेंट करते हैं। हर पत्ता और हर स्टेम का रिएक्शन नेचर के एक ब्रिलियंट डिजाइन को दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये पौधा ऐसा करता क्यों है भाई? क्या ये सिर्फ नाटक कर रहा है? अरे भाई नहीं, ये उसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई इंसेक्ट या एनिमल उसके पास आता है और उसे छू लेता है तो ये सडन फोल्डिंग प्रेडेटर्स को कंफ्यूज कर देती है। उन्हें लगता है कि पौधा या तो पॉइजनस है या मर गया है। और भाई उसके नतीजे में होता क्या है? उसके नतीजे में ये होता है कि उसे खाना छोड़ देते हैं। ये टच मी नॉट का अपना नो टच पॉलिसी है, यानी एक स्मार्ट, साइलेंट और नेचुरल शील्ड। साथियों, 18th सेंचुरी में जब साइंटिस्ट्स ने पहली बार ये मूवमेंट देखा तो सब के सब हैरान रह गए। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि पौधों के पास नर्वस सिस्टम भी होता है भाई। उनके लिए समझना बहुत मुश्किल था कि एक बेजान लगने वाला पौधा किस तरह रिएक्ट कर सकता है। बाद में रिसर्च से पता चला कि पौधों के पास नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन उनके सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केमिकल मैसेजेस सर्कुलेट करते हैं, वो भी बिल्कुल इंसानों के नर्वस रिस्पॉन्सेज जैसे। मॉडर्न रिसर्च ने ये भी बताया कि प्लांट्स के अंदर कहीं ना कहीं याददाश्त की स्टेबिलिटी भी थोड़ी बहुत होती है। अगर आप एक टच मी नॉट प्लांट को बार बार छुएंगे तो कुछ दफा के बाद वो इतना रिएक्ट नहीं करेगा, जैसे कि उसने सीख लिया हो कि आप उसके लिए थ्रेट नहीं हो। ये प्लांट मेमोरी का कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट के लिए भी बहुत फैसिनेटिंग है। साथियों, जरा सोचिए, एक पौधा जो ना बोल सकता है ना चल सकता है, फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए एक ब्रिलियंट प्लान बना लेता है। तो अगली बार जब आप किसी टच मी नॉट प्लांट के पास से गुजरें, तो जरा आहिस्ता से गुजरिएगा भाई। ये पौधा आपके टच से शर्मा कर अपने पत्ते बंद कर लेगा। साथियों, टच मी नॉट हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में हर रिएक्शन के पीछे एक रीजन होता है। नेचर के ये छोटे छोटे ड्रामास सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कई दफा जो हमें सिर्फ इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, वो असल में जिंदगी बचाने का एक साइलेंट तरीका होता है। ये है नेचर का ड्रामा।
जहां हर सीन के पीछे अपनी ही एक साइंस होती है और हर मोमेंट एक कहानी सुनाती है। इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे और भी प्लांट्स के बारे में मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करेंगे। सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद सफा।

0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद सफा ऑन एफएम 107। साथियों, जब हम नेचर में डीप डाइव करते हैं तो समझ आता है कि जिंदगी सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, कुछ पौधे भी ऐसे हैं जो फील करते हैं, यानी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और उसका जवाब देते हैं मूवमेंट के जरिए। ये हैं सेंसिटिव प्लांट्स, यानी रिएक्शन वाले पौधे। ये पौधे टच, लाइट, वाइब्रेशन, टेम्परेचर या मॉइस्चर के रिस्पांस में मूव करते हैं। इनका हर मूवमेंट एक नेचुरल रिएक्शन होता है, जो कभी डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है, कभी अडेप्टेशन के लिए, और कभी तो सिर्फ इसलिए कि नेचर उन्हें थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाना चाहती है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक

0: मगर कहीं जाइएगा मत, वापस आके आपको और भी ढेर सारी बातें बतानी हैं प्लांट्स के बारे में।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
3: दोस्तों, बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों। लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना ना सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है। वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं। अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए जैसे कि स्पार्क, झटका या यूजुअल स्मेल, तो फॉरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिसेस की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
5: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ RJ नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
6: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107। FM 107। दिल से देसी।
5: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद सफा ऑन FM 107। चलिए इन बोटानिकल परफॉर्मर्स से मिलते हैं। साथियों, अब आपकी मुलाकात कराती हूँ एक और ग्रेसफुल पौधे से जिसका नाम है ऑक्सेलिस, जिसे हम वुड सॉरेल भी कहते हैं। ये पौधा अपनी ब्यूटी के साथ एक इंटरेस्टिंग हैबिट भी रखता है। इसके पत्ते लाइट और टेम्परेचर के हिसाब से हिलते हैं। सुबह जब सूरज निकलता है तो ये पत्ते खुल जाते हैं जैसे नेचर को गुड मॉर्निंग कह रहे हों, और शाम को जब अंधेरा होने लगता है तो ये पत्ते आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सोने से पहले अपनी आंखें बंद करते हों। ये मूवमेंट निक्टनेस्टी कहलाता है, यानी लाइट और डार्कनेस के रिस्पॉन्स में होने वाली मूवमेंट। ये प्रोसेस प्लांट को अपनी एनर्जी बचाने और मॉइस्चर रिटेन करने में मदद करता है। साथियों, इसी ग्रुप का अगला मेंबर है एक स्टाइलिश और एलिगेंट ट्री जिसका नाम है एल्बिजिया जुलिब्रिजिन, जिसे सिल्क ट्री या पर्शियन सिल्क प्लांट भी कहते हैं। ये दरख्त अपनी गुलाबी और नरम फ्लावर्स के लिए मशहूर है भाई, लेकिन इसके पत्तों का बिहेवियर भी काफी यूनिक है। रात के वक्त इसके पत्ते फोल्ड हो जाते हैं जैसे पूरा का पूरा ट्री सो गया हो। ये भी एक स्लीप मूवमेंट है जो प्लांट्स में सर्कैडियन रिदम के तहत होती है, मतलब ये पौधा अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के मुताबिक रिएक्ट करता है भाई, दिन में खुला रात में बंद। ये नेचर का एक साइलेंट रिमाइंडर है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना स्लीप स्केड्यूल होता है, चाहे वो इंसान

हूँ या पौधे। और अब साथियों एंट्री होती है सबसे एंटरटेनिंग और म्यूजिकल पौधे की, जिसे हम कहते हैं डेस्मोडियम गैरेंस, जिसे लोग टेलीग्राफ प्लांट या डांसिंग प्लांट भी कहते हैं। ये पौधे लिटरली डांस करते हैं भाई। इसके छोटे पत्ते अपनी रिदम पर मूव करते हैं सनलाइट, साउंड और वाइब्रेशंस के रिस्पांस में। अगर आप इसके आसपास म्यूजिक बजाएं, तो ये पत्ते हल्के हल्के हिलने लगते हैं, जैसे किसी ने उन्हें बीट पे ग्रूव करना सिखा दिया हो। साइंस कहती है कि ये मूवमेंट एनर्जी बैलेंस और टेम्परेचर रेगुलेशन का एक तरीका होता है। लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो यूं लगता है जैसे नेचर ने कॉन्सर्ट का फ्रंट रो परफॉर्मर भेज दिया हो। साथियों ये सब पौधे एक बात कॉमन रखते हैं, जो कि है रिएक्शन। हर मूवमेंट के पीछे एक रिस्पांस छुपा होता है, सर्वाइवल, एडेप्शन या इंटरेक्शन। ये प्लांट्स हमें बताते हैं कि नेचर में सब कुछ जिंदा है। हर लीफ एक स्टोरी कहता है और हर मोशन एक इमोशन है। सेंसिटिव प्लांट्स हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ के छोटे सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी सबसे साइलेंट चीजें ही सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं। बस देखने के लिए नजर और समझ के लिए दिल चाहिए होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ FM 107 पर। आप सुन रहे हैं शो एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद सफा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मगर कहीं जाइएगा मत। वापस आके आपको और भी ढेर सारी बातें बतानी है प्लांट्स के बारे में।

0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद सफा ऑन एफएम 107। साथियों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेचर के सबसे थ्रिलिंग और डेंजरस परफॉर्मर्स की, यानी शिकारी पौधों के बारे में, यानी कार्निवोरस प्लांट्स। ये वो पौधे हैं जो बस सनलाइट और वाटर पर खुश नहीं रहते। इनका मूड अलग है, इनकी डाइट प्लान अलग है, ये अपना खाना खुद पकड़ते हैं भाई, यानी इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स और कभी कभी छोटी मक्खियां तक। ये सच में प्लांट्स विद एटीट्यूड हैं। ये पौधे ज्यादातर न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल्स में ग्रो करते हैं, यानी जहाँ जमीन उन्हें मिनरल्स नहीं देती, तो ये अपने प्रोटीन सोर्स आसमान से ढूंढ लेते हैं भाई, यानी लिटरली फ्लाइंग इंसेक्ट्स। हर कार्निवोरस प्लांट का अपना एक यूनिक हंटिंग स्टाइल होता है। कुछ प्लांट्स ट्रैप्स लगाते हैं, कोई ल्योर करता है और कोई साइलेंटली डाइजेस्ट कर लेता है। चलिए मिलाते हैं इन बॉटेनिकल हंटर्स से आपको और बताते हैं एक एक करके इनके बारे में आपको डिटेल्स। तो भाई साथियों, सबसे पहली एंट्री होती है नेचर के सुपर शिकारी की, जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। साथियों इस पौधे के बारे में आपको ये बता दूं कि ये पौधा हॉलीवुड के हॉरर मूवी मॉन्स्टर से कम नहीं। इसके पत्ते दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, यानी बिल्कुल एक माउथ की तरह। जब कोई इंसेक्ट उसके बीच में बैठता है और पत्तों के अंदर मौजूद टाइनी हेयर लाइक सेंसर्स को दो बार टच करता है, तो भाई ये ट्रैप स्नैप करके बंद हो जाता है। ये मैकेनिज्म बिल्कुल एक नेचुरल माउस ट्रैप जैसा होता है, इसीलिए तो इसे कहते हैं स्नैप ट्रैप। अंदर का डाइजेस्टिव फ्लूइड इंसेक्ट को डिसॉल्व कर देता है और कुछ दिन बाद जब मील कंप्लीट हो जाता है तो ट्रैप फिर से खुल जाता है, यानी इट इज अगेन रेडी फॉर द नेक्स्ट विक्टिम। भाई वीनस फ्लाई ट्रैप का साइंटिफिक जीनियस ये है कि वो अपने ट्रैप को हर बार वेस्ट नहीं करता। अगर पहली बार सिर्फ हवा या कोई पत्ता टच कर जाए तो वो बंद नहीं होता। इसका मतलब ये कि प्लांट सोच कर डिसाइड करता है कि मूव करना है कि नहीं, यानी नेचर का अपना स्मार्ट सेंसर सिस्टम है इसके अंदर मौजूद भाई। और साथियों आपको ये भी बता दूं कि वीनस फ्लाई ट्रैप सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ कैरिलोना के कोस्टल वेटलैंड्स में नेचुरली मिलता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पौधा अपना ट्रैप सिर्फ कुछ बार ही बंद कर सकता है, फिर वो मर जाता है। मतलब हर स्नैप केयरफुली सोचा समझा डिसीजन होता है। चलिए साथियों अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जंगल के दूसरे पौधे के बारे में, यानी निपेंथिस, जिसे पिचर प्लांट भी कहते हैं। इस पौधे के लीव्स कप शेप्ड के होते हैं, जैसे एक छोटी सी बॉटल होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। इस कप के अंदर होता है एक स्वीट सा नेक्टर जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट अंदर की तरफ गिरता है तो वो स्लिपरी सरफेस की वजह से फिसल जाता है और कप के अंदर ही अटक जाता है। वहाँ फिर एक एसिडिक डाइजेस्टिव लिक्विड होता है मौजूद, जो उस इंसेक्ट को डिसॉल्व कर देता है, एक स्लो बट श्योर डेथ ट्रैप। साथियों कुछ निपेंथिस स्पीशीज तो इतने बड़े होते हैं कि वो फ्रॉग्स और छोटी छोटी छिपकलियां तक पकड़ लेते हैं। मतलब ये कि ये सिर्फ इंसेक्ट ईटर नहीं बल्कि कभी कभी एम्फेबियन हंटर्स भी बन जाते हैं। और एक मजे की बात ये है कि कुछ साइंटिस्ट्स ने निपेंथिस के नेक्टर को नेचर्स डिसेप्टिव परफ्यूम कहा है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को अपनी खुशबू से बेवकूफ बनाकर उनकी मौत की तरफ खींच कर ले आते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब मिलते हैं ब्यूटी और डेंजर के परफेक्ट मिक्सचर से, यानी डॉर्सीरा, जिसे सन ड्यू प्लांट कहते हैं। दूर से देखो तो लगता है जैसे पत्तों पर शबनम की बूंदें चमक रही हों, लेकिन ये ड्यू ड्रॉप्स, भाई ये ड्यू ड्रॉप्स तो असल में स्टिकी ग्लैंड्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब कोई इंसेक्ट इन चिपकने वाले ग्लैंड्स पर बैठता है तो वो अटक ही जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा लीफ उसके इर्द गिर्द फोल्ड होने लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को स्लो मोशन में हग मिल रही हो। ये स्टिकी ट्रैक सिस्टम इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है और उनके न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ में इस्तेमाल होते हैं। साथियों ड्रोसीरा की कुछ स्पीसीज अपनी टेंटिकल्स को इतनी तेजी से मूव करती हैं कि वो एक इंसेक्ट को सिर्फ कुछ सेकंड्स में पकड़ लेती हैं। ये स्पीड कार्निवोरस वर्ल्ड में रिकॉर्ड ब्रेकिंग है भाई। चलिए अब जरा पानी के नीचे चलते हैं। अच्छा ये बताएं, आप में से कितने लोगों को तैरना आता है? नहीं आता तो कोई बात नहीं, इमेजिन ही कर लीजिए। अब जरा पानी के नीचे एक डुबकी मारते हैं। यहाँ रहता है एक शिकारी जो अंडर वाटर अटैक करता है। मैं बात कर रही हूँ उत्रिक्युलेरिया की, जिसे ब्लैडर वॉट कहते हैं। ये कार्निवोरस प्लांट अपनी छोटी छोटी ब्लैडर्स के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टाइनी इंसेक्ट्स को सक करता है। ये ब्लैडर्स एक नेचुरल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं। जैसे ही कोई छोटा सा प्रे उनके ट्रैप के आसपास आता है तो भाई सक्शन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और प्रे ब्लिंक ऑफ एन आई में अंदर खिंच जाता है। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि एक सेकंड का भी टेंथ पार्ट नहीं लगता। साथियों, यूट्रिक्युलेरिया दुनिया का सबसे फास्ट कार्निवोरस प्लांट माना जाता है और इसे तो कुछ लोग एक परफेक्ट अंडर वाटर असैसिन भी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब मुलाकात करते हैं एक सॉफ्ट बट स्मार्ट शिकारी से, यानी पिंक्युकुला से, जिसे बटर वॉट कहते हैं। इसके पत्ते सॉफ्ट और स्टिकी होते हैं, जिनकी सरफेस पर एक ऑयल लाइक लेयर होती है। इंसेक्ट्स इसके शाइनी टेक्सचर से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लैंड करते हैं भाई वो बेचारे चिपक जाते हैं। फिर क्या होना होता है, फिर लीफ अपने एजेस से थोड़ा सा कर्ल होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर देता है, यानी एक स्लो साइलेंट डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये प्लांट मोस्टली फ्रूट फ्लाइज और छोटी मोटी मक्खियों पर जिंदगी गुजारता है। और साथियों, पिंक्युकुला के स्टिकी लीव्स नेचर के इको फ्रेंडली फ्लाई पेपर कहलाते हैं, क्योंकि यूरोप के लोग पहले इसके पत्तों का यूज बटर बनाते वक्त सरफेस पॉलिश करने के लिए करते थे, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा बटर वॉट। तो साथियों, ये हुए नेचर के असली ग्रीन हंटर्स। इन पौधों ने दिखाया कि सर्वाइवल के लिए सिर्फ रूट्स और सनलाइट काफी नहीं होते, कभी कभी स्मार्ट स्ट्रेटजीज और किलर इंस्टेंट भी चाहिए होते हैं। इनका मैसेज सिंपल है भाई, हर पौधा इनोसेंट नहीं होता। नेचर के इस ग्रीन जंगल में कुछ लीव्स भी दांत रखते हैं, बस माइक्रोस्कोपिक साइज में। साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद सफा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे और भी दिलचस्प इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे मजीद प्लांट्स के बारे में। सुनते रहिए FM 107।

0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में, लेकिन कोई मामूली प्लांट्स नहीं, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और यूनिक प्लांट्स जो दूसरे प्लांट से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। साथियों, अगर आपने कभी सोचा हो कि नेचर सिर्फ सर्वाइवल और फोटोसिंथेसिस तक ही महदूद है, तो तैयार हो जाइए एक और फैसिनेटिंग वर्ल्ड के लिए, यानी मिमिक्री प्लांट्स के बारे में बात कर रही हूँ। यानी एक्टिंग वाले पौधे भाई, ये पौधे लिटरली एक्टर्स हैं। ये अपने सराउंडिंग्स, दूसरे प्लांट्स या इंसेक्ट्स की नकल करके अपनी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस एनहेंस करते हैं। ये प्लांट्स हमें सिखाते हैं कि नेचर में इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ब्रेन नहीं होता, कभी कभी क्रिएटिविटी, डिसेप्शन और स्ट्रेटजी भी इंटेलिजेंस होती है। चलिए इन नेचर के ग्रीन एक्टर्स से मिलते हैं और उनके अमेजिंग टैलेंट को एक्सप्लोर करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ड्रामेटिक एक्टर स्पेक्यूलम की, यानी मिरर ऑर्चिड। ये फ्लावर इतना परफेक्ट मिमिक्री परफॉर्म करता है कि लगता है जैसे नेचर ने फीमेल बी की एग्जैक्ट रेप्लिका बना दी हो। इसका कलर, टेक्सचर और स्मेल तक फीमेल बी से मिलती जुलती होती है। इस क्लेवर मिमिक्री का मकसद है जब मेल बी इस फ्लावर को फीमेल समझकर अप्रोच करता है तो नेचुरली पोलन स्प्रेड हो जाता है, और ये इसकी एक ब्रिलियंट ट्रिक है। यानी फ्लावर ने फीमेल बी का रोल एडॉप्ट करके अपना रिप्रोडक्टिव काम पूरा कर लिया। साथियों, साइंटिस्ट कहते हैं कि मेल बीज कभी ये डिसेप्शन रियलाइज कर ही नहीं पाते। फ्लावर के डिजाइन में इतनी परफेक्शन है कि इंसेक्ट्स लिटरली फूल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को डिसेप्शन पॉलिनेशन कहते हैं और ये ऑर्चिड स्पीशीज के लिए एक एवोल्यूशनरी जीनियस मूव है। साथियों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और स्मार्ट सर्वाइवल स्ट्रेटेजी की। हम बात कर रहे हैं पिसी फ्लोरा की, यानी पैशन फ्लावर वाइन की। ये प्लांट अपनी लीव्स पर बटरफ्लाई एग्स के पैटर्न बना लेता है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है। साथियों, पिसी फ्लोरा के लीव्स पे फेक एग पैटर्न्स बन जाते हैं जिसे देखकर रियल बटरफ्लाईज वहाँ एग्स नहीं देती। साथियों, बटरफ्लाईज यूजली सेम स्पॉट पर एग्स नहीं देती। अगर वहाँ ऑलरेडी एग्स मौजूद हो तो भाई पिसी फ्लोरा के लीव्स पे फेक एग पैटर्न बन जाते हैं जिसे देखकर रियल बटरफ्लाईज वहाँ एग नहीं देती। इस तरह प्लांट अपनी लीव्स को प्रोटेक्ट कर लेता है, एक विजुअल डिसेप्शन डिफेंस स्ट्रेटजी। साथियों, ये पैटर्न इतने रियलिस्टिक होते हैं कि साइंटिस्ट को भी कभी कभी माइक्रोस्कोप के साथ कंपेयर करना पड़ता है कि ये एग्स फेक हैं या रियल। भाई, नेचर ने इस प्लांट को एक प्रोटेक्टिव विजुअल डिस्गाइज दिया है, बिल्कुल एक परफेक्ट आर्टिस्ट की तरह। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और अगले स्टार की तरफ मूव ऑन करते हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की तरफ, जिसका नाम है बॉक्यूला ट्राइफोलियोलाटा, यानी चिलियन मिमिक वाइन। ये प्लांट लिटरली अपने आसपास के प्लांट्स के पत्तों का शेप और कलर कॉपी कर लेता है भाई। यानी कि अगर वो एक ब्रॉड ग्रीन लीफ के पास ग्रो कर रहा हो तो उसके पत्ते भी ब्रॉड ग्रीन हो जाते हैं। अगर वो रेड या पैटर्न लीफ के पास हो तो वो भी वही मिमिक करता है। ये प्लांट दुनिया का ओनली नोन प्लांट है जो फिजिकल मिमिक्री कर सकता है, और ये सब कुछ ये सर्वाइवल के लिए करता है। यानी प्रेडेटर्स को कंफ्यूज करता है और अपनी एग्जिस्टेंस सिक्योर करता है। साथियों, इस पौधे का एक फन फैक्ट ये है कि ये पौधा इतना एडवांस है कि ये एनवायरनमेंट के हर सटल सिग्नल को डिटेक्ट कर लेता है। सनलाइट, सराउंडिंग, लीफ पैटर्न एंड इवन सीजनल चेंजेस के हिसाब से अपना कलर और शेप एडजस्ट करता है। ये एक लिविंग एग्जांपल है कि प्लांट्स भी लुक एंड ब्लेंड करना सीख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ के बात करें तो आता है एक मास्टर ऑफ कैमोफ्लाज, जिसको कहा जाता है लिपथॉप्स, यानी लिविंग स्टोन्स। ये सक्यूलेंट प्लांट्स बिल्कुल पत्थर जैसे दिखते हैं और इसी डिस्गाइज के जरिए हार्बीवोरस से बचे रहते हैं। अगर आप इन्हें देहान से ना देखें तो लगता है कि ये सॉइल का पार्ट हैं और एनिमल्स इन्हें इग्नोर कर देते हैं। साथियों, लिथॉप्स का डिस्गाइज सिर्फ शेप तक लिमिटेड नहीं होता, इसका कलर भी सराउंडिंग सॉइल के साथ मैच करता है। इस कैमोफ्लेज की वजह से ये एक्सट्रीम एरिड कंडीशंस में सरवाइव कर लेते हैं और अपना वाटर और न्यूट्रिएंट्स रिटेन करते हैं। और साथियों, ग्रीक लैंग्वेज में लिथॉप्स का मतलब होता है स्टोन लाइक। ये प्लांट्स इतने परफेक्टली ब्लेंड करते हैं कि बोटानिस्ट भी शुरू में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका सर्वाइवल ट्रिक सिर्फ हर्बीवोरस से बचना नहीं बल्कि हीट और ड्रॉट से सर्वाइव करने का भी एक तरीका है। तो साथियों, ये सब मिमिक्री प्लांट्स हमें ये सिखाते हैं कि नेचर में सर्वाइवल के लिए क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस इक्वली जरूरी है। कभी कभी अपनी असली आइडेंटिटी छुपाना या सराउंडिंग्स का परफेक्ट इमिटेशन करना लाइफ बचाने के लिए एक पावरफुल टूल बन जाता है। नेचर के ये एक्टर्स हमें रिमाइंड कराते हैं कि हर लीफ और हर पैटर्न का अपना मकसद होता है, चाहे वो पॉलिनेशन हो, सेल्फ डिफेंस हो या कैमोफ्लेज हो। अगर हम उन्हें ऑब्जर्व करें तो समझ आता है कि नेचर के पास हम इंसानों से भी ज्यादा ड्रामा, स्ट्रेटजी और परफॉर्मेंस का टैलेंट है। ये प्लांट्स सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, ये परफॉर्म करते हैं, डिसीव करते हैं और अडेप्ट करते हैं एक लिविंग ब्रीथिंग ग्रीन थिएटर का हिस्सा बनकर। यही लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे प्लांट्स के बारे में मजीद बातें शेयर। आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओनली ऑन FM 107।

0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में, लेकिन कोई मामूली प्लांट्स नहीं, वो प्लांट्स जो नॉर्मल प्लांट से थोड़े से हटकर हैं। तो साथियों चलिए अब बात करते हैं उन पौधों की जो ना सिर्फ सर्वाइव करते हैं बल्कि अपनी मोशन के जरिए एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट भी करते हैं। ये प्लांट्स अपनी मूवमेंट से हमें ये दिखाते हैं कि नेचर सिर्फ स्टैटिक नहीं बल्कि डायनेमिक और इंटेलिजेंट भी है। चलिए मिलते हैं इन नेचुरल मोशन एक्सपर्ट से। सबसे पहले हम बात करेंगे सनफ्लावर की, जो लिटरली सूरज के पीछे पीछे अपना फेस घुमाता है। इस फिनोमेना को कहते हैं हीलियोट्रोपिज्म, यानी सनलाइट की डायरेक्शन में प्लांट का स्लोली मूव करना। साथियों सुबह के टाइम सनफ्लावर अपना हेड ईस्ट की तरफ फेस करता है और पूरे दिन के दौरान आहिस्ता आहिस्ता सूरज के रास्ते के साथ साथ अपनी पोजीशन एडजस्ट करता चला जाता है। शाम को वो वेस्ट की तरफ देखकर रात के लिए रेस्ट मोड में आ जाता है। ये मूवमेंट प्लांट की ग्रोथ हार्मोन्स पर्टिकुलरली ऑक्सिन्स के जरिए कंट्रोल होती है, जो स्टेम्स के सेल्स को अनइवनली इलोंगेट कर देती है और इस वजह से प्लांट अपने हेड रोटेट कर पाते हैं। साथियों यंग सनफ्लावर प्लांट्स ही एक्टिवली सन फॉलो कर सकते हैं। मैच्योर फ्लावर्स फिक्स हो जाते हैं और सीड प्रोडक्शन के लिए ईस्ट फेसिंग पोजीशन में मेंटेन करते हैं ताकि पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हों। साथियों ये सारे पौधे हमें ये रिमाइंड कराते हैं कि नेचर का हर एलिमेंट इंटेलिजेंट क्रिएटिव और डायनेमिक है। हर पत्ते के पीछे एक कहानी छुपी है, हर मोशन के पीछे एक लॉजिक है और हर एडेप्शन के पीछे सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी है। हम जब इन ग्रीन परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो सिर्फ उनके मूव्स नहीं देखते बल्कि नेचर के इनक्रेडिबल विजडम और आर्टिस्ट्री को भी अप्रिशिएट करते हैं। नेचर के ये मूविंग मार्वल्स हमें इंस्पायर करते हैं कि लाइफ में हर सिचुएशन के लिए अडेप्टेबल क्रिएटिव और अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हर मोशन का एक मकसद होता है भाई और हर एडजस्टमेंट एक नई अपॉर्चुनिटी खोलता है। साथियों उम्मीद करती हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की इस एपिसोड से सफा को दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। अब्दुल्ला यासिन एम मूसा, या दोस्तों अब्दुल्ला यासिन एम मूसा रयान के नौजवान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं और कतरी बास्केटबॉल के लिए मुस्तकबिल के रोशन सितारों में उनका नाम लिया जाता है। पॉइंट गार्ड की हैसियत से उनका बुनियादी किरदार बॉल को कंट्रोल करना, टीममेट्स के लिए स्कोरिंग के मौके पैदा करना और गेम की रफ्तार को मुनज्जम रखना होता है। दैट्स क्वाइट अ बिट। कम उम्र के बावजूद उन्होंने अपनी स्किल, स्पीड और कोर्ट विजन से कोचेस की तवज्जो हासिल की है। दोस्तों अर्रयान जैसे मकबूल क्लब में खेलना उनके लिए कीमती तजुर्बा साबित हो रहा है और यहाँ उन्हें सीनियर खिलाड़ियों के साथ सीखने का मौका मिलता है। अब्दुल्ला कतर के यूथ डेवलपमेंट सिस्टम की एक मिसाल हैं, जहां नए टैलेंट्स को तरक्की का मौका दिया जाता है और नेशनल सेटअप में भी उनका नाम उभरते हुए गार्ड्स में शामिल किया जाता है और उनसे मुस्तकबिल में मजीद तरक्की की उम्मीद है। अगर वो मुसलसल मेहनत और ट्रेनिंग जारी रखें तो वो अर्रयान और कतर दोनों के लिए एक अहम प्लेमेकर बन सकते हैं। उनकी लगन और सीखने का जज्बा उन्हें आने वाले सालों में मजीद कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी नेमत की जो कि ना सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है बल्कि जिस्म, दिमाग और दिल को भी सुकून पहुंचाती है, और वो है हंसी यानी लाफिंग। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर शख्स किसी न किसी परेशानी, दबाव या मसरूफियत का शिकार है। ऐसे में अगर हम अपनी जिंदगी में खुशी और हंसी के चंद लम्हे शामिल कर लें तो उसके हैरत अंगेज फवायद हासिल हो सकते हैं। जब हम दिल खोलकर हंसते हैं तो दिमाग ऐसे कुदरती कीमियाई मादे खारिज करता है जिन्हें एंडोर्फिन्स कहा जाता है। ये हमें खुशी, सुकून और इत्मीनान का एहसास दिलाते हैं। जब आप हंसते हैं तो जहनी दबाव कम हो जाता है, जिस्म के मसल्स का तनाव कम होता है, सांस गहरी होती है और जिस्म को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है यानी बेहतर अंदाज में होती है। दिल कुछ देर के लिए

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Welcome back, साथियों. मैं हूँ सफा. आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हम बात करते हैं उन सिंपल डेली हैबिट्स की जो एनवायरनमेंट को खामोशी से लेकिन पावरफुली इम्पैक्ट करती हैं. आज का टॉपिक है अवॉइडिंग डिस्पोजेबल कटलरीज, यानी कि प्लास्टिक स्पून्स, फोक्स, नाइव्स और ये जो स्ट्रॉ वगैरह होते हैं ना, इनसे बचना और रीयूजेबल ऑप्शंस अडॉप्ट करना. ये चीज इतनी कॉमन है कि हम नोटिस भी नहीं करते इसे साथियों, लेकिन हर टेक अवे मील, कॉफी कप या डिलीवरी ऑर्डर के साथ जो डिस्पोजेबल कटलरी आती है वो मिलकर एक मैसिव वेस्ट स्ट्रीम बन जाती है. साथियों, इको स्विच हमें याद दिलाता है कि जो चीज 5 मिनट यूज होती है वो एनवायरमेंट में 500 साल तक रह सकती है. अच्छा, एक रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं. देखिए, सोचिए आप दोहा में किसी अच्छे से कैफे या रेस्टोरेंट से शवरमा, बिरयानी या कॉफी ऑर्डर करते हैं. ऑर्डर के साथ ऑटोमेटिकली प्लास्टिक स्पून आ जाता है, फोक आ जाता है, स्ट्रॉ आ जाता है और नैपकिन पैकेट्स आ जाते हैं. चाहे आपको उनकी जरूरत हो या ना हो, भाई वो तो आ ही जाते हैं. आपका खाना पीना खत्म होता है और कटलरी सीधा बिन में चली जाती है कि नहीं? अब इमेजिन करें कि अगर ये डेली हैबिट बन जाए तो सिर्फ एक इंसान से ही साल भर में हजारों प्लास्टिक कटलरी पीसेस वेस्ट हो सकते हैं. कतर जैसे फास्ट पेस डिलीवरी कल्चर वाली सोसाइटी में ये छोटा सा हैबिट एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्रिएट करता है साथियों. अच्छा, अगर आपको सोचने पर मजबूर करूं तो आपको कुछ फन फैक्ट्स बताती हूं, डिस्पोजेबल कटलरी के हिडन इम्पैक्ट्स बताती हूं. देखिए भाई, दुनिया में हर साल बिलियंस ऑफ प्लास्टिक कटलरी आइटम्स यूज और डिस्कार्ड किए जाते हैं. एक प्लास्टिक स्पून या फोक को डिग्रेड होने में 200 से 500 साल लगभग लग ही जाते हैं. सिर्फ फूड डिलीवरी सेक्टर से ही जनरेटेड जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक वेस्ट होता है ना, वो ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन का सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज्यादातर डिस्पोजेबल कटलरीज रिसाइक्लेबल होती ही नहीं है, क्योंकि ये लाइट वेट और कंटेमिनेटेड होती हैं. देखिए भाई, कतर में फूड डिलीवरी कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है. रेस्टोरेंट्स, कैफेज और ऐप से डेली थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स प्लेस होते हैं. हर ऑर्डर के साथ अगर डिस्पोजेबल कटलरी इंक्लूड हो तो अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो एक सिटी लेवल पर ह्यूज प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है. इको स्विच यहाँ हमें याद दिलाता है कि भाई, स्मॉल रिक्वेस्ट यानी के नो कटलरी नीडेड, ये भी एक पावरफुल एनवायरमेंटल एक्शन है. साथियों देखिए, इको स्विच का यहाँ कॉन्सेप्ट सिंपल है, यानी के अननेसेसरी डिस्पोजेबल आइटम्स को एलिमिनेट करना. जब हम कटलरी रिफ्यूज करते हैं तो रीयूजेबल कटलरी कैरी करते हैं.

0: भाई हम डायरेक्ट प्लास्टिक प्रोडक्शन और वेस्ट दोनों रिड्यूस करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर सिर्फ 20% कस्टमर्स नो कटलरी ऑप्शन सेलेक्ट करें और डिलीवरी ऑर्डर्स दें तो भाई थाउजेंड्स ऑफ टन प्लास्टिक वेस्ट एनुअली अवॉइड किया जा सकता है, वो भी ग्लोबली। भाई देखिए ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हर रीयूज्ड स्पून एक छोटी सी एनवायरमेंटल विक्ट्री हो। जरा सोचिए ना, ऑफिस लंच ब्रेक में आप अपना होममेड फूड लेकर आते हैं लेकिन साथ में कैफेटेरिया से प्लास्टिक स्पून ले लेते हैं जस्ट इन केस। अच्छा अब थोड़ा सा फ्लिप करते हैं। अब इमेजिन करें अगर हर एम्प्लॉय ये हैबिट करे तो ऑफिस बिन्स प्लास्टिक कटलरी से भर जाते हैं, है कि नहीं? देखा है हमने, हाँ भर जाते हैं। इको स्विच अप्रोच कहती है कि अगर आप अपना रियूजेबल स्पून या फोक कैरी करें तो ये डेली वेस्ट कम्प्लीटली एलिमिनेट हो सकता है। अच्छा भाई, डिस्पोजेबल कटलरी अवॉइड करने के लिए मैं आपको कुछ अच्छी सी टिप्स भी दे देती हूँ ताकि वो प्रैक्टिकली आप फॉलो कर सकें इजीली। पहला तो ये, अपना रियूजेबल कटलरी सेट जो स्टील या बैम्बू से बना होता है बैग में कैरी किया करें। दूसरा, फूड ऑर्डर करते वक्त नो कटलरी नीडेड ऑप्शन सेलेक्ट करें। तीसरा, ऑफिस या स्कूल ड्रॉअर में बैकअप रियूजेबल स्पून रखें। चौथा, कैफेज और रेस्टोरेंट्स में पोलाइटली कटलरी रिफ्यूज करें अगर जरूरत ना हो तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों को भी रियूजेबल हैबिट्स सिखाएं ताकि फ्यूचर जनरेशन वेस्ट कॉन्शियस हो। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि कन्वीनियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करना जरूरी है। डिस्पोजेबल कटलरीज ईजी होती है लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉस्टली होती है, एनवायरमेंट के लिए बहुत कॉस्टली। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग नो कटलरी हैबिट अडॉप्ट करते हैं वो जनरली ओवरऑल लेस सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में भी। साथियों, आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है कि हर स्पून फॉक या स्ट्रॉ सिर्फ एक आइटम नहीं होता बल्कि एक एनवायरमेंटल डिसीजन होता है। देखिए भाई, हर बार जब हम डिस्पोजेबल कटलरी रिफ्यूज करते हैं हम प्लैनेट को एक छोटा सा ब्रेक देते हैं। तो भाई अगली बार जब आप ऑर्डर प्लेस करें ना तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। डू आई रियली नीड डिस्पोजेबल कटलरी टुडे? डू यू? तो भाई इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर बाइट सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल चॉइस होता है। सुनते रहिए FM 107, दिल से देश से।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देश से।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं द नेक्स्ट जनरेशन्स विजन फॉर 2030। अगर आज के बच्चों और यंग पीपल को कहा जाए कि आप दुनिया डिजाइन कीजिए, 2030 की दुनिया आपके हिसाब से कैसे होगी, क्या आप सोचते हैं, तो ये सवाल अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, है ना। आज की जो यंग जनरेशन है वो कल के साइंटिस्ट हैं, कल के लीडर्स हैं, कल के एंटरप्रेनर्स हैं और डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स भी। देखिए हर जनरेशन ना अपना मुस्तकबिल इमेजिन करती है, लेकिन आज की जनरेशन पहले ऐसी जनरेशन है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ बड़ी हो रही है, इसलिए उनका फ्यूचर विजन भी बिल्कुल अलग है। आज का स्टूडेंट सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्वाब नहीं देखता, वो क्लाइमेट इनोवेटर, AI एक्सपर्ट, गेम डिजाइनर, स्पेस साइंस

0: आर्टिस्ट या सोशल एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहता है. यंग पीपल की नज़र में 2030 की दुनिया ज्यादा स्मार्ट है, कनेक्टेड है और इंक्लूसिव होनी चाहिए. सबसे पहला विजन एजुकेशन का है. उनका मुस्तकबिल फ्यूचर क्लासरूम सिर्फ बुक्स तक महदूद नहीं होंगे. स्टूडेंट वर्चुअल रियलिटी के जरिए हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करेंगे. साइंस एक्सपेरिमेंट्स डिजिटल लैब्स में होंगे. AI टीचर्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोवाइड करेंगे. हर स्टूडेंट अपनी स्पीड और अपने स्टाइल के मुताबिक सीखेगा, कोई प्रेशर नहीं. दूसरा विजन है हेल्थ केयर का विजन. यंग पीपल ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां डिजीजेस ना हो या हो तो जल्दी से डिटेक्ट हो जाए. वेरेबल डिवाइसेस हेल्थ मॉनिटर करेंगे और हेल्थ केयर सबके लिए एक्सेसिबल हो. एक और विजन है एनवायरमेंट को लेकर. आज की जनरेशन क्लाइमेट चेंज के मसले को बड़ा सीरियसली लेती है और लेना भी चाहिए. उनका ख्वाब है कि 2030 तक ज्यादा ट्रीज लगाए जाएं, प्लास्टिक पोल्यूशन कम हो और क्लीन एनर्जी आम हो जाए. बहुत से यंग पीपल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स को फ्यूचर का जरूरी हिस्सा समझते हैं. टेक्नोलॉजी उनके विजन का एक सेंट्रल पार्ट भी है. दोस्तों 2030 में AI डेली लाइफ का हिस्सा होगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें. जी हाँ, स्मार्ट असिस्टेंट घर चलाने में बड़ी मदद करेंगे. आपके घर में स्मार्ट असिस्टेंट्स होंगे, ट्रैफिक सिस्टम इंटेलिजेंट होगा और बोरिंग या फिर रिपीटेटिव टास्क मशीन संभाल लेंगी. लेकिन यंग जनरेशन ये भी चाहती है कि टेक्नोलॉजी इंसानी वैल्यूज के साथ डेवलप हो. यानी टेक्नोलॉजी पावरफुल हो लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी हो और एक इंटरेस्टिंग चीज सोशल कनेक्शन भी हो. आज के यंग पीपल डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को इम्पोर्टेंस देते हैं. उनका विजन है कि लोग एक दूसरे के कल्चर्स और बैकग्राउंड्स का ज्यादा एहतराम करें. उनके नज़दीक फ्यूचर दुनिया ज्यादा कनेक्टेड और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. जॉब्स भी बढ़ने वाली हैं 2030 में. दोस्तों कुछ जॉब्स होंगी जो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होंगी, लेकिन नई जॉब्स क्रिएट होंगी जो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं. इसीलिए यंग जनरेशन को अडैप्टेबिलिटी को समझना सीखना बहुत जरूरी है. वहीं कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये फ्यूचर के सुपर हीरोज होंगे. स्पेस, हाँ, स्पेस एक्सप्लोरेशन भी उनकी इमेजिनेशन का हिस्सा होगा. आज के बच्चे मार्स मिशन और स्पेस टूरिज्म के बारे में सुनकर बड़े हो रहे हैं. हो सकता है 2030 तक स्पेस टेक्नोलॉजी डेली लाइफ में और भी ज्यादा रोल बड़ा प्ले करे. देखिए यंग जनरेशन का एक और ख्वाब हैप्पीनेस का है. उनके लिए सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं, मेंटल हेल्थ, वर्क बैलेंस, फैमिली पर्पस, ये सब भी फ्यूचर की डेफिनेशन में शामिल है. अगर हम किसी 15 साल के स्टूडेंट से पूछें कि 2030 की दुनिया कैसी होगी तो शायद वो कहे, मैं ऐसी दुनिया चाहता हूँ या चाहती हूँ जहाँ टेक्नोलॉजी इंसानों की मदद करे, एनवायरमेंट साफ हो, हर बच्चे को एजुकेशन मिले और लोग एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आए. और शायद यही सबसे खूबसूरत विजन है, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ बिल्डिंग्स और मशीन का नाम नहीं, फ्यूचर इंसानों का नाम है, फ्यूचर वैल्यूज का नाम है, फ्यूचर उम्मीद का नाम है. और जब यंग जनरेशन इतनी पॉजिटिव और इनोवेशन के साथ सोचती है तो लगता है कि 2030 सिर्फ एक डेट नहीं बल्कि एक डेस्टिनेशन है. एक ऐसी डेस्टिनेशन जहां पहुंचने के लिए हम सबको मिलकर एक बड़ा अहम कदम उठाना होगा, क्योंकि मुस्तकबिल अचानक तो नहीं बनता, मुस्तकबिल आज के फैसलों से बनता है. तो आज आपने क्या फैसला लेना है? चलिए इसी सवाल के साथ मैं आपको यहाँ पर अलविदा कहूंगी. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सामिन किराम, अरब जबान की विलेज कल्चर की एक मशहूर कहावत है, अद्दौ मा तिरिस इल्ला रमाद, यानी आग अपना वारिस सिर्फ राख छोड़ती है। ये कहावत उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब कोई बाइज्जत, करीम, मेहमान नवाज और अजीम अखलाक वाला शख्स दुनिया से चला जाए, मगर उसके बाद उसके औलाद में वो औसाफ, वो इज्जत, वो अखलाक बाकी न रहे। जब रात को कोई मुसाफिर दूर से आग की रोशनी देखता तो समझ लेता कि यहाँ कोई करीम शख्स रहता है, जहाँ गर्म जोशी, इस्तकबाल और मेहमान नवाजी मिलेगी। लेकिन जब वो अजीम और मेहमान नवाज इंसान मर जाता है और उसके बाद आने वाली नस्ल में न सखावत रहती है, न अखलाक, न करम, तो अरब अफसोस के साथ कहते हैं, अद्दौ मा तिरिस इल्ला रमाद, यानी आग तो राख ही छोड़ती है। आज की कहावत उस अफसोसनाक हकीकत को बयान करती है कि अक्सर बड़ी शख्सियात के बाद छोटे लोग ही उनके वारिस बन जाते हैं। आज की कहावत उस अफसोसनाक हकीकत की तरफ इशारा करती है कि कभी कभार बड़ी शख्सियात के बाद छोटे और नाअहल लोग ही उनके वारिस बन जाते हैं। गोया के शेर के पीछे बकरियां, यानी अजीम बाप के बाद कमजोर औलाद। सामिन किराम, आज की कहावत हमें ये याद दिलाती है कि सिर्फ नसब काफी नहीं, बल्कि अपने बुजुर्गों की खूबियों को अमल से जिंदा रखना जरूरी है।

वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देश।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب

خلق من

القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.